ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। FM बैंड 102.1 MHz पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की पहली तिथि। तदनुसार

अनुसार दिनांक 22 जून सन 2026 सवेरे के 5:57 होने को है। हमारी आज की ये सभा अब आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सनसिटी चैनल है, FM बैंड 102.1 MHz पर। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्ध पोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
2: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जल मार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि योग दिवस आने वाले समय में अधिक लोगों को दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो

राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगी। वे चीता पुनर्स्थापन परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेंगी और चीतों की देखभाल करने वाले वन कर्मियों तथा स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति ने कल चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें बताया कि इस समय देश में 52 चीते हैं जिनमें 49 कूनो राष्ट्रीय उद्यान में है। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवादी रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से

0: योग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों पर की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। तमिलनाडु के पेरिया पालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। मैनचेस्टर में ग्रुप ए मुकाबले में भारत के 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर 161 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका की मारिजान केप ने नाबाद 81 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप जी के मुकाबले में ईरान और बेल्जियम के बीच मैच बिना किसी गोल के ड्रॉ रहा। वहीं ग्रुप एच में स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। आज ग्रुप एच में उरुग्वे और केप वर्डे के बीच मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचारों के पश्चात आइए आपको सुनवाते हैं हमारी राष्ट्रीय प्रसारण सेवा से प्रसारित कार्यक्रम।

लीजिए सुनिए आज का चिंतन। खुद को जानना ही इस जीवन का सबसे बड़ा अध्यात्म है और यही ज्ञान सारी चिंताओं का एकमात्र समाधान है। और अब सुनिए भक्ति रचनाएं।

आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं झरोखा के अंतर्गत आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही देर में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस। इसका भाग 227 आज प्रसारित किया जाएगा। छह बजकर 45 मिनट पर संगीत सरिता, जिसके अंतर्गत आप सुन रहे हैं श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार। कलाकार वायलिन वादक पंडित एसएल कंडारा। इसका भाग 5 आज प्रसारित होगा, जिसे आप पुनः शाम 6:45 पर सुन सकते हैं प्रस्तुति मनीषा जैन की। सुबह 7 बजे आप सुनेंगे भूले बिसरे गीत और 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। सुबह 8:15 पर और पुनः दोपहर 2 बजे आप सुनेंगे त्रिवेणी। कार्यक्रम चित्रलोक सुबह 8:30 पर और रात्रि 8:15 पर। आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित रहेगा अभिनेता अमरीश पुरी पर। ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे सुबह 9:30 पर और पुनः रात 9:30 पर प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। पिटारा के अंतर्गत आज सुबह 10 बजे सुनिएगा उजाले उनकी यादों के। रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत का भाग 1 आज प्रसारित होगा, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। रंग तरंगे कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह

11 बजे 12:05 पर यादों की महफिल सजाई जाएगी और 1 बजे आप सुनेंगे सुरीला सफर। सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 2:30 पर। सखी सहेली दोपहर 3 बजे 4 बजे आज शाम को पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा सेहत नामा, जिसमें डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का भाग 1 आज आप सुनेंगे। संपादन सहयोग रीमा जोशी का, प्रस्तुतकर्ता जुबेर खान। छाया गीत ये आप सुनेंगे शाम 5 बजे 5:30 पर, तराने नए पुराने कार्यक्रम। संध्या रंजन का समय होता है शाम 6:35 पर। शाम 7 बजे सुनिएगा फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला। सात 7:45 पर आप सुनेंगे इंद्रधनुष के अंतर्गत एक ही फिल्म से, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे फिल्म खिलौना के गीत। रात्रि 8 बजे हवा महल में सुनिएगा नाटिका वो आए घर में हमारे, लेखन राजकुमार डाक का है, निर्देशन सत्येंद्र शरद का। कार्यक्रम आपके लिए 9 बजे रात्रि 10 बजे छाया गीत, आलेख एवं स्वर जयंत पात्रीकर का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। रात्रि 10:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम ढलती जाए रात और 11 बजे रंग तरंग का पुनः प्रसारण। तो श्रोताओं, ये थी रूपरेखा हमारे आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आप सुन रहे थे झरोखा। लीजिए प्रस्तुत है रामचरित मानस गान का भाग 227।

याज्ञवल्क ने महाराज जनक की पत्नी रानी सुनैना को ये भविष्यवाणी सुना दी थी कि श्री राम अपने वनवास की अवधि में देवताओं का कार्य करके अवधपुरी वापस लौटकर अचल राज्य करेंगे। अतः सुनैना ने महाराज दशरथ के रनिवास में महारानी कौशल्या तथा अन्य रानियों से मिलकर उन्हें हर प्रकार से धीरज बंधाया और फिर अपने डेरे वापस लौट आईं। कौशल्या से उन्होंने कहा, मुनि का वचन व्यर्थ नहीं हो सकता। माता सुनैना के साथ पुत्री सीता भी अपने प्रिय कुटुंबियों से मिलने डेरे आईं। उनका तापस वेश देखकर सभी शोकमग्न हो गए। पुत्री को राजा जनक ने छाती से लगा लिया। पिता के हृदय में प्रेम का सागर उमड़ रहा था, किंतु उनका विवेक मोह के सागर में डूबते डूबते बच गया। पुत्री को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष गर्व और संतोष हुआ। उनकी पुत्री ने अपने आचरण से दोनों कुल पवित्र कर दिए थे।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वॉयलिन का विहंगम संसार। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एसएल कंडारा। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रेकर ने। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी।
1: संगीत सरिता के सभी श्रोताओं का स्वागत है। पंडित जी, पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे कि किस तरह से फिल्म संसार से जुड़ते जुड़ते आप अपने गुरुजी के मार्गदर्शन में और संगीतकार जयदेव जी के कहने पर शास्त्रीय संगीत की ओर फिर मुड़े
2: जी।
1: तो शास्त्रीय संगीत की बात हमें करनी है तो जितने भी समकालीन कलाकार हैं
2: जी,
1: उनमें से कौन से मुख्य कलाकार है जिनका नाम आप लेना चाहेंगे और उनके बारे में बताना चाहेंगे कि जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
2: शास्त्रीय संगीत के एरिना में जब आते हैं हम लोग तो मुझे ये देखने में आता है कि नॉर्थ इंडिया में कम आर्टिस्ट हुए और कम आर्टिस्टों में गिने चुने जैसे जोग साहब का जिक्र कर चुके हैं, जगजन राव जोशी जी का कर चुके हैं, डी के दातार और एन राजम जी और शिशिर कणादर चौधरी, ये भी लेडी आर्टिस्ट थी और अली अकबर खान साहब की बहुत अच्छी शागिर्द थी, इन्होंने भी अच्छा बजाया। तो समकालीन लोगों में

0: एन राजम जी का वायलिन योगदान बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है कि उन्होंने हर जगह बजाया। अच्छा, टेक्निकली बात करें तो राजम जी के वायलिन में साउथ की टेक्निक है, क्योंकि साउथ में ये बाजा बहुत पहले पहुंचा हुआ था और उनकी टेक्निक में पूरा साउथ इंडियन कर्नाटक म्यूजिक की जितनी खूबियां हैं वो आती हैं। और जब वो पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी की शिष्या हुई तो वो नॉर्थ इंडियन म्यूजिक उन्होंने सीखा, और बाद में और एक महापुरुष की शिष्या हुई वो जिनका नाम था पंडित महादेव प्रसाद मिश्रा बनारस वाले, जो बहुत अच्छी ठुमरी दादरा गाते थे। उनके साथ मैंने भी बजाया महादेव मिश्रा साहब के पास। मैंने दो तीन लोगों की संगत की जिसमें महादेव प्रसाद मिश्रा जी, गजानन राव जोशी जी के साथ भी मैंने बजाया इंदौर में, एक रिकॉर्डिंग में उन्होंने मुझे जबरदस्ती बिठाया, और पंडित रामाश्रय झा जी के साथ। तो मेरा ये कहना कि कम बैक टू बनारस, तो बनारस के संगीत को एन राजम जी ने बहुत अच्छे से ग्रहण किया और ग्रहण करके ठुमरी दादरा भी उन्होंने बहुत अच्छा बजाया।
1: एन राजम जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संगीत विभाग की प्रमुख थी और उन दिनों आप भी इलाहाबाद में पहुंचे थे
0: जी।
1: तो कैसे थे वो दिन, वो रिकॉर्डिंग के लिए जब आकाशवाणी आया करती थी?
0: बड़ा मेमोरेबल टाइम था वो
1: जी जी।
0: एन राजम जी, किशन महाराज, गुदई महाराज, महादेव प्रसाद मिश्रा जी
1: जी,
0: कई सारे एम आर गौतम, मतलब बहुत सारे म्यूजिशियन थे जो इलाहाबाद से ब्रॉडकास्ट करते थे। अच्छा, राजम जी उन दिनों में, मुझे वायलिन तो उनका पसंद था, इसमें कोई शक की बात नहीं।
1: हाँ।
0: तो वो आती थी और मैं हरेक आर्टिस्ट के प्रोग्राम में मौजूद रहता था व्यक्तिगत रूप से। आजकल ये परंपरा खत्म हो गई, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव जो होता है वो कहीं होता है और आर्टिस्ट बेचारा कहीं रिकॉर्ड कर रहा है। तो एनीवे, ये समय की बात, समय परिवर्तनशील है। तो राजन जी की एक खूबी ये रही कि उन्होंने साउथ इंडियन टेक्निक को नॉर्थ इंडियन म्यूजिक बजाने में बड़ी दक्षता हासिल की, बहुत अच्छा बजाया। अब उनके घर में तो उनके भाई साहब टीएन कृष्णन साहब,
1: हाँ,
0: वो भी बहुत अच्छे वायलिनिस्ट, इनके पिताजी भी बहुत अच्छे वायलिनिस्ट, और अभी इनकी बेटियां और नातिन वगैरह सब वायलिनिस्ट
1: बजाते
0: हैं। मैं चाहता हूं कि आप इनकी कोई रिकॉर्डिंग बजाएं राजम जी की, और इनका वायलिन वादन श्रोताओं को सुनवाएं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही मौका है पंडित जी। हम विदुषी एन राजम जी का बजाया राग यमन की झलक सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को।
0: अच्छी बात है।

0: विदुषी एन राजम का बजाया राग यमन की ये झलक आपने सुनी श्रोताओं। पंडित जी लगे हाथों राग यमन की चर्चा कर लेते हैं, इसके आरोह आरोह के बारे में हमें बताइए।
1: देखिए, राग यमन पहला राग है जो स्टूडेंट्स भी सीखते हैं
0: जी,
1: और मास्टर्स भी बजाते हैं। जो बड़े लोग हैं उन्होंने भी राग यमन को बजाया और इसका कोई था नहीं पाई उन्होंने, और स्टूडेंट्स को भी हम लोग शुरुआत
0: राग से सिखाते हैं
1: जी। तो इसमें वादी संवाद मतलब शुद्ध स्वर के अलावा एक तीव्र मध्यम लगता है, सारे गा मा तीव्र लगता है, और पाधा निशा ये सब शुद्ध स्वर हैं, और वादी संवादी इसके जो हैं गंधार और निषाद हैं, ये दो स्वर इसके वादी और संवादी हैं। अब मैं आपको

0: हम लोग केवल आरोह अवरोह से राग का बहुत स्केलेटन मालूम पड़ता है
1: जी।
0: स्केलेटन में और एक शक्ल में पूरे व्यक्ति में बहुत फर्क होता है। आप और मैं बैठे हैं, हड्डियों का ढांचा अंदर है हमारे, लेकिन हम हड्डियों के ढांचे से नहीं पहचाने जाते हैं
1: जी।
0: हम अपनी अपनी शक्ल से पहचाने जाते हैं। तो राग एमन की शक्ल

0: इस राग की शक्ल बनती है।
1: वाह।
0: तो मुझे लगता है कि श्रोताओं को ज्यादा आप इंतजार मत कराइए।
1: जी जी।
0: और इस
1: शक्ल को और थोड़ा साफ दिखाई दे इसके लिए।
0: देखिए, थोड़ा सा बजा के बताता हूँ।
1: जी हाँ।

0: वाह पंडित जी, इस राग पर आधारित अनपढ़ फिल्म का गीत याद आ रहा है।
1: कौन सा?
0: ले गए जी मोरा
1: सारे। बहुत अच्छा गीत है
0: जी, लता जी की आवाज है
1: बिल्कुल।
0: और ये राजा मेहदी अली खां का लिखा गाना है, संगीतकार इसके हैं मदन मोहन साहब।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: आइए सुनते हैं।

0: राग यमन पर आधारित अनपढ़ फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया श्रोताओं, लता जी की आवाज में, संगीतकार मदन मोहन।
1: वायलिन का विहंगम संसार। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की पांचवीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार जाने माने वायलिन वादक पंडित एसएल कंडारा, आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में होगा कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

श्रोताओं, कार्यक्रम भूले बिस्तरी गीत में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त पूजा नारानिया। कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार।

0: कार्यक्रम की शुरुआत हमने की है शंकर जयकिशन के संगीत से। इस गीत को लिखा था शैलेंद्र ने, गाया लता मंगेशकर और आशा भोसले ने। फिल्म का नाम हलाकू।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
5: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
4: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: अभी ये गीत आपने सुना लाला रुख इस फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में कैफी आजमी का लिखा गीत था और खयाम का संगीत।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अदल ए जहांगीर, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे तलत महमूद की आवाज में। कमर जलाल आबादी का लिखा गीत था, हुस्न लाल भगत का संगीत। श्रोताओं, अब कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में वक्त है एक छोटी सी अंतराल का।

इस छोटे से अंतराल के बाद आप सभी का कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत में एक बार फिर से स्वागत है। इस अंतराल के पहले आपने गीत सुना अदले जहांगीर फिल्म से, हुस्नलाल भगतराम के संगीत से सजा ये गीत था। आइए सुनवाते हैं आपको अगला गीत।

0: रानी रूपमती इस फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे मन्ना डे की आवाज में। इस गीत के बोल लिखे थे भरत व्यास ने और एसएन त्रिपाठी का संगीत था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

जन्म जन्म के फेरे इस फिल्म का गीत शमशाद बेगम और मोहम्मद रफी की आवाजों में अभी आपने सुना। भरत व्यास ने इस गीत की रचना की थी एस एन त्रिपाठी की बनाई धुन पर।

ये आवाज थी गीता दत्त की फिल्म फैशन से. ये गीत था भरत व्यास रचनाकार और गीतकार भरत व्यास और संगीतकार हेमंत कुमार थे.

भाभी फिल्म से ये गीत था। आशा भोसले ने आवाज इस गीत को दी। तन्वी नकवी की रचना थी और तर्ज बनाई थी चित्रगुप्त ने। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत अब यहीं संपन्न हुआ।

हम बोल रहे हैं विविध भारती से, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में लेकर हाजिर होंगे कार्यक्रम हम है राही प्यार की।

लीजिए श्रोताओं, लेकर हाजिर है हम कार्यक्रम हम है राही प्यार के। आइए आपको सुनवा रहे हैं इस कार्यक्रम की ये पहली प्रस्तुति लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। मस्ताना फिल्म का गीत है, रचनाकार आनंद बख्शी है, तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। जब

ऐसा काहे को होवत हैरी लैला, ऐसा काहे को होवत हैरी लैला, मनमोर

0: एक जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार
3: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
4: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं। और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
3: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
3: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
4: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
3: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: अब आपको सुनवाते हैं कल्याण जी आनंद जी के संगीत से सजा ये गीत। हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा है। फिल्म का नाम है गीत। लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजें।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: सच्चाई फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले, मोहम्मद रफीक की आवाजों में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: संस्कृत भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: श्रोताओं, अब वक्त है कार्यक्रम में एक अंतराल का।

इस अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार के में स्वागत है। आइए अब आपको सुनवाते हैं सावन भादो फिल्म के इस गीत को, जिसे लिखा है वर्मा मलिक ने और सोनिक ओमी का संगीत है। मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने इस गीत को गाया है।

0: एक जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन
3: भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा होगी।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: हम जोली इस फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा ये गीत, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: जानी मानी फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में धरती फिल्म का गीत, राजेंद्र कृष्ण की रचना, शंकर जयकिशन की बनाई धुन पर।

धरती फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में, और इसी गीत के साथ कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार के अब यहीं संपन्न होता है।

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सनसरी चैनल है। वक्त है सुनने का समाचार प्रभात, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: कार आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा का आयोजन करेगी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, स्विट्जरलैंड में प्रतिनिधिमंडलों की बैठक के बाद ईरान वार्ता में प्रगति। और पुरुष हॉकी में भारत ने एफआईएच प्रो लीग रॉटरडम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड को 3-2 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक पोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और केवल हथियारों का खरीदार देश बनकर नहीं रहना चाहता।
2: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
1: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि आईएनएस विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की यात्रा को इन नए पोतों के शामिल होने से और गति मिलेगी।
2: आईएनएस विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में 40 से अधिक

0: युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल की गई हैं।
1: भारत निर्माता बनना चाहता और जिस दिन निर्माता होगे ना उस दिन हम निर्णायक भी होंगे। बीते वर्षों में 40 से अधिक मेड इन इंडिया युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल हुई है। वर्तमान में भी 45 बड़े नौ सैनिक प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन है। यह केवल संख्या नहीं है, यह भारत की औद्योगिक क्षमता का प्रमाण है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के

0: ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। उन्होंने भारत के प्रमुख पहल चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह कुनो नेशनल पार्क में सफारी की। इसके बाद वे कुनो के चीता कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का दौरा कर चीता परियोजना से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया था। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि वर्तमान में भारत में 52 चीते हैं। उन्हें चीतों की निगरानी और ट्रैकिंग व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में अपने जन्मदिन पर नाम्बिया से लाए गए 8 चीतों को कुनो नेशनल पार्क में छोड़कर भारत की महत्वाकांक्षी चीता पुनर्स्थापन परियोजना की शुरुआत की थी। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से भी चीते लाए गए। संरक्षण और प्रजनन के प्रयासों के कारण अब कुनो में चीतों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसे परियोजना की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। ये चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण। समाचार कक्ष से मैं मृगनैनी पांडे।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की UGC नेट जून 2026 परीक्षा आज से शुरू होगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। UGC नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF, सहायक प्रोफेसर के पदों और PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। नीट UG पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हुई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देशभर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। इस बीच NTA ने नीट UG पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के दावे को खारिज किया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में प्रश्न पत्र टेलीग्राम पर लीक होने का दावा किया गया था। NTA ने कहा है कि परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज भाजपा सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार के इस बजट पर सभी का ध्यान है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 कल शाम संपन्न हो गया। मुंबई में आयोजित समापन समारोह को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने महोत्सव को गैर काल्पनिक सिनेमा के लिए विश्व के सबसे प्रतिष्ठित समारोहों में से एक बताया। हमारी संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्ग में पोलैंड के वृत्तचित्र सिल्वर ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन कॉन्च पुरस्कार जीता।
3: अन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग में माया सॉन्ग को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म के लिए सिल्वर कॉन्च और अंडर द स्नो को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म का सिल्वर कॉन्च दिया गया। राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग में आर्मस्ट्रांग फ्रॉम अंगलम्मन कोविल स्ट्रीट को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का सिल्वर

0: लॉन्च मिला, वहीं स्मॉल क्लाउड्स को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म और वाई को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का सिल्वर कॉन्च प्रदान किया गया। दी ओल्ड बुलनोज और वंस न्यू को सर्वश्रेष्ठ छात्र फिल्म का पुरस्कार मिला, जबकि द लास्ट शेल्टर को विकसित भारत, वंदे मातरम के 150 वर्ष, भारत एट 2026 विषय पर बनी सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार दिया गया। इसी के साथ मेफ 2026 का समापन हुआ। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमरीका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। एक रिपोर्ट।
2: लेक ल्यूर्सन के निकट बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में बंद कमरे में हो रही इस वार्ता से पहले जेडी वेंस ने कहा कि अब तक की बातचीत के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं और आगे भी प्रगति की उम्मीद है। वार्ता का मुख्य केंद्र ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। इसके साथ ही इसराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम बनाए रखने सहित क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा जारी है। जेडी वेंस ने कहा कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से सकारात्मक परिणाम मिले हैं और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अमरीका लगातार प्रयासरत है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने और कूटनीतिक समाधान की दिशा में इस वार्ता पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर बनी हुई है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर हम अपनी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 15 विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं।
3: हम लिख के गया ऐसे करते करते लेखक का एक दर्जा मिल गया।
4: सोना घाटी की पहाड़ी, पहाड़ी को देखा तो उस पहाड़ी पर एक भी पेड़ नहीं था, वृक्ष विहीन पहाड़ी हो गई थी, झाड़ियाँ कुछ बची थी और वहाँ पर 8,000 से ज्यादा हमने जल संरचनाएं बनाई।
5: समाज चेतना के लिए हम सोचा, समाज जागरण के लिए, आदमी के लिए हम सोचा क्या करना है और क्या नहीं करना है।
6: मेरे मन माया कि हम इनको आत्मनिर्भर करना है तो इनको साक्षरता बनाना है, इनको शिक्षा देना है।
1: ये विशेष कार्यक्रम आज और कल प्रातः 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड से प्रसारित होंगे, जिन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडैम में FIH प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले इलाकों और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा और लक्षद्वीप में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
7: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन और कड़ी सुरक्षा के बीच फिर से नीट परीक्षा कराए जाने के समाचार छाए हुए हैं। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है योग। कोलकाता में योग दिवस समारोह के दौरान एक प्रतिभागी की मदद करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीर भी अखबार में प्रमुखता से प्रकाशित है। दैनिक जागरण ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पहाड़ से मैदान तक योगमय हुई दुनिया। सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली ऊंचाइयों और पानी की गहराइयों में योग करते सैनिकों के चित्र भी ध्यान आकर्षित करते हैं। पंजाब केसरी और दैनिक भास्कर ने क्रिकेट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की तस्वीरों को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर छापते हुए उनकी उपलब्धियां बयां की है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, वैभव क्रिकेट की दुनिया का अजूबा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, नीट देने 2,00,000 कम अभ्यर्थी पहुंचे। दैनिक जागरण बताता है कि देश विदेश के 5,454 केंद्रों पर ये परीक्षा हुई और गड़बड़ी की कोई सूचना नहीं है। परीक्षा में भाग ले रहे उम्मीदवारों को कोई कठिनाई ना हो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी

0: के हवाई अड्डे पर 45 मिनट प्रतीक्षा करने को भी अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने पहलगाम हमले की जांच के सामने आए कुछ तथ्यों को सचित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है, सीमा पार से आए ड्रोन ने गिराए थे हथियार।
1: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के पुनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा आयोजित करेगी। और पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग रॉटरडैम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल। प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत की इस कड़ी में आपने ये गीत सुना रिफ्यूजी फिल्म से, जिसे गाया सोनू निगम और अलका याग्निक ने, जावेद अख्तर के बोल और संगीत अनु मलिक का।

आप सुनेंगे ये गीत अनुराधा पौंडवाल और सुरेश वाडकर की आवाज़ में संगीत फिल्म से, बोल संतोष आनंद के और आनंद मिलन का संगीत।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुन रहे थे आप एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सन सिटी चैनल। प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम नमस्कार।

का नया दिन है, सोमवार का दिन है और तारीख है 22 जून और इसी के साथ श्रोताओं आज का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में सबसे पहले आपको करवाते हैं हमारी टीम से परिचय।

0: हाँ जी नमस्कार की टीम है दोस्तों ट्रांसमीटर पे हैं पारसपुरी गोस्वामी और दिलीप सिंह परमार।
1: कंट्रोल रूम से है श्रोताओं प्रवीण कुमार।
0: और एचपीटी कंसोल पर उद्घोषिका जयश्री राठी हमारा साथ दे रही हैं।
1: वहीं एफएम चैनल पर है नीतू।
0: कार्यक्रम की प्रस्तुति राजेश लामरोड की।
1: और इन सभी के साथ श्रोताओं मैं सोफिया खान
0: और मैं चंद्रकला सुथार।
1: और इसी के साथ बातें तो होती रहेगी क्योंकि कार्यक्रम का आगाज जो है हो चुका है, लेकिन फिलहाल नए नवीले गीत में सुनवाते हैं आपको अरमान मलिक की आवाज से ये गीत।

इस खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर से स्वागत है श्रोताओं आपका प्रोग्राम नमस्कार में। और शुरुआत करें प्रोग्राम में एक कोटेशन से। तो श्रोताओं कहते हैं कि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। मन को हमेशा मजबूत रखना पड़ता है, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत।

0: इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है, कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
1: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
2: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
3: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
2: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।

0: जब से मोहब्बत हो गई है।
1: हमारा भारत देश है जो उत्सवों और मेलों का देश रहा है हमेशा से, और सूफिया हमारे देश में मेलों की एक अलग ही रौनक होती है ना, और मेला यानी मिलना और खुशियां मनाना।
2: और मेले का बात जब आपने की है मेले की, तो इसकी जो खुशी होती है वो बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती
1: बिल्कुल
2: है।
1: और लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कश्मीर के मशहूर मेला क्षीर भवानी के बारे में। मेला क्षीर भवानी एक धार्मिक उत्सव नहीं है, लेकिन जो घाटी है उसकी सदियों पुरानी संस्कृति और सांप्रदायिक सौहार्द और अटूट श्रद्धा का जीता जागता उदाहरण है। यह मेला ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी को तुलमुला गांव में स्थित प्रसिद्ध माता रागन्या देवी यानी क्षीर भवानी के मंदिर में मनाया जाता है।
2: बिल्कुल, और ये मंदिर के बीचों बीच एक पवित्र पानी का कुंड है श्रोताओं, और ऐसी मान्यता है कि इस कुंड के पानी का रंग बदलता है जो भविष्य के संकेतों को दर्शाता है, और माँ को पारंपरिक रूप से इस दिन शीर यानी खीर और दूध का भोग लगाया जाता है, जिसके कारण इस मंदिर का नाम जो है वो पड़ा क्षीर भवानी। ये उत्सव कश्मीर की वादियों में गूंजने वाले मंत्रों और प्रार्थनाओं के साथ समाज में शांति और एकजुटता का एक बहुत ही मजबूत संदेश देता है।

0: प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायक हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
1: RGHS वचिरंजीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन, पथरी मतलब विनायक हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
2: जापान जो है वो वर्ल्ड कप के किसी मैच में चार गोल दागने वाली पहली एशियन टीम बन गई है। और बात कर लेते हैं ग्रुप ई की, तो कराकाओ ने इक्वाडोर को 0-0 के बराबरी पर रोककर अपना पहला वर्ल्ड कप अंक हासिल कर लिया है। और श्रोताओं, आज के मैच की अगर बात करें तो वो है न्यूजीलैंड और मिस्र के बीच, जो कि सुबह 6:30 से शुरू हो चुका है। अर्जेंटीना वर्सेज ऑस्ट्रिया जो कि रात 10:30 शुरू होगा, और फ्रांस वर्सेज इराक जो देर रात 2:30 से शुरू होगा।
3: और दोस्तों, बात करें भारतीय हॉकी टीम की, तो महिला नेशंस कप ने फाइनल में भारतीय हॉकी टीम ने अपनी मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही भारत ने अगले सीजन की FIH प्रो लीग में अपनी जगह पक्की कर ली है। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम की बात की जाए तो टीम ने FIH प्रो लीग के रॉटरडैम लीग के आखिरी मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए मेजबान नीदरलैंड्स को 3-2 से हरा दिया है। और साथ ही दोस्तों, भारत ने ए टीमों की ट्राई सीरीज के फाइनल में मेजबान श्रीलंका को 66 रन से हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। रविवार को खेले गए खिताबी मुकाबले में युवा भारतीय टीम ने 377-9 का टोटल बनाया है और सीरीज में पहली बार 350 रनों का आंकड़ा पार हुआ। जवाब में श्रीलंकाई टीम ने 47.1 ओवर में 311 रन पर सिमट गई।

राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल शिप हाउस पावटा जोधपुर

दोस्तों, जिंदगी कभी ठहरती नहीं है, यह तो बहती हुई नदी की तरह है। कभी रास्ते में पत्थर आते हैं तो कभी खुला आसमान। हमें भी पानी की तरह लचीला बनना चाहिए। रास्ता ढूंढना है तो आगे बढ़ते रहना भी जरूरी है। दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं हम भी अगले गीत की ओर।

0: भाग दौड़े भरी दुनिया में कभी कभी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है खुद के साथ चुपचाप बैठना, है ना?
1: बिल्कुल।
0: जिसे हम मौन कहते हैं, बिना फोन, बिना इंटरनेट, बस अपनी सांसों की आवाज़ सुनना, थोड़ी देर के लिए दुनिया के शोर से कटकर अपने मन की आवाज़ को सुनना, है ना?
1: बिल्कुल, मन की आवाज़ सुननी चाहिए कि मन जो है हमारा क्या कह रहा है, उसके भीतर क्या चल रहा है, वो क्या चाहता है और क्या होने देना चाहता है। क्योंकि कभी कभी ना मन मार के भी हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं
0: जी,
1: तो उसमें मन की भी इजाज़त ज़रूरी है। और ऐसा चलता ही रहता है क्योंकि कभी कभी दूसरों के मन की भी हमें करनी पड़ती है, कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है। इसीलिए अगर मौन खुद के लिए ज़रूरी है तो उसमें ये बात इंक्लूड हो जाती है कि मन जो है उसकी अगर हम बातें सुने तो ये हमारे मस्तिष्क के लिए भी बहुत एक अच्छा सकारात्मक सोच लेके जाएगा।
0: जी
1: तो इसी के साथ ये भी है, बात जुड़ी ही रहती है मन की। तो और इसी के साथ प्रोग्राम में अब एक न्यूज ब्रेक
0: बिल्कुल,
1: के लिए
0: एक
1: हम
0: आवाज
1: रुकेंगे।
0: भी हमें सुनाई दे रही है टिक टिक टिक करती हुई,
1: घड़ी इशारा कर
0: क्योंकि
1: रही
0: घड़ी इशारा कर रही है कि न्यूज ब्रेक का जो है समय है वो हो रहा है। तो दोस्तों को हम यही कह रहे हैं कि यहाँ हम न्यूज ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और फिर से लौटेंगे इस कार्यक्रम में 9:10 पर।
2: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है, मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। समाचार।
3: ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। जोधपुर के पावटा जिला अस्पताल में सिजेरियन के बाद 8 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ी, विशेषज्ञों की टीम अलर्ट मोड पर। राज्य स्तरीय CSR कॉन्क्लेव का आयोजन आज से सवाई माधोपुर में किया जा रहा है। और राज्य में नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज से 7 जिलों में 3 दिनों तक आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। 2 दिन की इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी से जुड़े सुरक्षित उपायों के मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। ये चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल उदयपुर की महत्वाकांक्षी देवास 3 और 4 पेयजल परियोजनाओं का हवाई निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन बांधों के कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने इस महत्वपूर्ण परियोजना के सभी काम उच्च गुणवत्ता और पूर्ण सुरक्षा मानकों के साथ निर्धारित समय सीमा में पूरे किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के पूरा होने से उदयपुर शहर और इसके आसपास के क्षेत्रों की वर्तमान तथा भविष्य की पेयजल आवश्यकताएं पूरी हो सकेंगी। इस मौके पर वरिष्ठ प्रशासनिक और तकनीकी अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बांध, टनल निर्माण और पुनर्वास से जुड़े कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। राज्य सरकार प्रदेश में डेयरी सेक्टर को मजबूत करने और युवाओं को रोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। पशुपालन और डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने कल पाली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि राजस्थान का डेयरी क्षेत्र बेहद मजबूत है और इस पर गुजरात डेयरी या अन्य किसी बाहरी का हस्तक्षेप का कोई असर नहीं पड़ेगा।
4: हमारा डेयरी सेक्टर इतना मजबूत है कि यहाँ पर उन नियमों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारा गांव-गांव तक, हर किसान तक हमारा डेयरी सेक्टर फैला हुआ है। हम किसानों को फैट के आधार पर, दूध पालकों को फैट के आधार पर तो पैसा देते हैं, लेकिन 5 रुपए सरकार की तरफ से पर लीटर उनको अनुदान भी देते हैं। इसलिए जो लोग, जो किसान, जो पशुपालक हमारी डेयरी से जुड़े हुए, निश्चित रूप से वो हमारी डेयरी से जुड़े रहेंगे। उनके नियमों से हमारे यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
3: रोजगार के मोर्चे पर राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए श्री कुमावत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में 4.25 लाख सरकारी नौकरियां

ना देने के बजट घोषणा पर तेजी से अमल हो रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने अलवर जिले को विकास की दो बड़ी सौगातें दी है। उन्होंने 42 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से कल नटनी का 12 से जैसमन बांध नहर को पक्की करने के काम का शिलान्यास किया। साथ ही 3 करोड़ 34 लाख रुपए से निर्मित भाखेड़ा एनिकेट का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन दोनों परियोजनाओं से क्षेत्र का भूजल स्तर रिचार्ज होगा, जिससे वन्य जीवों, किसानों और आमजन की पानी की जरूरतें पूरी होंगी। जोधपुर के पावटा जिला अस्पताल में डिलीवरी के बाद 8 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है। इनमें से 2 महिलाओं की हालत गंभीर होने पर उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। इन सभी महिलाओं की शनिवार को सिजेरियन

0: सर्किट का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन दोनों परियोजनाओं से क्षेत्र का भूजल स्तर रिचार्ज होगा, जिससे वन्य जीवों, किसानों और आमजन की पानी की जरूरतें पूरी होंगी। जोधपुर के पावटा जिला अस्पताल में डिलीवरी के बाद 8 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है। इनमें से 2 महिलाओं की हालत गंभीर होने पर उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। इन सभी महिलाओं की शनिवार को सिजेरियन डिलीवरी कराई गई थी। हमारे जोधपुर संवाददाता ने बताया कि ऑपरेशन के बाद प्रसूताओं को स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं होने लगी, जिसके बाद उनका उपचार शुरू किया गया।
1: पावटा अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर कुलबीर चोपड़ा ने बताया कि शनिवार को अस्पताल में 8 सिजेरियन ऑपरेशन हुए। ऑपरेशन के बाद भी सभी का ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव होने लगा। इनमें से 2 महिलाओं की स्थिति अत्यंत गंभीर होने पर उन्हें तत्काल मथुरादास माथुर अस्पताल में रेफर किया गया, जहां उन्हें आईसीयू में भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। दोनों मरीजों की किडनी भी प्रभावित हुई है। विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम उनकी निगरानी कर रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से ऑपरेशन थिएटर बंद कर दिया। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट हो सकेगी। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। सवाई माधोपुर में आज से राज्य स्तरीय कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान वन विभाग की ओर से हो रहे 2 दिन के इस कार्यक्रम का उद्देश्य CSR के माध्यम से वन और वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन तथा स्थानीय समुदायों के सतत विकास को प्रोत्साहित करना है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री होंगे। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे सवाई माधोपुर संवाददाता।
2: राजस्थान वन विभाग द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के माध्यम से वन और वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन तथा स्थानीय समुदायों के सतत विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आज से राज्य स्तरीय CSR कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। कॉन्क्लेव में विभिन्न कॉरपोरेट संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रमों, उद्योग समूहों, गैर सरकारी संगठनों, वन अधिकारियों, संरक्षण विशेषज्ञों तथा नीति निर्माताओं की सहभागिता रहेगी। कार्यक्रम का उद्देश्य वन विभाग और कॉरपोरेट क्षेत्र के मध्य प्रभावी साझेदारी स्थापित कर वन और वन्य जीवों का संरक्षण प्रभावी बनाना है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर।
0: जयपुर के नाहरगढ़ जैविक उद्यान में राजस्थान की पहली सफेद बाघ सफारी शुरू हो गई है। यहां सफेद बाघ भीम और सुनहरी बाघिन सस्कंधी को टाइगर सफारी क्षेत्र में छोड़ दिया गया है। रविवार को पर्यटकों ने सफारी के दौरान इन दोनों बाघों को नजदीक से देखा। इससे पहले ये बाघ केवल जैविक उद्यान क्षेत्र में रखे गए थे। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA आज से UGC नेट जून 2026 परीक्षा शुरू करेगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में इस महीने की 30 तारीख तक प्रतिदिन 2 पारियों में आयोजित की जाएगी। UGC नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो JRF सहायक प्रोफेसर पदों तथा PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। NTA ने अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड करने और परीक्षा से संबंधित सभी विवरणों का सावधानीपूर्वक सत्यापन करने की सलाह दी है। नीट UG पुनर्परीक्षा कल कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेशों के 14 केंद्रों पर कुल 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। इधर प्रदेश के विभिन्न जिलों में नीट परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की गई। इसी कड़ी में राजधानी जयपुर में भी रविवार को नीट UG की पुनः परीक्षा कड़े सुरक्षा प्रबंधों और प्रशासनिक निगरानी के बीच शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। राज्य में पिछले कुछ दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के बीच मौसम ने करवट ली है। प्रदेश में सक्रिय हुए एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई जिलों में लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में कल सर्वाधिक अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस तापमान फलोदी में दर्ज किया गया। आज 7 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। जोधपुर और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग में 25 जून तक आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहने का अनुमान है। इस बीच विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि खुले में

0: की तैयार फसलों और अनाज को सुरक्षित स्थानों पर ढक कर रखें ताकि उन्हें भीगने से बचाया जा सके। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। जोधपुर के पावटा जिला अस्पताल में सिजेरियन के बाद 8 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ी, विशेषज्ञों की टीम अलर्ट मोड पर। राज्य स्तरीय सीएसआर कॉन्क्लेव का आयोजन आज से सवाई माधोपुर में किया जा रहा है। और राज्य में नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज से 7 जिलों में 3 दिनों तक आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी जयपुर
2: हिंदी में प्रादेशिक समाचारों के बाद एक बार फिर से स्वागत है श्रोताओं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में। और अब जानते हैं कि इतिहास में आज का दिन क्यों है खास। बात करें साल 1939 की, तो आज ही के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आज ही के दिन ९९६ में आज के दिन लॉर्ड्स के मैदान पर सौरव गांगुली ने अपने पहले टेस्ट मैच में 131 रन की पारी खेली थी।
3: और 2016 को इसरो ने पहली बार एक ही मिशन में 20 उपग्रहों को अंतरिक्ष में उनकी सटीक कक्षाओं में स्थापित किया था। इससे पहले भारत ने 2008 में एक साथ 10 सैटेलाइट लॉन्च करने का कमाल किया था। यह मिशन इसलिए बहुत बड़ा था दोस्तों, क्योंकि अंतरिक्ष में सभी 20 सैटेलाइट्स को एक दूसरे से टकराने से बचाते हुए बेहद कम समय में अंतराल पर अलग अलग कक्षाओं में छोड़ना तकनीकी रूप से बहुत पेचीदा था। इसरो ने इस मिशन के बाद दुनिया के कमर्शियल स्पेस मार्केट में अपनी धाक जमा दी थी। और 2007 को भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में 195 दिन बिताने के बाद सफलतापूर्वक अपनी टीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से धरती पर लौटी थीं। यह उस समय तक किसी महिला द्वारा अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड था।
2: और इसी के साथ श्रोताओं बात करें साल 2006 की, तो अमेरिका ने आज के दिन मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया था।

0: मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार सुबह 11 बजे आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
1: सोमवार है और सोमवार को सेगमेंट होता है विज्ञान विश्व। आज इसमें हम चर्चा कर रहे हैं इबोला वायरस के बारे में। दोस्तों जिंदगी की भागदौड़ में हम अक्सर अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कभी कभी दुनिया के किसी कोने से उठी एक हलचल हमें यह याद दिलाती है कि सावधानी ही सुरक्षा का सबसे बड़ा कवच है। इबोला नाम आपने सुना होगा। इबोला वायरस रोग, जिसे पहले इबोला रक्त स्त्रावी बुखार के रूप में जाना जाता था, एक अत्यंत गंभीर और अक्सर घातक बीमारी है जो मनुष्यों और अन्य प्राइमेट्स जैसे बंदर है, गोरिल्ला है, चिंपेंजी है को प्रभावित करती है। इबोला क्या है अगर

0: ये सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि यह एक वायरस है। यह इबोला फैलता कैसे है इसके बारे में बात करें तो यह वायरस संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क यानी रक्त स्राव है कि एक बार जब मनुष्य संक्रमित हो जाता है इसमें तो यह आउटब्रेक यानी महामारी का रूप में फैल सकती है और अगर सही समय पर आइसोलेशन और बचाव के उपाय न किए जाएं तो अंगों और अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के माध्यम से मनुष्यों में यह फैल जाता है। मनुष्यों के बीच इसका प्रसार संक्रमित व्यक्ति के रक्त या फिर शारीरिक तरल पदार्थों के सीधे संपर्क से होता है, यह हवा से नहीं फैलता है।
1: बिल्कुल, और इसके संक्रमणों की बात करें कि इसके लक्षण क्या हैं, तो इस संक्रमण के 2 से 21 दिन के भीतर जो है इसके लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं श्रोताओं। और शुरुआती लक्षणों की बात करें तो उसमें है तेज बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, गले में खराश, और जब लक्षण गंभीर हो जाते हैं तो उनमें लक्षण होते हैं उल्टी दस्त, त्वचा पर चकत्ते, किडनी और लिवर का काम बंद करना, और जब लास्ट स्टेज में अगर पहुँच गया ये संक्रमण तो शरीर के अंदरूनी और बाहरी हिस्सों में अत्यधिक ब्लीडिंग होना इसके लक्षण हैं।
0: और बचाव और उपचार की बात की जाए तो संक्रमित व्यक्ति के शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क से बचना चाहिए, सुरक्षित अंत्येष्टि प्रथाओं का पालन करें और स्वच्छता बनाए रखें। और वर्तमान में इबोला के लिए कोई विशिष्ट एंटीवायरल दवा नहीं है दोस्तों, लेकिन प्रारंभिक सहायक देखभाल है जो जैसे कि डिहाइड्रेशन रोकने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स और तरल पदार्थ देना से जीवित रहने की संभावना है जो काफ़ी बढ़ जाती है। अब कुछ टीके और उपचार पद्धतियां भी विकसित हो गई हैं जिनका उपयोग जोखिम वाले क्षेत्रों में किया जा रहा है। इबोला जैसी बीमारियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों की तत्परता और सामुदायिक जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी संदिग्ध मामले में तुरंत चिकित्सा सहायता लेना और आइसोलेशन का पालन करना संक्रमण को फैलने से रोकने का एकमात्र प्रभावी तरीका है। यह थी विज्ञान विश्व में इबोला वायरस की बातचीत।

0: तो फिट रहना किसे पसंद नहीं है, लेकिन हमारा टाइम मैनेजमेंट ऐसा है कि क्या कहें, हमें एक्सरसाइज करने में भी आलस आता है और बाद जब बढ़ती उम्र की हो जाती है तो उसमें सबसे मुश्किल हो जाता है एक्सरसाइज का चुनाव करना, और कई बार ज़्यादा प्रयास करने के चक्कर में हम खुद को भी चोट पहुंचा देते हैं। ऐसे में इससे बचते हुए हमें ऐसी एक्सरसाइज चूज करना चाहिए जिससे हम फिट रहें और इंजरी से भी बचें। तो इसमें आज के काम की बात ये है श्रोताओं कि सबसे ज़रूरी होता है इसमें बैलेंस बनाना। बैलेंस बनाना हर उम्र में ज़रूरी है, तो ये जो है योग, स्ट्रेचिंग या किसी भी पोस्चर एक्सरसाइज से आपका बैलेंस बेहतर हो सकता है। बात करें कार्डियो की, तो इसमें जो तेज़ चलना होता है, सीढ़ियाँ चढ़ना होता है, ये सब कार्डियो एक्सरसाइज है। ये एक्टिविटीज़ जो होती है वो दिल की सेहत को मजबूत बनाने में बहुत मदद करती है। और बात करें स्ट्रेच ट्रेनिंग की, तो ये भी मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत करती है और इससे आप देर तक बिना थकान के काम कर सकते हैं। और योग और स्ट्रेचिंग भी आपके शरीर को लचीला तो बनाए रखते हैं, साथ ही में इससे आपको छोटे छोटे कामों के दौरान जो मांसपेशियों में खिंचाव आता है उस समस्या से नहीं गुजरना पड़ता।
1: अच्छा ये बात है, तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच देना। डन
2: डन
1: डन। अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? गलियों की निहार है? तो तुमको मुझसे प्यार है?

0: दुनिया रा सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न रो सुख एक तरफ,
1: निसंतान दंपत्यारे जीवन में खुशियारी उम्मीद, विनायका हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।

0: पथरी, प्रोस्टेट, गुर्दा रोग, मूत्र रोग व यौन रोगों के इलाज हेतु सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रकाश रांका, यूरोलॉजिस्ट व एंड्रोलॉजिस्ट, बरकतुल्ला स्टेडियम के सामने, जोधपुर। मोबाइल 9829027065।
1: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन, डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।

अच्छा चलो दोस्तों, आज का दिन बेहद खास है। आज विश्व रेन फॉरेस्ट डे है। जब हम रेन फॉरेस्ट डे या वर्षा वनों की बात करते हैं तो हमारे जहन में हरी भरी वादियों, ऊंचे ऊंचे पेड़ों और एक अनूठे संसार की तस्वीर उभरती है जो इस पूरी धरती धड़कन है। ये वन सिर्फ पेड़ पौधों का घर नहीं बल्कि हमारी धरती के वो

0: फेफड़े हैं जो हमें खुलकर सांस लेने की आज़ादी देते हैं, लेकिन बदलती दुनिया के साथ इन जंगलों पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। तो वन वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे के खास मौके पर हम ऐसे एक्सपर्ट से बात करने वाले हैं जो पर्यावरण को, वनों को बेहद करीब से जानते हैं। आज हमारे साथ फोन के माध्यम से जुड़े हुए हैं सूरत गुजरात से खास मेहमान गौरव लोढ़ा जी। आप भारतीय वन सेवा में सहायक वन संरक्षक पद पर कार्यरत हैं। हेलो
1: जी। जी नमस्ते मैम।
0: हाँ गौरव सर, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी जी बिल्कुल, धन्यवाद
0: जी। सबसे पहले तो आपको विश्व रेन फॉरेस्ट दिवस की बहुत बहुत बधाई।
1: जी जी, आप सभी को भी बधाई मेरी तरफ से।
0: जी आप तो रोज जंगल की दुनिया में हिफाजत में रहते हैं, उनकी दुनिया की, इसकी नब्ज को पहचानते हैं। क्या होते हैं जंगल, कैसी होती है वहाँ की दुनिया, वहाँ का वातावरण? क्योंकि हमने तो सिर्फ सर कहानियों में ही सुना है कि किसी जंगल में शेर रहता था, लोमड़ी रहती थी, कहानियों में ही जंगल की कल्पना की है। आप बताएं जंगल क्या होता है।
1: जंगल एक अलग दुनिया होती है जो हमारे शहरों से, गांव से बहुत अलग होती है। वहाँ में जो जमीन है, वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ के जो पेड़ है, पौधे हैं, जीव जंतु है, तो हर कदम में हमें कुछ नया देखने को मिलता है, नया सीखने को मिलता है, और एक प्रकृति का संदेश होता है कि अगर हम जंगल बचाएंगे तो जो उनकी दुनिया है, जो जंगलों की दुनिया है, वही शहरों की और जो हमारे गांवों की दुनिया है जो खराब हो रही है, वो बच सकती है और हम दुनिया को प्रिजर्व और कंजर्व कर सकते हैं।
0: जी सर। सर आप जिस एरिया में काम करते हैं उस जंगल में कौन कौन से मतलब अभी जानवर हैं?
1: तो मैं साउथ गुजरात में पोस्टेड हूँ, सूरत जिला में, और यहाँ पे जो इंडिया में ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट होता है उस टाइप के फॉरेस्ट यहाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर कार्निवोर्स की बात करें तो लेपर्ड है, वुल्फ है, हाइना है, और अगर हर्बीवोर्स की बात करें तो डियर है, उसमें स्पॉटेड डियर है, बार्किंग डियर है, पॉर्क्यूपाइन है, और उसके अलावा कई सारे जो छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जैसे क्रैब है, लॉबस्टर है, स्पाइडर है, तो ये छोटी छोटी प्रजातियां भी है, रैबिट है, तो ये कुछ स्पीशीज है जो हमारे यहाँ के जंगलों में पाए जाते हैं।
0: जी सर, आपने लेपर्ड्स की बात की, तो क्या लेपर्ड्स भी कहीं और से शिफ्ट किए जाते हैं यहाँ पर, या यहाँ से कहीं और शिफ्ट किए जाते हैं?
1: नहीं नहीं, लेपर्ड्स यहाँ नेचुरली कुदरती पाए जाते हैं। इन जनरल लेपर्ड्स का ट्रांसलोकेशन या शिफ्टिंग नहीं किया जाता। और लेपर्ड एक तो देखा जाए तो टाइगर और लायन के कंपैरिजन में अबंडेंट स्पीशीज है, तो यहाँ पे नेचुरली पाए जाते हैं, और उसके लिए हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि जंगल को बचाएं, क्योंकि जितना जंगल कटता है उतना लेपर्ड या कोई भी वाइल्ड एनिमल ह्यूमन हैबिटेशन में एंटर करता है और उससे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कंफ्लिक्ट बढ़ते हैं। तो हमारा प्रयास रहता है कि उसको जंगल में ही उसके लिए कुदरती खुराक मिले, उसको पानी मिले, ताकि जंगल का भी संरक्षण हो और लेपर्ड का भी संरक्षण हो।
0: जी सर, आप सहायक वन संरक्षक पद पर कार्यरत हैं, तो आपके क्षेत्र में जो काम है वो क्या आता है आपके हिस्से में?
1: तो मैं ACF सूरत की तरह यहाँ पोस्टेड हूँ। मेरे अंडर तीन रेंज आती है, उमरपाड़ा, वड़पाड़ा और वाकल। तो हमारा देखा जाए मोटा मोटा चार तरीके का मेजर काम रहता है। फर्स्ट इसमें फॉरेस्ट प्रोटेक्शन होता है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट है उनको बचाना, उसके अंदर कोई भी गलत काम हो रहा है जैसे इलीगल कटिंग है, एंक्रोचमेंट है, फॉरेस्ट फायर है, तो इन सब चीजों को हम रोकते हैं। दूसरा हमारा मेजर काम रहता है एफॉरेस्टेशन और प्लांटेशन का, जो भी लैंड डिग्रेडेड है, जो भी जंगल विस्तार कट चुका है उस पे वापस हम पेड़ पौधे लगाते हैं और उनकी 4, 5, 10 साल तक उनकी रक्षा करते हैं, ताकि जो पेड़ है बीज से लेके एक बड़ा पेड़ होने का जो सफर है उसको हम सुनिश्चित करते हैं कि वो एक जो डिग्रेडेड एरिया है वो एक घने जंगल में तब्दील हो। तीसरा इसमें होता है जो भी ट्राइबल कम्युनिटी है जो जंगल पे डिपेंडेंट होती है, ये जहां मैं पोस्टेड हूँ ये ट्राइबल विस्तार है, तो ट्राइबल लोगों के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके लाइवलीहुड के लिए हम कई तरह के प्रोजेक्ट्स करते हैं, उनको एम्पावर करते हैं, उनको शिक्षा देते हैं, ताकि वो अपना जो एक स्तर है जीवन का स्तर उनका सुधर सके और वो अच्छा जीवन जी सके। और चौथा इम्पोर्टेंट काम होता है इको टूरिज्म, इसमें हम टूरिज्म को एक सस्टेनेबल और फ्रेंडली वे में प्रमोट करते हैं। जो लोग जंगल में रुकना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, और उसको कैसे सस्टेनेबली हम उसको

0: प्रमोट कर सकते हैं जंगल को, तो वो सब हम इको टूरिज्म साइट्स में करवाते हैं. इसमें ट्रैकिंग होती है, कैंपिंग होती है, स्टार गेजिंग होती है, लोगों को ट्राइबल कम्युनिटीज से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है. तो ये सारे हम प्रोजेक्ट भी करते हैं. तो ये मोटे मोटे चार काम है जो हम करते हैं.
1: जी बहुत बढ़िया सर, बहुत ही जिम्मेदारी वाला, जागरूक वाला काम है सर. सर ये तो जंगल की एक सामान्य बातचीत हुई, जंगल की दुनिया से परिचय हुआ, लेकिन आज वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे मनाया जा रहा है. हम आपसे जानना चाहेंगे कि रेन फॉरेस्ट क्या है.
0: रेन फॉरेस्ट एक तरह के डेंस फॉरेस्ट होते हैं जहां साल भर में बहुत अधिक वर्षा होती है. आमतौर पे देखा जाए तो लगभग 2000 mm से भी ज्यादा अगर जहां बारिश होती है उनको रेन फॉरेस्ट बोलते हैं. ये फॉरेस्ट दुनिया की जमीन का लगभग 6-7% हिस्सा कवर करते हैं, लेकिन इसमें इन जंगलों में पृथ्वी की लगभग 50% से अधिक प्लांट और एनिमल स्पीशीज पाई जाती है. इसलिए इन फॉरेस्ट को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी कहा जाता है.
1: अच्छा, तो इसे विश्व स्तर पर मनाने का क्या कारण है सर इस दिन को?
0: ये उद्देश्य है कि लोगों को ये समझाना कि रेन फॉरेस्ट सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं है. ये क्लाइमेट रेगुलेशन, रेनफॉल, बायोडाइवर्सिटी और इन जनरल ह्यूमन वेलबींग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फॉरेस्ट है. हर साल दुनिया में लाखों हेक्टेयर रेन फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं. ये कंजर्वेशन के प्रति जो अवेयरनेस बढ़ाने की आज की जरूरत है उसको हम वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे के तरह मनाते हैं, ताकि लोगों तक पहुंच पाए और इनकी इम्पोर्टेंस सबको बता पाए.
1: जी जी. और सर हम आजकल देखते हैं कि मौसम बड़े बदले हुए लगते हैं, बहुत बदलाव देखते हैं मौसम में, कहीं भीषण गर्मी, कहीं बारिश, कहीं सूखा. इस क्लाइमेट चेंज का क्या कारण है सर?
0: जी बिल्कुल, क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा कारण ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ता एमिशन है. ग्रीन हाउस गैसेस जैसे बेसिकली जो भी हम फॉसिल फ्यूल्स यूज करते हैं, पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है, तो इनका उपयोग और जो डिफॉरेस्टेशन इन जनरल जो मानव कर रहा है, पेड़ों को काट रहा है, तो अगर हम पिछले 150 वर्षों में देखें तो पृथ्वी का जो औसतन तापमान है लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस जितना बढ़ चुका है. और इसके कारण हमारे क्लाइमेट में चेंज हो रहा है. जब भी जंगल कटते हैं तो जो कार्बन एब्जॉर्प्शन हमारे पेड़ पौधे करते हैं वो कम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है. तो इसके कारण ये ग्रीन हाउस गैस का एक चेंबर बनता जा रहा है जो हमारी पृथ्वी और क्लाइमेट चेंज हो रहा है. तो इसी के कारण हम आजकल देख रहे हैं हीट वेव्स है, कहीं बाढ़ है, कहीं सूखा है, और अलग अलग जगह पे अलग अलग प्राकृतिक हमें ये डिजास्टर्स देखने को और झेलने को मिल रहे हैं, और इन सब का कारण ही क्लाइमेट चेंज है.
1: जी
2: बिल्कुल सर. तो अभी के लिए अगर हम देखें तो जो वर्षावन के नष्ट होने का कारण है, तो क्या इस ग्लोबल वार्मिंग को ही इसका कारण माना जाए, या सबसे बड़ी चुनौती है ये इसके लिए?
0: ग्लोबल वार्मिंग चुनौती है, लेकिन इसका जो रूट कॉज है वो है हमारे फॉरेस्ट पे बढ़ता हुआ ह्यूमन प्रेशर.
2: बिल्कुल,
0: आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, एग्रीकल्चर का एक्सपांशन हो रहा है, कई जगह से एंक्रोचमेंट हो रहा है, फॉरेस्ट में फायर लग रही है, कई जगह से इलीगल तरीके से पेड़ों की कटाई हो रही है. इन सारी चीजों से हमारा जंगल प्रभावित हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज भी इन्हीं चुनौतियों में से एक नई चुनौती बनकर उभरा है. क्योंकि इससे जो हमारे फॉरेस्ट फायर है, या जो डिजीज का अटैक होता है, पेस्ट अटैक है, या जो पानी का स्ट्रेस है वो और बढ़ रहा है. तो इसी कारण इसके कंजर्वेशन के साथ साथ हमें फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के साथ साथ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की भी बहुत जरूरत है, ताकि लोग अगर इस मूवमेंट को या इस इशू को समझ पाए तो हम सब साथ मिलके काम कर सकते हैं और हमारे जंगलों को बचा सकते हैं.
2: बिल्कुल सर. और जब बात सेफ्टी की आती है तो क्या फर्क होता है आम जंगलों की तुलना में, वर्षावनों का मैनेजमेंट और सेफ्टी कितना अलग होता है?
0: काफी डिफरेंस होता है. वर्षावन में जनरली जो पानी का फ्लो है, पानी जो गिरता है वो ज्यादा होता है, और जो आम जंगल हुए इंडिया की अगर बात करें तो थोड़े से सूखे जंगल होते हैं. सूखे जंगल में आग लगने की टेंडेंसी ज्यादा रहती है, पानी की कमी ज्यादा रहती है. वहीं अगर वर्षावन में देखा जाए तो पानी बहुत ज्यादा होता है, तो उस हिसाब से और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी होते हैं, तो वहाँ थोड़ा थ्रेट भी ज्यादा रहता है. तो जो स्पीशीज हम लगाते हैं, जो एफॉरेस्टेशन करते हैं,

0: या जिस तरह से पानी का मैनेजमेंट करते हैं वो दोनों जंगलों में बहुत अलग होता है और उसी हिसाब से ये जंगल सर्वाइव करते हैं।
1: और जब बात हो जाती है कि पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि पूरा पैटर्न ही चेंज हो गया है, बारिश का भी और किसी चीज़ का भी, तो कितना नुकसान पहुंचा है इन वर्षा वनों को?
0: जी जी मतलब इन वर्षा वनों को जो पैटर्न हमारा चेंज हुआ है, तो वर्षा वन को जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, बारिश की बहुत जरूरत होती है, पानी की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो पानी का फ्लो या जहां वर्षा जहां नहीं होनी चाहिए वहां ज्यादा हो रही है और जहां होनी चाहिए वहां कम हो रही है। तो इसके कारण वहां की जो बायोडाइवर्सिटी है, फ्लोरा है, फौना है, उनको इम्पैक्ट हो रहा है क्योंकि पानी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरा, टेम्परेचर में राइज हो रहा है, तो वर्षा वनों का जो टेम्परेचर होता है लगभग 25 डिग्री के आसपास वो चेंज हो रहा है, गर्मी ज्यादा बढ़ रही है। तो जैसे ही पर्यावरण में इवन एक डिग्री का भी जब चेंज आता है तो वहां का जो फ्लोरा फौना है वो स्ट्रेस में चले जाते हैं और उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी चुनौतियां बढ़ के आ रही है क्लाइमेट चेंज के कारण।
2: जी सर, आमतौर पर लोग सोचते हैं कि रेन फॉरेस्ट को हमसे बहुत दूर अमेजन या फिर अफ्रीका देशों में है, तो भारत या हमारे स्थानीय पर्यावरण के लिए इनका क्या महत्व है? ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को किस तरह प्रभावित करते हैं ये वर्षा वन?
0: ये एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है आज का। अगर क्लाइमेट देखे तो ग्लोबल है, हो सकता है जो ये वर्षा वन है हमसे हजारों लाखों किलोमीटर दूर है, लेकिन ये हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कई तरीके से इफेक्ट करता है। अमेजोन जो रेन फॉरेस्ट है उनको तो अर्थ का लंग्स बोला जाता है क्योंकि वो उसमें अरबों टन का कार्बन स्टोर है। तो ये जो अर्थ के लंग्स है ये ग्लोबल रेनफॉल पैटर्न्स को, टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं और उससे कहीं ना कहीं हम लोग भी इफेक्ट होते हैं। अगर भारत में बात की जाए तो हमारे यहाँ वेस्टर्न घाट्स है, अंडमान निकोबार के आइलैंड्स और फॉरेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट के रेन फॉरेस्ट है, तो इनसे निकलने वाली शुद्ध हवा, नदियां, साफ पानी, ये हमारे जीवन को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से फायदा पहुंचाते हैं। और अगर ये मॉनसून की जो पैटर्न्स है, एग्रीकल्चर है, फूड की सिक्योरिटी है, ये सारी चीजें इनसे इंटरकनेक्टेड है। तो ऐसा नहीं है कि अगर ये रेन फॉरेस्ट अफ्रीका या अमेरिका में है तो हमें इनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमारा जो पूरा जीवन है इसी पे स्थगित है।
2: बिल्कुल सर, भारत में रेन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पर है?
0: हाँ, जैसे अभी मैंने कहा वेस्टर्न घाट्स में है, अंडमान निकोबार आइलैंड में है और नॉर्थ ईस्ट के भी कई हिस्सों में,
2: असम, मेघालय। सर, अक्सर लोग सोचते हैं कि जंगलों को बचाना सिर्फ सरकार या वन विभाग का ही काम है, एक आम नागरिक जो शहर या गांव में बैठा है वह अपने आसपास के पर्यावरण के संरक्षण में अपना योगदान कैसे दे सकता है?
0: नहीं, जैसे हम छोटी से छोटी चीज में भी हम पर्यावरण को बचा सकते हैं और जो कंजर्वेशन की जिम्मेदारी है सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, हम सबकी है। तो सबसे आसान चीज है कि आप पेड़ लगाए, पौधे लगाए, उनका ध्यान रखिए, उनको बड़ा कीजिए। दूसरा है कि कोई भी अगर आप छोटा सा डिस्टेंस है, जैसे कुछ सामान लेना है, कहीं जाना है, तो ज्यादा से ज्यादा पैदल चलिए या साइकिल का इस्तेमाल करिए, पेट्रोल डीजल की गाड़ियों को अवॉइड कीजिए। तीसरा है जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, आजकल हम देखते हैं हर जगह प्लास्टिक का यूसेज है, तो कुछ भी आपको अगर सामान लेना है तो आप कपड़े का बैग या जूट का बैग लेके जाइए और जितना हो सकता है प्लास्टिक का कंजम्पशन कम कीजिए। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है पानी और बिजली। हम देखते हैं अक्सर कई लोग पानी को बहाते हैं, घर धोते हैं, गाड़ी धोते हैं और कई बार वेस्ट भी करते हैं, तो ये सारी टेंडेंसीज को हमें कम करना होगा। रेन वाटर की हार्वेस्टिंग करनी होगी, स्पेशली अगर हम जोधपुर की बात करें तो ऑलरेडी डेजर्ट का पार्ट है, तो जितना हो सकता है जो बरसाती पानी है उसका संग्रह करना चाहिए, वाटर को रिड्यूस और रिसाइकल करना चाहिए और बिजली को भी बचाना चाहिए। मतलब जहाँ जरूरत नहीं है लाइट, पंखा, एसी, उसका इस्तेमाल नहीं करना है,
2: बिल्कुल सर,
0: जितना हो सकता है मिनिमम यूसेज करना है
2: जी, इन सब बातों की जी।
0: एक एक मोटे तौर पे देखा जाए तो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को अपनाना है
2: जी।
0: अगर ये जो संदेश है, ये जो अंडरस्टैंडिंग अगर सभी में आ जाए तो जो पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, हमारा जो ड्यूटी है, वो अपने आप ही फुलफिल हो जाएगी और हमारा जंगल बच जाएगा।
2: बिल्कुल, आपके इस खास संदेश के साथ ही अगर हम पर्यावरण में इस तरह योगदान देंगे तो जरूर उसको हम

0: सहायता कर सकते हैं आज के वनों को बचाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव सर, आपसे बातचीत करके आज के पर्यावरण को लेकर एक नई सोच और नई ऊर्जा मिली है। चलते चलते अपनी पसंद का वो गाना हम जरूर सुनना चाहेंगे जो आप सुनना चाहते हैं सर।
1: मैं पल दो पल का टायर हूँ, मैं ये गाना सुनना चाहूंगा।
0: जी सर, बहुत ही अच्छी पसंद है। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है और फुटबॉल की दुनिया का सबसे जुनूनी, जोशीला और रोमांचक आयोजन है यह। फीफा विश्व कप 2026 11 जून से शुरू हो चुका है। इस बार 11 जून से 19 जुलाई तक यह चलेगा और कनाडा, मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका की संयुक्त मेजबानी में इतिहास रचा जाएगा इसमें, क्योंकि पहली बार इस टूर्नामेंट में 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं। लेकिन फुटबॉल का ये जो रोमांचक सफ़र है वो सिर्फ गोल करने तक सीमित नहीं है। इस खेल की असली जो बात होती है वो इसके संगीत में होती है। जी हाँ दोस्तों, इस बार इस महाकुंभ को संगीतमय बनाने के लिए एक नया एंथम तैयार किया गया है। इस साल की

0: कर एक गीत का जो नाम है वो है दाई दाई, जिसका इतालवी भाषा में अर्थ होता है चलो चलो। इस गीत की एक बेहद खूबसूरत पंक्ति है, व्हाट वंस ब्रोक यू मेड यू स्ट्रांग, मतलब जिस चीज़ ने तुम्हें कभी तोड़ दिया था उसी ने तुम्हें मजबूत बनाया है। यह संदेश मैदान में उतरने वाली हर टीम को विपरीत परिस्थितियों में भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की प्रेरणा देता है।
1: बिल्कुल, ये संदेश मैदान पर उतरने वाली टीम को विपरीत परिस्थितियों में भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की प्रेरणा देता है, जैसा कि चंद्रकला जी ने बताया। तो खास बात ये है श्रोताओं कि शुरुआती दौर में फीफा की तरफ से कोई भी आधिकारिक संगीत नहीं होता था और हर देश अपनी संस्कृति और धुनें साथ में लाता था। पहले विश्व कप की जीत का जश्न उन्होंने उरुग्वे चैंपियंस गीत से मनाया, जो इतना ज्यादा लोकप्रिय हुआ कि दशकों तक रिकॉर्ड किया जाता रहा। इटली के पास अपना ओपेरा था, स्पेन के पास कॉपलास और इंग्लैंड अपने ब्रास बैंड के साथ मैदान पर उतरता था। समय के साथ साथ प्रशंसकों के नारे ने अनौपचारिक राष्ट्रीय फुटबॉल गीतों का रूप ले लिया।
0: बिल्कुल, जैसे अर्जेंटीना का बामोस बामोस अर्जेंटीना, चलो चलो अर्जेंटीना, चलो हम जीतेंगे। मेक्सिको का सीएलितो लिंडो और 19वीं सदी का स्पेशनिस्ट लोकगीत है जिसका अर्थ है मेरी प्यारी जान।
1: और उरुग्वे का बामोस सिलिस्ते, यानी जिसका अर्थ है चलो जीते। ब्राजील का है यूसो ब्राजीलेरो, यानी मैं ब्राजीली हूँ। इस नारे के साथ जो प्रशंसक है वो सांबा नृत्य भी करते थे।
0: और फुटबॉल और संगीत की यह जो जुगलबंदी है दोस्तों, सदियों पुरानी और अटूट है। जब मैदान पर पैर थिरकते हैं तब स्टैंड से गूंजती ये धुने और एंथम खिलाड़ियों में वो ऊर्जा फूंकते हैं जो इतिहास रच देते हैं, और यही है आज की खास की बात।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया किडबैग चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
2: करेक्ट।
3: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले
1: ले आ गया नया किडबैग।
4: RBI कहता है
5: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।

0: साथ अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: यार का मौसम,
4: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
5: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: श्रोताओं, अब कार्यक्रम में बात जयंती विशेष की तो आज हम याद कर रहे हैं भारतीय सिनेमा और थिएटर के एक अनूठे और शानदार चेहरे जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। नीली आंखें और चेहरे पर विदेशी लुक, लेकिन जब वो बोलते थे तो उनके मुंह से बहती हुई शुद्ध मखमली हिंदी और उर्दू की रवानगी सुनकर अच्छे अच्छे विद्वान दंग रह जाते थे। वो दिखने में भले ही विदेशी थे, लेकिन दिल और आत्मा से पूरी तरह हिंदुस्तानी। नाम है टॉम एल्टर। आज उनकी जयंती पर हम उन्हें याद कर रहे हैं। उन्होंने करीब 300 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया था श्रोताओं, और 2008 में भारत सरकार द्वारा टॉम एल्टर को पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। उनके मुख्य फिल्मों की अगर हम बात करें तो वो है शतरंज के खिलाड़ी, राम तेरी गंगा मैली, क्रांति, चरस, आशिकी, वीर जारा। और 29 सितंबर 2017 को इस महान कलाकार ने दुनिया को अलविदा कह दिया था।
1: जी हाँ दोस्तों, और भारतीय सिनेमा के इतिहास में जब भी सबसे प्रभावशाली, रौबदार और यादगार खलनायकों का जिक्र होगा तो अमरीश पुरी जी का नाम सबसे ऊपर लिया जाएगा। आज अभिनेता अमरीश पुरी की भी जयंती है। अपनी कड़क आवाज, बड़ी बड़ी आंखों और दमदार अभिनय से उन्होंने पर्दे पर जो खौफ और करिश्मा पैदा किया, उसकी मिसाल आज भी दी जाती है। अमरीश पुरी केवल महान खलनायक ही नहीं, बेहद संवेदनशील और बहुमुखी प्रतिभा के धनी भी थे। अभिनेता के रूप में निशान, मंथन और भूमिका जैसी फिल्मों में अपनी पहचान बनाने वाले अमरीश पुरी ने बाद में खलनायक के रूप में काफी प्रसिद्धि पाई।

0: दोस्तों आज के नमस्कार के अंक को देते हैं यहीं विराम। इस सफर में मैं थी आपके साथ चंद्रकला सुथार
1: और मैं सोफिया खान। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

ये आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सन सिटी चैनल है। एफएम बैंड 102.1 मेगा हर्ट्स पर। आइए आपको सुनवाते हैं हमारा अगला कार्यक्रम जिंदगी जंक्शन।

0: दोस्तों नमस्कार, प्रोग्राम जिंदगी जंक्शन लेकर हाजिर हैं हम दो होस्ट, मैं चंद्रकला सुथार
1: और मैं सोफिया खान, और कंसोल पर है हमारे साथ नीतू।
0: जी हाँ दोस्तों, आज बातें होने वाली है प्यार से, प्यार पर। जी हाँ, प्यार, मोहब्बत, इश्क, कुछ भी कह लीजिए। कहते हैं कि दुनिया के सफ़र में कई मुसाफिर मिलते हैं और बिछड़ जाते हैं, लेकिन प्यार एक ऐसा हम सफ़र है जो अगर एक बार ज़िंदगी में आ जाए तो फिर कभी भी वापस नहीं जाता है। वह हमारी यादों में, हमेशा हमारी आदतों में और हमारी हर छोटी सी मुस्कुराहट में हमेशा के लिए घर कर लेता है। प्यार सिर्फ वो नहीं जो फिल्मों के गानों में दिखता है या जो बड़ी बड़ी शायरियों में बयां होता है। प्यार तो बहुत छोटा सा, मासूम सा लफ्ज़ है, लेकिन अपने अंदर पूरी कायनात समेटे हुए है। परवाह का दूसरा नाम भी तो प्यार है। किसी के घर पहुंचने पर फ़ोन कर देना, यह भी तो प्यार है। बिना कुछ कहे बस किसी के पास बैठकर उसकी थकान बांट लेना भी तो प्यार है। और सबसे ज़रूरी, अपनी तमाम कमियों के साथ खुद को कबूल करना, खुद से मोहब्बत करना भी तो इसी का एक खूबसूरत हिस्सा है। दोस्तों तो शुरू करते हैं प्यार का सफ़र इस प्यारे से गीत के साथ।

0: उफ, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है। कहां कहां इलाज ना करवाया।
1: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
2: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
3: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
2: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।
4: अपने खेत, बगीचे, घर, टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
5: आज ही पधारे लालजी नर्सरी, राणोजी का बाग, खोखरिया, बिरा मंडो।
4: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
6: लालजी नर्सरिया, कुछ समय हरियाली में बिताओ।
7: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबराकर अपनी आँखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
8: 102.1 FM Sun City सुन रहे हैं आप, और प्रोग्राम है जिंदगी जंक्शन। और आज जिंदगी जंक्शन में बात एक अहम यानी प्यार की। बिल्कुल प्यार के बिना जिंदगी अधूरी सी है श्रोताओं। बात यह है कि दोस्तों, हम अपनी रोजमर्रा की जो जिंदगी है इसमें इतने मशरूफ हो जाते हैं कि अक्सर उन छोटे छोटे एहसासों को जीना भूल जाते हैं जो हमें अलग बनाते हैं, हमें अहम बनाते हैं। एक ऐसा एहसास है प्यार। प्यार वो ठहराव है जो हमें अपनों के करीब लाता है। ये एक ऐसा एहसास है जब आप किसी और की खुशी को अपनी खुशी से ऊपर रख देते हैं, जब किसी के चेहरे की एक छोटी सी मुस्कान आपके पूरे दिन की टेंशन, थकान मिटा देती है। बस यही है प्यार।
9: जी हाँ दोस्तों, जब आंखों से उतरकर प्यार है जो दिल में बस जाता है, तो वो इश्क ही है जो रूह को महकाता है। ज़रूरी नहीं होता है कि वो हमेशा पास रहे, इश्क तो वो है जो फासलों में भी नज़र आता है। और कहते ना कि अजीब सा रिश्ता है ये, न पास है न दूर है, मगर हर धड़कन में बस उसी का नूर है।

दोस्तों, प्यार में कभी ठहराव है तो कभी एक मीठी सी तड़प, कभी हम यह हमें खुद से मिलाता है तो कभी किसी और का बना देता है। प्यार केवल शब्दों इजहार

0: करों या किसी खास मौके पर जताए गए भाव का नाम नहीं है दोस्तों, यह उस सुकून में छिपा होता है जहां दो लोग बिना किसी दबाव के एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। और सच्चा प्यार तो वह है जहां किसी को बांधने की कोशिश नहीं होती है, बल्कि उसे उसकी पूरी आज़ादी के साथ स्वीकार किया जाता है।
1: बिल्कुल, प्यार में कभी कभी तकरार होती है, रूठना मनाना भी होता है, लेकिन इन सब के बीच जो चीज़ सबसे ज़रूरी है वो है एक दूसरे पर अटूट भरोसा। और प्यार किसी को भी अपनी शर्तों पर बदलना नहीं श्रोताओं, बल्कि वो जैसा है उसे उसकी पूरी यानी तमाम कमियों के साथ अपनाना ही प्यार है।
0: जी हाँ दोस्तों, और यह उस विश्वास में भी बसता है जहाँ दूरी भी रिश्ते को कमज़ोर नहीं कर सकती है। जब दो लोग एक दूसरे के खुलकर जीने का अवसर देते हैं, तब उनका संबंध और ज़्यादा गहरा हो जाता है।

0: तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि प्यार शब्दों से नहीं बल्कि खामोशी से समझ में आता है। बिना कुछ कहे एक दूसरे के पास बैठना, उस मौन को महसूस करना, बस यही तो पल होते हैं जहाँ रिश्ता अपनी असली गहराई दिखाता है। और यह खामोशी खालीपन नहीं होता है, बल्कि एक ऐसा जुड़ाव होता है जहाँ किसी स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं पड़ती है।
1: बिल्कुल, हमारी जो लाइफ है उसमें प्यार का जो अहमियत है वो सबसे ऊपर है, क्योंकि ये जीवन को जीने का असली मतलब बताती है और साथ ही साथ मानसिक शांति और खुशी भी देती है। क्योंकि अगर हम प्रेम में होते हैं तो सब कुछ जो है अच्छा लगता है, और ये सिर्फ एक रिश्ते तक सीमित नहीं है, ये इसमें बहुत सारे रिश्ते आ जाते हैं, बहुत सारे चीज़ें आ जाती है। जैसे अगर हमारे हमें हमारे पेरेंट्स से भी बहुत सारा प्यार होता है, प्यार मिलता भी है, हमारे हमें अपने खास दोस्त से भी बहुत सारा प्यार मिलता है और हम उसे देते भी है, बस एक रिश्ते तक ये सीमित नहीं है।
0: पर जरूरी ये होता है कि उस प्यार में स्वतंत्र होना बहुत जरूरी होता है,
1: बिल्कुल
0: किसी तरह का दबाव ना हो। जब दो लोग अपने अपने शौक और अपने विचार और अपने समय को जी पाते हैं, तभी तो उनका रिश्ता है जो अच्छे से निभ पाता है, बोझ नहीं बनता है।

0: अपने खेत बगीचे घर टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
1: आज ही पधारे लालजी नर्सरी, रानोजी का बाग, खोखरिया, बिरामंडो।
0: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
2: लालजी नर्सरिया, कुछ समय हरियाली में बिताओ।
3: उफ, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है, कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
4: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
5: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
6: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
5: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।
7: सोफिया, हम बात कर रहे थे कि प्यार तब सबसे सुंदर होता है जब उसमें किसी को बदलने की कोशिश नहीं की जाती है,
8: बिल्कुल,
7: बल्कि उसे वैसे ही स्वीकार कर लिया जाता है जैसा वह होता है, है ना। और यही तो वह प्यार है जो दिखावे से परे होता है और सादगी में मतलब एक अच्छाई ढूंढता है और एक दूसरे को अपने होने की पूरी आजादी देता है,
8: बंधन नहीं होता है,
7: बंधन नहीं होता है। और प्यार इंसान के जीवन का एक ऐसा अनुभव भी तो है जो उसे अंदर से बदल देता है।
8: बिल्कुल, जीवन के जो कठिन समय होते हैं उसमें एक मजबूत सहारा होता है प्यार, अकेलेपन से आजादी देने वाला होता है प्यार।
7: बिल्कुल, और जब कोई किसी से या किसी चीज से सच्चा लगाव महसूस होता है तो उसका मन उसी के इर्द गिर्द घूमने लगता है, हर ख्याल, हर भावना, हर छोटी बड़ी बात उसी से जुड़ जाती है, जीवन का केंद्र जैसे बदल सा गया है ऐसा लगता है ना। और अब सब कुछ उसी एक एहसास की ओर बह रहा होता है। प्यार में डूबा हुआ जो भी इंसान होता है वो अक्सर इस अवस्था में पहुंच जाता है जहां उसे बाकी दुनिया है जो फीकी सी लगने लगती है, सही बात है ना।
8: बिल्कुल,
7: और काम, जिम्मेदारियां, दिनचर्या सब कुछ जैसे एक औपचारिकता भर रह जाती है। मन बार बार उसी व्यक्ति की ओर भागता है, उसकी बातें याद करता है, उसके साथ बिताए पलों को याद करता रहता है।

0: बिल्कुल श्रोताओं, आज बात कर रहे हैं प्रेम की यानी प्यार की। जीवन की सार्थकता सिखाता है ये प्यार। बिना प्रेम के जीवन निरस है श्रोताओं। ये प्यार ही है जो हमें प्रेम के धागे में बांधे रखता है, विश्वास और भरोसे का प्रतीक। और कई वादे भी तो होते हैं इसमें, इसमें उनको पूरा करने की उम्मीद भी होती है। प्यार वैसे तो ढाई अक्षर का एक छोटा सा शब्द है, लेकिन पूरी कायनात को अपने अंदर ये समेटे हुए है।
1: तभी तो कहा है कि इश्क तो बस एक खामोश इबादत है, जिसे हो जाए बस वही जानता है। ना कोई शोर ना कोई तमाशा, बस एक रूह का रूह से मिल जाना होता है।

0: सोफिया, प्यार की बात हो रही है और प्यार में एक बात और होती है, उत्सुकता,
1: बिल्कुल
0: एक्साइटमेंट ना, सामने वाला क्या सोचेगा, क्या कहेगा, उसका अगला कदम क्या होगा, इन सब बातों को जानने की एक तीव्र इच्छा बनी रहती है हर संदेश।
1: या यू कहें कि पूरी दुनिया ही उसके इर्द गिर्द घूमती
0: बिल्कुल
1: है।
0: बिल्कुल। और
1: बिल्कुल
0: हर संदेश, हर कॉल, हर छोटी प्रतिक्रिया, मतलब दिल को, धड़कनों को है जो तेज कर देती है,
1: बिल्कुल,
0: ऐसा लगता
1: सारी
0: है।
1: बातें जो होती है उसी से शुरू उसी से
0: खत्म।
1: खत्म।
0: हाँ, और ऐसा लगता है जैसे जीवन का हर उत्तर उसी व्यक्ति के पास है, लेकिन यहीं से एक एक छोटी सी बात और होती है जो महत्वपूर्ण मोड़ भी ले लेती है। कहते हैं ना कि प्यार करते करते इंसान धीरे धीरे यह भी भूल जाता है कि सामने वाला और वह दो अलग अलग व्यक्तित्व हैं,
1: बिल्कुल
0: और वह अपनी दुनिया और सामने वाले की दुनिया को एक मान बैठता है। वह सोचता है कि उसे अच्छा लगता है, वही सामने वाले को भी सही लगेगा। अब उसकी देखभाल करने की इच्छा भी इतनी बढ़ जाती है कि वह अनजाने में सामने वाले के जीवन में जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप करने लगता है।
1: बिल्कुल, और कहते हैं कि उसमें डूब जाना ही अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें ये चीज़ उभर के सामने आती है कि हम भूल जाते हैं कि सही गलत क्या है।
0: हाँ, और ज़्यादा केयर कभी कभी सामने वाले के लिए असहजता भी बन जाती है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक अलग अलग अस्तित्व होता है, उसकी अपनी सोच होती है, सीमाएं होती है, प्राथमिकताएं भी तो होती हैं। प्यार में ये समझना भी तो ज़रूरी होता है कि सामने वाला आपसे जुड़ा जरूर है, लेकिन वह आप नहीं है।
1: बिल्कुल, यानी
0: और
1: प्रेम में सम्मान भी जरूरी है।
0: बिल्कुल।

0: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबराकर अपनी आंखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
1: हम भी तो यही बता रहे हैं सोफिया की मोहब्बत है क्या चीज।
2: बिल्कुल, ये चीज ही ऐसी है क्योंकि इसका जो लाइफ में है असर है बहुत ज्यादा होता है और जब असर होता है तो सही गलत का फैसला करना भी मुश्किल हो जाता है। और जैसे हमने पहले बात की थी कि इसमें सम्मान होना जरूरी है और सम्मान के साथ विश्वास भी जरूरी है। अगले पे विश्वास होना चाहिए कि जो कुछ वो कह रहा है या जो कुछ वो कर रहा है उसकी जो बातचीत है हमसे इस तरह से होनी चाहिए कि उसका विश्वास टिका रहे। किसी दूसरे की बातों में आके हम उस रिश्ते से जो है वो डगमगाए ना। और प्यार में जो श्रोताओं इंसान नेगेटिविटी से भी दूर रहता है क्योंकि पॉजिटिवनेस बहुत ज़्यादा होती है उसमें, क्योंकि विश्वास का दायरा बहुत ज़्यादा होता है। उससे हर चीज़ में सिर्फ अच्छाई दिखाई देती है और जब प्यार सच्चा होता है तो उससे प्रेरित होकर इंसान यानी हम जीवन में आगे भी बढ़ते हैं क्योंकि हर पद पर उसका साथ, उसको आगे बढ़ाने की हिम्मत जो है वो हमारे बीच होती है।
1: और हम तो यही कहते हैं कि मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने मरने का, मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने मरने का, उसी को देखकर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले।

0: दोस्तों लफ्ज कम पड़ जाते हैं जब मोहब्बत की बात होती है। ये वो इबादत है जो बिना कहे मुकम्मल होती है। जिंदगी बहुत छोटी है दोस्तों, इसमें शिकवे शिकायतों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अगर आपके दिल में किसी के लिए मोहब्बत है, सम्मान है, तो उसे जताने में देर भी मत कीजिए। कभी कभी एक छोटा सा थैंक यू या आई केयर किसी उदास चेहरे पर दुनिया की सबसे खूबसूरत मुस्कान ला सकता है। प्यार को सिर्फ पाने का नाम मत दीजिए, प्यार तो देने और बांटने का नाम है। किसी के चेहरे की खुशी का वजह बनने का नाम है। और खुद से भी उतनी ही मोहब्बत कीजिए जितनी दुनिया से करते हैं, क्योंकि जो दिल खुश होता है वही चारों तरफ खुशियां बिखेरने का जो है हिम्मत रखता है और वही बिखेरता है। चलते चलते इन खूबसूरत शेर के साथ ही प्रोग्राम को देते हैं ये विराम। बिछड़ कर भी जो रह जाए वजूद में कहीं, बिछड़ कर भी जो रह जाए वजूद में कहीं, मोहब्बत उसे कहते हैं जो कभी मरती नहीं। जिंदगी जंक्शन का सफर दोस्तों आपने तय किया चंद्रकला सुथार
1: और सूफिया खान के साथ, और अब प्रोग्राम से दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।

102.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सन सिटी चैनल। प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम मंडे मेलोडीज़।

नमस्कार दोस्तों, आदाब। और आप सभी को एक प्यारी सी मंडे मॉर्निंग की शुभकामनाएं। मैं हूं नीतू और आप सुन रहे हैं मंडे मेलोडीज। हर सोमवार हम मिलते हैं एक नई थीम के साथ, कुछ खास बातों के साथ और दिल को छू लेने वाले सुरों के साथ। सिनेमा एक ऐसा जादू जो हमें हंसाता भी है, रुलाता भी है, कभी सपने दिखाता है, कभी जिंदगी की सच्चाई से रूबरू करवाता है। हर फिल्म के पीछे सिर्फ एक कहानी नहीं होती, उसके पीछे होती है मेहनत, लगन और इमोशंस और कई सारे दिलचस्प किस्से। कई बार जो चीज़ें पर्दे पर 3 घंटों में हमें नज़र आती हैं, उनके पीछे सालों की मेहनत छुपी होती है। आज हम कुछ ऐसी ही बेहतरीन फिल्मों के अनसुने किस्से जानेंगे और उनसे जुड़े कुछ सदाबहार गीतों का भी लुत्फ़ उठाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खूबसूरत सफ़र।

0: हरियाली में बिताओ।
1: बॉलीवुड की जब भी बेहतरीन फिल्मों की बात होती है तो शोले का नाम सबसे पहले आता है। जी हाँ, एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी, दोस्ती की इस फिल्म में सब कुछ था। एक मज़ेदार बात यह है कि दोस्तों, इस फिल्म को पूरा होने में लगभग 2 साल लगे और गब्बर सिंह के रोल के लिए कई कलाकारों को कंसीडर भी किया गया, लेकिन जब अमजद खान आए हर चीज़ बदल गई। उनकी आवाज़, उनका अंदाज़, उनकी डायलॉग डिलीवरी, सब कुछ आइकॉनिक बन गया। आज भी कितने आदमी थे, सुनते ही सबके दिमाग में गब्बर आ जाता है। और दोस्तों, बात अगर दोस्ती की करें तो दोस्ती की बात आते ही जय और वीरू याद ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता।

0: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल शिप हाउस पावटा जोधपुर।
1: अपने खेत बगीचे घर टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
2: आज ही पधारे लालजी नर्सरी, रानोजी का बाग, खोखरिया, बिरामंडो।
1: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
3: लालजी नर्सरी कुछ समय

0: थ्री प्रोस्टेट गुर्दा रोग, मूत्र रोग व यौन रोगों के इलाज हेतु सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रकाश रांका, यूरोलॉजिस्ट व एंड्रोलॉजिस्ट, बरकतुल्लाह स्टेडियम के सामने, जोधपुर। मोबाइल 9829027065।
1: थ्री प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायका हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
2: RGHS व चिरंजीवी योजना के अंतर्गत निशुल्क ऑपरेशन। पथरी मतलब विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।

अब चलते हैं बॉलीवुड के गोल्डन एरा की तरफ। मुगल-ए-आज़म सिर्फ एक फिल्म नहीं, वो एक सिनेमैटिक मास्टरपीस थी। इस फिल्म को बनाने में लगभग 10 साल लग गए, सोचिए 10 साल। परफेक्शन के लिए इतना धैर्य और इतनी लगन। और जब बात होती है प्यार किया तो डरना क्या, तो आज भी ये गीत टाइमलेस लगता है। श्रोताओं, मैं आपको ये भी बता दूं कि शीश महल सेट विशेषतः डिज़ाइन किया गया था और उस समय के हिसाब से बहुत ही ग्रैंड था। मधुबाला की खूबसूरती और ग्रेस ने इस गाने को अमर बना दिया।

90 के दशक के लिए ये फिल्म एक इमोशन है, राज और सिमरन की लव स्टोरी। इस लव स्टोरी ने रोमांच को एक नई परिभाषा दी। मज़ेदार तथ्य तो ये है कि शाहरुख खान शुरुआत में इस किरदार को करने के लिए तैयार ही नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने इस किरदार को स्वीकारा तो ये इतिहास बन गया। आज भी इस फिल्म का चार्म बिल्कुल भी कम नहीं हुआ।

दोस्तों, फिल्मों का जो रिश्ता है वो हम सबके दिल से जुड़ा होता है। कभी एक गाना पुरानी याद ताज़ा कर देता है, कभी एक डायलॉग जिंदगी का लेसन दे देता है। आप भी सोचिए, कौन सी फिल्म ने आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया?

0: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल शिप हाउस पावटा जोधपुर।
1: दुनिया रा सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न रो सुख एक तरफ,
2: निसंतान दंपतियारे जीवन में खुशियारी उम्मीद, विनायका हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर, गीता भवन रोड जोधपुर।
3: लगान एक हिस्टोरिक फिल्म थी। इस फिल्म ने न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नाम कमाया। आमिर खान और पूरी टीम ने बहुत मेहनत की। क्रिकेट का सीक्वेंस सीखने के लिए कलाकारों को प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी गई। इसी मेहनत का परिणाम था इस फिल्म का ऑस्कर नॉमिनेशन तक पहुंचना।

पथरी, प्रोस्टेट, गुर्दा रोग, मूत्र रोग व यौन रोगों के इलाज हेतु सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रकाश रांका, यूरोलॉजिस्ट व एंड्रोलॉजिस्ट, बरकतुल्ला स्टेडियम के सामने, जोधपुर। मोबाइल 9829027065।

दोस्तों, कुछ फिल्में वक्त के साथ पुरानी नहीं होती, बस और गहरी हो जाती हैं। आनंद उन्हीं में से एक है। राजेश खन्ना की एक्टिंग और फिल्म की सरलता ने सबका दिल जीत लिया। फिल्म का संदेश आज भी प्रासंगिक है, जिंदगी को खुलकर जीने का।

दोस्तों, फिल्म सिर्फ स्क्रीन पर चलने वाली कहानियाँ नहीं होती, ये इमोशंस होते हैं, ये यादें होती हैं, ऐसी यादें जो कभी कभी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। हर फिल्म के पीछे एक कहानी होती है और हर गीत के पीछे एक एहसास।

0: मैं नीतू सिंधी आपसे इजाज़त लेती हूँ, मिलेंगे फिर से इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है मंडे मेलोडीज। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुरों के साथ जुड़े रहिए। FM बैंड 102.1 MHz पर आप सुन रही हैं आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल। प्रस्तुत है हिंदी समाचार जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों और अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख हिस्सा लेंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित तीन पोतों दुनागिरी संशोधक और अग्रे को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
0: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जल्दाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में दो और घायलों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में दो महिला और एक बच्चा शामिल है। 25 घायल यात्रियों का उपचार जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की एक बस को पीछे से आ रही स्टेशनरी ट्रक ने टक्कर मार दी। पुलिस, जिला प्रशासन अधिकारी और स्थानीय निवासियों ने तुरंत बचाव और राहत अभियान शुरू किया। राज्य के परिवहन मंत्री आनंदमय बर्मन ने दुर्घटना स्थल और अस्पताल का दौरा किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और दो मंत्रियों ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया और घायलों के तेजी से स्वस्थ होने की कामना की। यूजीसी नेट जून की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने बताया कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित की जाएगी। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के नेतृत्व के साथ मुलाकात करेंगे। वे मंगोलिया के विदेश मंत्री बी बिल्सिक से एक साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। यात्रा के दौरान डॉ. जयशंकर विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। कतर के प्रमुख प्राकृतिक गैस निर्यात ढांचे में हुए एक विस्फोट में 54 लोग घायल हो गए और 18 लोग लापता हैं। ये विस्फोट कल रात रास लाफान औद्योगिक क्षेत्र में हुआ, जो दुनिया के प्रमुख ऊर्जा केंद्रों में शामिल है। खबरों के अनुसार क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़े व्यवधानों के बाद संयंत्र में परिचालन कार्य दोबारा शुरू करने का काम चल रहा था। फीफा विश्व कप में मिस्र ने आज सुबह वैंकुवर में न्यूजीलैंड पर 3-1 से जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने इस टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: समाचारों के पश्चात आइए आपको सुनवाते हैं हमारी राष्ट्रीय प्रसारण सेवा से प्रसारित कार्यक्रम
3: की महफिल में। आज हमने यादें सजाई हैं गीतकार शैलेंद्र की कलम से निकले हुए बोलों के साथ, यानी उनके द्वारा लिखे गए गीतों के साथ। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का यह पहला गीत, जिसे लिया है फिल्म सीमा से। मन्ना डे की आवाज है, शैलेंद्र के बोल है और शंकर जयकिशन का है संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। यादों की महफिल में शैलेंद्र की कलम से निकले सुंदर गीतों का संयोजन आज हमने किया है, तो आइए सुनते हैं अगला गीत जो कि फिल्म आवाज है मुकेश की, और इसे लिया गया है फिल्म आवारा से। शैलेंद्र की बोल है और शंकर जयकिशन का है संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का यह अगला नगमा, जिसे लिखा है गीतकार शैलेंद्र ने, संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने, गाया है लता मंगेशकर और मन्ना डे ने, और फिल्म का नाम है श्री 420।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
3: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
2: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
4: एक टुकड़ा धूप का।
2: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
2: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम यादों की महफिल में।

हम सुन रहे थे अनाड़ी फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में, शैलेंद्र के बोल शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए चलते सुनते हैं अगला गीत कार्यक्रम यादों की महफिल से। यह गीत है चोरी चोरी फिल्म से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मन्ना डे ने। शैलेंद्र के बोल हैं, शंकर जयकिशन का है संगीत।

0: जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा होगी।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम यादों की महफिल में आइए सुनते हैं अगला नगमा, मधुमती फिल्म से मुकेश की आवाज में, शैलेंद्र के बोल और सलील चौधरी के संगीत से सजा हुआ।

हम सुन रहे थे बरसात फिल्म का यह गीत, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में, शैलेंद्र के बोल और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। आइए सुनते हैं

हम सुन रहे थे ये गीत मेरा नाम जोकर फिल्म से मुकेश की आवाज में शैलेंद्र के बोलों के साथ शंकर जी किशन का है संगीत। आप सुन रहे यादों की महफिल और यादों की महफिल का यह अंतिम गीत हमने आज याद किया गीतकार शैलेंद्र को आज यादों की महफिल के साथ। आगे दीजिए कार्यक्रम यादों की महफिल से मुझे नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सुरीला सफर शुरू होगा बस थोड़ी ही देर के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का सुरीला सफर में। सुरीला सफर एक कार्यक्रम जहां पर हम भेजते हैं आपके पास एक इबारत और उस इबारत से पूछते हैं बहुत सारे प्रश्न। हालांकि हमारे श्रोता इतने होशियार हैं कि प्रश्नों के उत्तर पूछे बिना ही कई सारे उत्तर खुद ही दे देते हैं, और उस समझदारी के लिए ये जो इबारत है वह हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। इबारत कुछ ऐसी है कि कुछ शायरियां जो या शेर जो फिल्मों में उपयोग किए गए हैं या फिल्मों में बोले गए हैं, उन शेरों को आज हमने संकलित किया है और आप सबके बीच में लेकर आए हैं। बस आपको पहचानना है कि ये शेर किस फिल्म से है। हो सकता है कोई शेर 1, 2, 3, 4 कई फिल्मों में उपयोग किया गया हो, तो ये भी आंकते हैं कि आपकी पहचानी हुई फिल्म और हमारी पहचानी हुई फिल्म क्या एक ही है, ये प्रश्न भी आज बनता है। तो चलिए चलते हैं उन शेरों की तरफ, और हम ऐसा करेंगे कि आपके बीच में एक एक शेर अदायगी करते जाएंगे और उस शेर के बारे में बात करते जाएंगे। तो इबारत की इबारत पढ़ लेंगे और इसके साथ ही हम आपके बीच में वो शेर भी रख देंगे। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं इबारत के साथ, और इबारत का पहला शेर है कि ना जाने किस लिए उम्मीदें वार रखते हैं, न जाने किस लिए उम्मीदें वार रखते हैं, जफा करते हैं वो लेकिन हम उनसे प्यार करते हैं। और इस इबारत की, इस शेर की तरफ बढ़ूं उसके पहले हमारे श्रोताओं ने बड़ी अच्छी बातें लिखी हैं। हमारे ये श्रोता लिखते हैं कि भावनाओं और विचारों को सुंदर, लयबद्ध और प्रभावशाली तरीके से व्यक्त करने का माध्यम है शेर, और उर्दू और हिंदी साहित्य की एक बेहद लोकप्रिय विधा है। इसमें प्रेम, विरह, खुशी, दर्द और समाज की सच्चाई जैसे तमाम जज्बातों को बयां किया जाता है। बिल्कुल सही बात कही आपने। इसके साथ ही हमारे एक और श्रोता कहते हैं आज की इबारत में चुनिंदा शेरों का निचोड़ यह है कि जिंदगी मोहब्बत, उम्मीद और तन्हाई का एक हसीन सफर है, जहां दिल हकीकत से वाकिफ होने के बावजूद खुद को बहलाने के लिए हसीन ख्याल बुनता रहता है। अधूरी ख्वाहिशों और मौत के दरिया से भी परवाह यह शायराना रूह अपनी ही मोहब्बत से नफरत करने के बावजूद ईश्वर के फानूस तले हर मुश्किल को खूबसूरत मोड़ देकर जिंदगी के चिराग को रोशन रखती है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत के शेर और संवाद प्रेम, तन्हाई, उम्मीद, वफा और जीवन दर्शन के रंगों से सजे हुए हैं। कहीं मोहब्बत की कसक है, कहीं बिछड़ने का दर्द, तो कहीं जीवन को सहजता से स्वीकार करने का संदेश। कुछ गानों की लाइनें भी हैं जिनके

के बारे में आपने लिखा है, तो चलिए हम चलते हैं पहले गीत की तरफ और पहले प्रश्न की तरफ भी। आप ये बता दीजिएगा कि इस गीत को गाया किसने है, यानी गायक कलाकार का नाम बता दीजिए, और इस शेर के साथ एक प्रश्न है जो पूरे समय आपके साथ में चलेगा। ये प्रश्न ये है कि ये बताइए कि कौन सी शायरी या कौन सा शेर या कौन सी कविता ऐसी है जो आपके दिल में आज भी है, जिसे आपने कहीं किसी रोज किसी फिल्म में सुना था, अपनी पसंदीदा शायरी, अपना पसंदीदा डायलॉग तो नहीं कहेंगे, उसे शेर कहेंगे या कविता कहेंगे, जिसे पद्यात्मक रूप से लिखा गया है, वो कौन सा है जो आपके दिल में आज भी सजा हुआ है। साझा कीजिए इस बात को और बताइए ये गायक कलाकार कौन है।

हम सुन रहे थे गीत फिर वही दिल लाया हूँ फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में मजरूह के बोल और ओपी नैयर के संगीत के साथ में. हमने आपसे बात करी और हमने पूछा कि ये किस फिल्म का गीत है, तो हमारे श्रोताओं ने बहुत सही उत्तर दिया. हमारे एक श्रोता ने उत्तर भी बड़े अच्छे तरीके से दिया कि फिल्म का टाइटल गीत है. मोहम्मद रफी, आशा भोसले, संगीतकार ओपी नैयर जी. बिल्कुल सही बात है, इसमें आशा भोसले की जी की आवाज़ नहीं थी, तो हमने इस गीत को सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में. चलिए अब हम चलते हैं.

आगे की जो बातें आपके साथ में चल रही थी उन बातों की तरफ, और हमारे श्रोता लिखते बहुत अच्छा है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि शायरिया तो मुझे याद नहीं, पर मैंने फिल्म देखी थी मीना कुमारी और दिलीप कुमार की, यहूदी। उसमें काफी बड़े चुनिंदा और अच्छे शायर थे, शेर थे, तो जो मुझे याद तो कम है पर बहुत अच्छे शेर थे। फिल्म देखने के बाद वो शेर मैंने अपनी डायरी में भी नोट किए हुए हैं। ये कितनी अच्छी आदत है ना कि जो कुछ अच्छा लगे उसे अपने पास लिख ले, तो आज नहीं कभी ना कभी तो काम आता ही है। बहुत अच्छा किया आपने उन्हें अपने पास लिखकर। और हमारे श्रोताओं से हमने पूछा कि कोई शायर या कोई शेर या कोई शायरी अगर आपको पसंद है तो वो आप हमारे साथ साझा करें, परंतु अगर वह फिल्मों में उपयोग की गई है तो ज्यादा अच्छा होगा। तो हमारे श्रोता लिखते हैं, हालांकि उनका प्रसिद्ध गजल का एक हिस्सा, दुष्यंत कुमार की गजल का यह हिस्सा जो है वह उन्हें बड़ा पसंद है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। कितना बढ़िया कहा आपने। और ऐसे ही हमारे श्रोताओं ने, अन्य कई श्रोताओं ने भी बहुत बढ़िया लिखा। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि हमारी आवाज अब तक, आपकी आवाज हमारी आवाज मिल रही है, सुन रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उन्हें मिर्जा गालिब का शेर याद है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे शेर और बहुत अच्छे दिल के जज्बात ये लोग लिख देते हैं, और ऐसा लगता है कि हमारे लिए ही लिख दिया गया है। ऐसे ही हमारे श्रोताओं ने, कई सारे श्रोताओं ने कई सारे अन्य शेरों के बारे में भी लिखा है, शायरियों के बारे में भी लिखा है, परंतु अगली जो पंक्ति है इबारत से वह ये है कि मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती। अब फिल्म तो आप पहचान ही चुके हैं क्योंकि ये तो हम सबको याद है। इस पर हमारे श्रोताओं ने लिखा है, तन्हाई पर एक छोटी सी बात, तन्हाई में बिताए हुए कुछ पल कभी कभी पूरी महफिल से ज्यादा याद रह जाते हैं, क्योंकि वहां हम दुनिया से नहीं अपने दिल से बात कर रहे होते हैं। बहुत गंभीर बात लिखी है आपने। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, तन्हाई का अपना एक अलग संगीत होता है, जब आसपास कोई नहीं होता तब यादें धीरे से आकर दिल में बैठ जाती हैं, कुछ मुस्कुराती हैं, कुछ आंखें नम कर जाती हैं, कुछ हमें खुद से मिलवा जाती हैं। तो तन्हाई वो आईना है जिसमें हम दुनिया को नहीं खुद को देखते हैं, भीड़ में जो बातें सुनाई नहीं देती वे अक्सर तन्हाई की खामोशी में साफ सुनाई दी जाती है। तन्हाई बुरी नहीं होती, बस उससे यादों का साथ हो तो वह खामोशी भी बहुत प्यारी लगने लगती है। क्या उम्दा बात लिखते हैं, क्या बढ़िया बात आप लिखते हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है कि जाने किस लिए उम्मीदवार पर बैठा हूं, एक ऐसी राह पे जो तेरी रह गुजर भी नहीं। वाह, बढ़िया शेर आपने पेश किया है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि कुछ और शेर हैं जो अर्ज कर रहे हैं, उनमें से मैं एक दो शेर पढ़ देती हूँ। उन्होंने लिखा कि बेवक्त बेवजह बेसबब सी बेरुखी तेरी, फिर भी बेइंतहा तुझे चाहने की बेबसी मेरी। वाह बहुत बढ़िया। हमारे उन्हीं श्रोता ने एक और लिखा है कि कुछ एहसास मेरे हमारे जीवन में बारिश की तरह आता है, हथेलियां तो भीग जाती हैं मगर हाथ खाली रह जाते हैं। बढ़िया शेर लिख रहे हैं। हमारे एक और शेर, हमारे लिए एक बड़ा प्यारा सा शेर आया है कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते तमन्ना का खून हो गया आते आते। आपके शेरों के जवाब में एक और शेर उन्होंने हमें पहुंचाया है, और ऐसे ही कई सारे शेर हमारे बीच में आए हैं, तो ये जो बात है वो आप भेजते रहिए। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा है। थैंक यू। तेरे प्यार की तमन्ना गुमाए जिंदगी के सया अबदी, तेज आंधियां ये चिराग बुझ न जाए। आप जब रोमन में लिखते हैं तो पढ़ने में थोड़ी समस्या होती है, प्रयास करें कि देवनागरी में लिखें तो अच्छा होगा, परंतु फिर भी बढ़िया है आप जो लिख रहे हैं, आप जो हमसे जुड़ रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे उस प्यारे से गीत की तरफ जिसे हमने आपके लिए सजाया है इस फिल्म से। अच्छा, आप बस इतना बता दीजिएगा कि इस गीत के संगीतकार कौन है, और ये जो शेर है, ये जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों का क्या अर्थ आपको समझ आता है?

0: राम राम सा। जोधपुर आकाशवाणी रा गणगौर कार्यक्रम में आप सगला श्रोतावा रो कार्यक्रम सुनबा वाली सगली सखिया रो घणो ही घणो स्वागत।
1: और आज आपरी साथे है आपरी सखिया
0: कोमल राठौर
1: और पूनम देवड़ा।
0: बिल्कुल
1: हाजिरा आज रो गणगौर विशेष कार्यक्रम करुणा री पुकार
0: बेजुबान जीवारो संसार।
1: आज आप बात करला उन बे बोलारी जिकारी पीर सुनवा वालो कोई नहीं है, उन आवारा और बेसहारा पशु पक्षियारी जिको हर मिनक सु बस थोड़ी सी दया और हेत प्रेम री आस राख्या करे है।
0: बिल्कुल पूनम जी, आपानी धरा तो हमेशा सुई जीव दया और हिवड़े री उदारता सारू जानी जी जावे और आपनो थोड़ो सो भगत थोड़ो सो प्रेम उन जीवारी जो के जीवन है वो बचा सके। इन्ही आसू आज रो कार्यक्रम आप ले रहे हैं तो जीव जनता सु जुड़ी बहुत सी बातें और बहुत सी जानकारी सगला ने आप बतावा। पहली शुरुआत कराई कार्यक्रम री और सुनावा एक प्यारो सो गीत।

बिल्कुल अपना जीवन रामायण ने पूनम जी पशु पक्षियों रो भी जो को महत्व है वो खासो है, क्योंकि देखो परिस्थिति की संतुलन री बात करा तो बनाए रो राखे ही है, साथ ही साथ अपना जो को मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य है बिना भी बेहतर।

0: बनाए रखे। और आपने पता है कि पूनम जी जब आप तनाव में हुआ तो एक बार थोड़ो टाइम आप पशु पक्षियों ने देर देखो, कोई आवार पशु पक्षी की मदद कर देखो, अपनो जो को तनाव है बिना आप भूल जावा, अपनो जो को दिमाग है वो हल्को जी। और कोई भी अकेला पंशु भी परेशान है तो बस हमारी एक आदत बन जाए कि आप जावा अबंग साथ टाइम बितावा और कुछ यह लागसी की कुछ अपनापन है जो को अपन ने वारे साथ जुड़ेड़ो देखे।
1: बिल्कुल सही क्यों कोमल। और यू भी देखो अपनी भारतीय संस्कृति में आप देखा ही हाँ कि लोग जब भी सुबह उठे तो सुबह उठते ही सबू पहली गाय और कुत्ता ने रोटी लेन बारे घूमन वास्ते निकल जाया करे है। और कीड़िया रे जो कीड़ी नगरों सींचे है, सुबह सुबह पशु पक्षी रे जो दाना पाड़ी रा पात्र रखियो हुए घर रे बारे वे सब भरे है, तो जब पशु पक्षी आया करे है घर रे करने तो एकदम मैंने देखने जो चिड़िया री चहचहाट है जो कलरव है वो सुनने मन ने कितने सुकून और शांति मिलिया करे है।
0: बिल्कुल।
1: और यू भी आपने देखा तो पशु पक्षी ने बहुत ही ऊंचो दर्जो दिया गया है। मिनक और पशु रो जी को नातो है वो सदियों ही पुराना है। और कुदरत या सनक धरती जी की है वह मिनकारी जितनी है उतनी पशु पक्षियारी भी है।
0: बिल्कुल है। और आप प्रकृति की बात करी तो प्रकृति और पशु पक्षियों के बीच रहन सु अपने जीवन रो जो को सच्चो चक्र हुआ करे वो अपने समझ में आवे, क्योंकि जी सु अपने पर्यावरण के प्रति आप जिम्मेदार तो बना ही हाँ, साथ साथ जका जीव जंतु है वारा जितना भी प्राकृतिक आवास है बाने जद आप देखा तो इको टूरिज्म ने बढ़ाया करे, प्रकृति के करीब जावन रो जो को मौको है वो अपन ने मिले। और अपन ने पतो भी है कि ये जगत जता भी जीव जंतु है जितनी भी प्रकृति है ये अपनी अर्थव्यवस्था ने भी समर्थन देवे। और जी कि आप पालतू जानवर की बात करा गाय है भैंस है तो वे सब ग्रामीण अर्थव्यवस्था री जिकी रीढ़ है बा हुआ करे। और जी कि कुत्तो है बिना आप वफादारी रे वास्ते जाना, बिल्ली ने शांत आवाज और स्वभाव शांत स्वभाव रे वास्ते जाना, और बिल्ली तो देखो अनाज रा गोदाम ने गोदाम हुए तो बाने चूहा है सांप है बिच्छू है बाने वासु दूर रखे और किया करे कि बिल्ली है वह एंग्जाइटी है जिकी दूर करिया करे।
1: बिल्कुल सही क्यों कोमल। और छोटा जीव जिका हुए और जिका पंखी रो या करे वे नुकसानदायक जिका कीड़ा मकोड़ा आया करे वेने खैर फसल री रक्षा करिया करे।
0: बिल्कुल।
1: गाय भैंस ऊट भेड़ और बकरियां जिकी वे मिनक री जीविका रो बहुत ही मोटो आधार है। पशुओं मिलन वालों जिको दूध है घी है छाछ है वे अपने मानव शरीर वास्ते बहुत ही लाभदायक है। और गाय रो जिको गोबर और मूत्र है वो जमीन ने उपजाऊ तो बनावी है, साथ साथ औषधीय दवाई रे मायने भी गाय रो मूत्र है जिको काम में लिया जावे। और जिका फल फूल पशु पक्षी खाया करे है उनारा बीज विस्तार सागे दूजी जगह पहुंचे जिनसु नवा बूटा और जंगल है जिको उपजाया करे है। तो कुल मिला ने प्रकृति ने हरी भरी राखण रे मायने पशु पक्षी रो बहुत ही मोटो योगदान है।
0: बिल्कुल। वारो संरक्षण करनो और वारे प्रति संवेदनशीलता दिखानो अपनी ही जिम्मेदारी है।

0: तो आज अपने सागे फोन रे माध्यम से एडी शख्सियत जुड़िया है जो जोधपुर रे बासी इलाका में आपरे क्लिनिक और सेंटर रे माध्यम से लावारिस और घायल पशु पक्षी ने नयो जीवन दे रिया है। बात कर रहे हैं जाने माने पशु चिकित्सक डॉक्टर कालूराम चौधरी जिना रे केंद्र रे मायने लावारिस पशुआ रे रेस्क्यू सुलेर सर्जरी सामान्य चेकअप वैक्सीनेशन और डीवार्मिंग आधुनिक सुविधा उपलब्ध है। तो चलो सुनावा आपने कोमल राठौड़ री इना सु बातचीत।
1: साची मानवता बाई है जकी खाली मिनका सारू ही नहीं बल्कि बा बेजुबान पशु पक्षी सारू भी दया और हित रखे जका आपरी पीड़ा बोल नहीं बता सके। और मरु दरा ई तपता इलाका रे मायने या फिर कोई ज्यादा बारिश हो जावे या सर्दी गर्मी हुए जब कोई बेजुबान जीव जख्मी हो जावे तो उनरी सार संभाल लेवन वाला लोग भी है वे कम मिलिया करे पर जका हुए बेफरिश्ता सु कम कोनी हुए। तो आज अपने साथ एक एड़ा ही शख्सियत जुड़िया है जका लावारिस और जख्मी पशु पक्षियों ने नयो जीवन दे रहा है। तो डॉक्टर कालूराम जी आप रो जोधपुर आकाशवाणी राय गणगौर कार्यक्रम में घने घनो स्वागत घने घना राम राम।
2: बिल्कुल साहब आपको भी बहुत बहुत राम राम राम मेरे सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत राम राम।
1: तो डॉक्टर साहब सबसे पहले आपसे वही जाननी चाहवाला कि आप ए जका पशु पक्षी और जो को इलाज करो हो और खास तौर से जका लावारिस पशु पक्षी है वारी देखभाल और रेस्क्यू करण रो जो को विचार है वो कठा सु आयो मतलब इस सेवा रे मायने जो को सफर है इरी शुरुआत आप किस कर करी।
2: देखो बचपन से ही मुझे पशु पक्षियों के प्रति विशेष लगाव रहा। उनकी पीड़ा देखकर मन में उनकी मदद करने की भावना जागृत होती थी। पशु चिकित्सा की पढ़ाई के दौरान भी यह एहसास हुआ और गहरा होता गया कि बेजुबान जीव हमारी संवेदनशीलता और सेवा के सबसे बड़े हकदार हैं। इसी सोच ने मुझे इलाज के साथ साथ घायल और लावारिस पशुओं के रेस्क्यू के लिए समर्पित होकर काम करने की प्रेरणा दी।
1: बिल्कुल आप रो जो को बाशनी जोधपुर रे मायने आपको जो को क्लिनिक है आप रो जो को सेंटर है वो जीरो का ही उद्देश्य है और जो को क्लिनिक है वो वीरी शुरुआत आप किन सोच रहे साथे करी।
2: देखो क्लिनिक की शुरुआत यही करी थी जो लावारिस जानवर है उनका हम उपचार कर सकते हैं। लावारिस जानवर के साथ साथ पेट एनिमल्स भी है पेट ओनर्स के भी जो जानवर है उनको भी उचित और बेहतरीन इलाज मिल सके किसी इलाज के अभाव में किसी जानवर की डेथ नहीं हो इसी सोच के साथ मैंने इसको ओपन किया। हाई क्लास सुविधा के साथ में हम सब फैसिलिटी भी उपलब्ध करवाते हैं और लावारिस जानवरों के लिए हम क्लिनिक में भी सेवाएं देते हैं और बाहर रोड पर भी एक मिलता है तो वहाँ भी हम सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं।
1: बिल्कुल आप जी हैं कि अब फैसिलिटी की बात करी तो आपका क्लिनिक में मायने किन किन तरह की सुविधाएं हैं या फिर जब कोई गंभीर रूप से पशु पक्षी घायल हो जावे या कोई लीर आवे तो फिर ट्रीटमेंट की काई प्रक्रिया है कोई तरह की जो की आधुनिक सुविधाएं हैं वे आप रे क्लिनिक में मायने किन किन तरह की है।
2: जी बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा हमारे क्लिनिक में ब्लड टेस्ट की सुविधा है सब तरह के ब्लड टेस्ट होते हैं। एनिमल्स का जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वो ब्लड टेस्ट का है ताकि अंदर के ऑर्गन्स किस बीमारी और किस प्रकार की बीमारी है उसके बारे में अपन पता कर सकें। इसके अलावा हमारे पास एक्सरे मशीन है डिजिटल एक्सरे मशीन है जिससे हम डिजिटल बोन्स वगैरह की स्थिति पता कर सकते हैं। इसके अलावा ऑपरेशन थिएटर है जहाँ पर बेहतरीन सुविधा के साथ ऑपरेशन सर्जरियां करी जाती है और जानवर को जितनी ज्यादा हो सके सुविधा उपलब्ध करवाते हैं।
1: बिल्कुल और जी की कोई पालतू और लावारिस पशु हुए पशु पक्षी हुए वारे वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण और जो को कृमिनाशक दवा हुआ करे वह आरे वास्ते कितनी जरूरी हुए और आम जनता नहीं रे प्रति कितो जागरूक होनो चीज है।
2: देखो पशुपालक भाइयों ने बहुत बड़ी जानकारी देना चाहूँ कि कृमिनाशक और जो वैक्सीनेशन है ये लाइफ का बहुत बड़ा फेज है बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसका हर कुछ

0: बीमारियां ऐसी होती है जिनका इलाज नहीं है, पर उनका बचाव है। बचाव उनका सिर्फ वैक्सीनेशन ही है। वैक्सीन कराओगे तो ही वो बीमारी से आप अपने एनिमल्स को बचा सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए एंथ्रेक्स हो गई, एचएस हो गई, लंगड़ा बुखार हो गया, रेबीज हो गया, ये कुछ इम्पोर्टेंट बीमारियां हैं जिनका बचाव और मात्र सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन ही है। दूसरा, आपका जानवर स्वस्थ रहे, उसमें कोई किसी प्रकार की बीमारी नहीं हो, गाय भैंसों में दूध उत्पादन बराबर बना रहे, इसके लिए हमें इनके कृमिनाशक दवाइयां देना बहुत जरूरी होता है। और कृमिनाशक दवाइयां हर 6 महीने में देनी चाहिए। इससे जानवर बीमार कम पड़ते हैं, डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहता है और मिल्किंग वाले जो एनिमल्स है उनमें दूध बराबर बना रहता है।
1: बिल्कुल। और अब आपने जोधपुरी बात करा तो जिया की बार उनाड़ो है वो तेज पड़िया करे, तावड़ो घणो कड़को रेवे, तो तावड़ा रे मायने घायल जका पक्षी है वे सड़क माते फिरता लावर जिनावर है, बारे मायने सबसे ज्यादा कौन सी बीमारियां है या तकलीफ है जो को देखने मिले?
0: देखो, अभी गर्मी का सीजन है, गर्मी बहुत ज्यादा है, जोधपुर सन सिटी पैलेस है तो यहाँ पर लू लगने का जो चांसेस है एनिमल्स के अंदर वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। गर्मी से पशु को बचा कर रखो, दिन में 3-4 बार पानी पिलाओ, और जो लवारिस जानवर है उनके लिए भी अपने घर के बाहर पानी की थैली भर के रखो, पशु पक्षियों के लिए घर के ऊपर कटोरे के अंदर पानी भर के रखो ताकि वो गर्मी से बच सके।
1: बिल्कुल। और इन टाइम माते किन तरह की बीमारियां ज्यादा देखने मिलिया करे?
0: देखो, अभी मानसून आने वाला है, मानसून के अंदर मैगट फोन के ज्यादा केसेज हो जाते हैं, स्किन इन्फेक्शन के बहुत ज्यादा केसेज हो जाते हैं, और लार्ज एनिमल है उनके अंदर एफएमडी, एचएस, वीक्यू, ये सब बीमारियां अभी आने की वाली हैं। तो इनके बचाव के लिए पहले से वैक्सीनेशन चल रहा है, अभी सरकार की तरफ से भी चल रहा है और बाहर भी करवा सकते हैं आप। तो वैक्सीनेशन करवाओ, लिवर्मिंग की दवाइयां दो, बारिश के तुरंत बाद में लिवर टॉनिक जरूर पिलाओ अपने एनिमल्स को। ज्यादा गीले में नहीं रहे, कीड़े कीचड़ में नहीं खड़े रहे एनिमल्स, साफ सफाई जरूर मेंटेन करो ताकि मच्छर और मक्खी नहीं होगी तो बीमारी कम फैलेगी। जहाँ गंदगी रहेगी वहाँ मच्छर मक्खी होगी और वहाँ बीमारी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कुछ संक्रामक बीमारी होती है जो एक जानवर से दूसरे जानवर में मक्खी या मच्छर वेक्टर के रूप में काम करते हैं, पहुंचाते हैं उसे एक जानवर से दूसरे जानवर के अंदर। तो ऐसे में साफ सफाई रखो, ज्यादा गीला नहीं हो और एनिमल्स को सूखा रखो, बारिश में भीगने मत दो, सर्दी जुकाम बुखार वगैरह हो जाता है और स्किन इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है, खासकर विशेष डॉग्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट करो, उनको बारिश में भीगने से बचाओ।
1: बिल्कुल। और जिया की कोई सड़क माते कोई ने घायल पक्षी या पशु मिल जावे बीते, मतलब तुरंत काई कार्यवाही है जिकी करनी चाहिए और कौन सी गलतियां हैं जिकी नहीं करनी चाहिए?
0: देखो, सबसे पहले तो जब भी आपको कोई घायल पशु पक्षी दिखे तो अगर वो धूप में पड़ा है तो उसके लिए सबसे पहले छाया की व्यवस्था करो, फिर उसको पानी पिलाने की कोशिश करो, और साथ के साथ ही आपके नजदीकी कोई भी हॉस्पिटल हो चाहे वेटरनरी डॉक्टर हो उनसे संपर्क करो ताकि रेस्क्यू टीम आए और उसका इलाज करे और उसको टाइमली हॉस्पिटल पहुंचाकर उसकी लाइफ बचाई जा सके। नहीं करनी चाहिए उसके लिए यह कि अपनी मर्जी से किसी प्रकार की कोई केमिस्ट के बताई हुई दवाई नहीं देंगे, जब तक डॉक्टर की सलाह नहीं लेंगे किसी प्रकार का कोई इलाज अपनी तरफ से नहीं करेंगे। अपनी तरफ से हम सिर्फ उसको छाया में रख सकते हैं, उसको पानी पिला सकते हैं और उसको कोई दूसरे जानवर अटैक नहीं करे, इसलिए उसको एक जगह साइड में रखेंगे। पक्षी है तो उसको आप दूसरे जानवर से, बिल्ली और डॉग से बचाने के लिए कहीं सेफ जगह रख दो, छायादार जगह रख दो ताकि रेस्क्यू टीम आए तब तक वो सेफ रहे। इसके बाद में रेस्क्यू टीम हमारी जाती है, वो अपने आप उसकी केयर करती है, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता है। अगर वो वहीं ठीक होकर उड़ने की स्टेज में हो या चलने की स्टेज में हो कोई एनिमल्स तो वहीं इलाज हो जाता है, नहीं होता तो फिर हम अपने रेस्क्यू सेंटर में उसको ले आते हैं और यहाँ पर इलाज करते हैं, जब ठीक होता है तो वापस फिर छोड़ देते हैं।
1: बिल्कुल। आप इलाज करो और एक बेजुबान रो इलाज करना मिनखा रो इलाज सु घणो ही अलग और दोरो काम हुआ करे क्योंकि वे बोल नहीं सके, तो वे बोल नहीं सके डॉक्टर साहब इनके वास्ते आप वारो जो को दर्द है वारो बीमारी रो जो को सही सटीक अंदाजो है वो आप किया लगा सका।
0: देखो, पशु पक्षी भले जोनी अलग है पर आदमियों की तरह इनमें भी दर्द होता है, इनमें भी संवेदना है, इनमें भी भावनाएं हैं।
1: जी,
0: जब भी कोई जानवर बीमार होगा उसकी आंखों में से पानी आएगा, वो सुस्त हो जाएगा, खाना पीना छोड़ देगा, बार बार रंभाएगा, पेन शो करेगा, ये सिम्टम्स अपन देखते हैं, और उसकी नाक सूख जाती है, मजल सूखी हुई मिलेगी गाय भैंसों में, बड़े एनिमल्स में डॉग खाना पीना बंद कर देता है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, ये सब चीजें अपन सिम्टोमेटिक देख के और डॉक्टर।

0: से संपर्क करेंगे और उनका इलाज करवाएंगे और उनकी पीड़ा कम करने की कोशिश करेंगे।
1: बिल्कुल। और अगर जोधपुर रे मायने कोई भी आम नागरिक सड़क माते कोई घायल जानवर या पशु पक्षी देखे या फिर वाने मिले से आप रो जो को सेंटर है भी सुखिया संपर्क कर सके या फिर वाने रेस्क्यू करण सारू उन्होंने काई करनो चाहिए?
0: देखो कहीं भी आपको कोई भी अगर लवारिस जानवर मिलता है मेरे सेंटर के अलावा भी यहाँ पे 2-3 रेस्क्यू सेंटर और है, वहाँ आप संपर्क कर सकते हैं, वहाँ आप ले जाके छोड़ भी सकते हैं, मेरे यहाँ भी मेरे से संपर्क कर सकते हैं, कहीं भी सुविधा मिल जाएगी आपको। बस आपको उस जानवर को देखना है और उसकी मदद करनी है। टोल फ्री नंबर है 9696963 96। इस नंबर पे आप कॉल करिएगा, एम्बुलेंस आएगी और अपने आप उस एनिमल्स को लेके जाएगी या आप भी वहाँ डायरेक्ट जाके छोड़ सकते हैं। 9414364401 इसमें भी कॉल करेंगे तो आपके वहाँ पर रेस्क्यू की सुविधा मिल जाएगी।
1: तो डॉक्टर साहब आज आप सगला श्रोतावा ने पशु पक्षी देख रेख वास्ते और वारा अधिकार प्रति बहुत सी बहुमूल्य और संवेदनशील जानकारी दी हो, तो चालता चालता आप सगला श्रोतावा ने आप पशु पक्षी रोजमर्रा री सार संभाल सारू और उनारे साथे क्रूरता रोकन सारू कहीं सीख देनी चाहोला?
0: मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि पशु पक्षी और चाहे जानवर हो ये सब अपनी तरह है, इनमें भी जीने की इच्छा होती है, इनको जीने देना चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए। भगवान ने अपन को इंसान बनाया है, अपना ये फर्ज बनता है कि इन बेजवानों की जितनी हो सके अपन मदद करें, इनके खाने पीने की सुविधा करें, क्योंकि इनका देख रेख करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक इंसान है और इंसान इनके साथ जब क्रूरिटी पे उतर जाएगा तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे। इसलिए सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि जहाँ भी कोई भी लवारिस जानवर दिखे उसको खाना पानी की व्यवस्था करवाओ, कहीं भी पक्षी दिखे उनके लिए भी दाने पानी की व्यवस्था करो और उनके रहने करने की सब व्यवस्था देखो।
1: बिल्कुल डॉक्टर कालूराम जी, आपकी मेहनत और आप रो प्रयास बेजुबाना रे वास्ते वरदान सुखम नहीं है। तो आज आप जोधपुर आकाशवाणी में फोन रे माध्यम से जुड़ आप पशु पक्षी से जुड़ी अनमोल जानकारी सबने दीवी जकी कई जिनावरा रे वास्ते नयो जीवन दान बनेला। तो कालूराम जी आप रो कीमती भगत निकाल आकाशवाणी से जुड़िया इन रे वास्ते आप रो पूरा जोधपुर आकाशवाणी परिवार की तरफ से आप रो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बिल्कुल साहब, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे आकाशवाणी सदस्यों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते एक ही बात, लवारिस जानवर कहीं भी दिखे चाहे लवारिस हो चाहे पेट हो उनकी केयर करो, इनको भी जीने का अधिकार है और इन सबकी मदद करो, धन्यवाद।
2: तो सखिया अबार आपा सुन रहा है कोमल राठौर री फोन रे माध्यम से बातचीत पशु चिकित्सक डॉक्टर कालूराम चौधरी सु।

0: तो पूनम जी जी राजस्थान री वीर भूमि सिर्फ मिनखारा सूर्य वास्ते ही नहीं, साथ ही साथ जितना भी पशु पक्षी है और पर्यावरण रो जो को अटूट प्रेम है बीरे वास्ते भी जानी चे। और अपने अठे एड़ा भी मीनक हुआ है जका अपनी सुख सुविधाएं ने छोड़ बेजुबान जीनावरा री सेवा ने ही आप एक मकसद बना लियो और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर माते बात करा तो एक अलग मुकाम भी हासिल करे है, जिरी जानकारी भी आपस अगला श्रोतावा ने दे दा कि बहुत सा लोग है जका जीनावरा रे वास्ते आपरो नाम है जो को कमायो है। जिया की पीरा राम दायल की बात करा जका जालोर रहे बे घायल वन्य जीवारा मसीहा रे रूप में जाने जाया करे और जका पूर्व सीआरपीएफ जवान भी हा और बे एक सड़क दुर्घटना रे मायने घायल जीवा ने तड़प तो देकर आपरी नौकरी तक छोड़ दी और एक छोटो सो गैरेज मैकेनिक रे रूप में काम कर घायल जीनावरा रो इलाज शुरू करियो और बे अब तक लगभग 1180 सु ज्यादा वन्य जीवारी जान है जकी बे बचा चुकिया है और आरी जकी निस्वार्थ सेवा है भी ने देकर वही लागे कि मतलब बे आपरी सेवा जी जान सुधी है और इर वास्ते वाने अवार्ड भी मिलियो, अवार्ड सु सम्मानित भी करियो जिन्हें अर्थ हीरोज अवार्ड कियो जावे और आज बे सरकार सुधीड़ी जकी जमीन है वीरे माते ही आपरो ओ काम है जो को जारी राख रहे हैं।
1: बिल्कुल सही कोमल। अगली बात अपा करा अनिल विष्णु री जी का हनुमानगढ़ सु है और काले हिरणरा जी का रक्षक है माने जावे है और अनिल जी है जी का पिछले 3 दशक सु थार रेगिस्तान में काले हिरणा ने बचाने रहे जी को एक अकेले योद्धा रे रूप में माने लड़ाई लड़ रहा है। शिकारियों के खिलाफ मुहिम चलावता हुआ है 50 सु ज्यादा पंचायत में जागरूकता फैलाई और शिकारियों के खिलाफ 200 सु ज्यादा मामला दर्ज करवाया जिनमें कई ने तो सजा भी दिलवाई गई है और इनके अलावा वन्य जीव रे पानी पीने की व्यवस्था करने वास्ते वे 60 सु ज्यादा छोटा बड़ा तालाब है जी का बनवाया है।
0: बिल्कुल और यही काम कर रहा है 12 रा अनीता चौधरी जी जका फॉरेस्ट गार्ड है और अनीता चौधरी जका है पुरुष प्रधान मान्य जान वालों वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू रो क्षेत्र रे मायने एक साहसी मुकाम में हासिल करियो वे अपनी जान जोखिम में डालर इंसानी बस्तियां में घुसर जता भी खतरनाक जीव हुए मारो रेस्क्यू करण रो काम करियो है। वे आज तक 550 से ज्यादा रेस्क्यू कर चुके हैं और इनरे वास्ते वाने सम्मान भी मिलियो है।
1: और बात करा संजय सिंह जयपुर सु तो एनिमल वेलफेयर वे अंतर्राष्ट्रीय नायक है। जयपुर विख्यात संस्था डॉक्टर संजय सिंह ने जयपुर और आसपास के क्षेत्र में आवारा कुत्ता बीमार बिल्लियां और घायल ऊंटा रे इलाज रे वास्ते वे आपरो पूरो जीवन है जी को समर्पित कर दियो और आवारा पशु रे इलाज स्ट्रीट डॉग्स रे नसबंदी कार्यक्रम रेबीज उन्मल में उनारो अतुल्य योगदान है और रॉयल कॉलेज ऑफ वेटरनरी सर्जन्स इंटरनेशनल अवार्ड सु वेने सम्मानित करियो गयो है।
0: बिल्कुल और यही है आपने तृप्ति जैन सिरोइरा जकी आपरी अच्छी खासी नौकरी छोड़ पिछला साल सो घायल बीमार और बेसारा पशु वारी रेस्क्यू कर रहा है वारो इलाज रो काम कर रहा है। यही है सुलोचना जतिन सिंह जका झुंझुनूरा है बे पक्षी वारी जकी तारण हारे वे जाने जावे और झुंझुनूरा जका बुरासर गाँव है वटेरा वे

0: रानी माधुपुरा सूरजबाई मीना जका रणथंबोरा पहला महिला नेचुरलिस्ट गाइड बनिया जका जंगलारा पशु पक्षियों की आवाज पहचानन में और वारा पद चिन्ह ने ट्रेक करन रे मायने महारत हासिल करिया है और वे वन्य जीवारे प्रति जागरूकता फैलाने वास्ते आने बेस्ट लेडी गाइड जेड़ा पुरस्कार सु नवाजो भी गया है और आपरो जीवन समर्पित करियो विमला राजपुरोहित बीकानेर जका आपरे घर री छत में एक बर्ड केयर सेंटर में बदल दियो वे पतंगरी डोर सु जितना भी कटवेड़ा कबूतर चील या पक्षी हुआ करे मारो खुद इलाज करे और हर साल गर्मियों में सैकड़ों मिट्टी रा परिंदा बांटन रो काम करे।
1: जैसलमेरी सुखपाली पंवार गोडावंडी पहली महिला रक्षक के रूप में मानी जावे है। मरुस्थल अत्यंत दुर्लभ और विलुप्त प्राय पक्षी गोडावंड ने बचाने के लिए डेजर्ट नेशनल पार्क रे सुदासरी जड़ा बेहद कठिन और दुर्गम क्षेत्र रे मायने सुखपाली पहली महिला वन रक्षक के रूप में मायने तैनात हुई। जटे पानी और बुनियादी सुविधा की भारी कमी है वटे अकेले रहन सुखपाली गोडावंड अंडा और उन्होंने प्राकृतिक आवास ने शिकारी और जंगली जानवरों से बचायो और मरुस्थल रे वन्य जीव की सुरक्षा में मुस्तैद सु काम करने रे वास्ते वन्य जीव प्रेमियों के बीच उनारो एक अलग ही सम्मान है।
0: बिल्कुल पूनम जी और ये सब जता भी है वो साबित करियो है कि बेजुबान पशु पक्षियों के प्रति संवेदना और वाने बचावन रो जो को जज्बो है वो कोई भी सोच और परिस्थिति की सु बड़ो हुआ और पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखने वास्ते कोई बड़ो पद ही नहीं है बड़ो दिल है वो होना चाहिए।

0: तो पूनम जी आपा तो प्रयास करा ही, हाँ लोग भी प्रयास करे तो अपनी सरकार भी जकी है ब्यावारा पशु पक्षियों रे वास्ते आप प्रयास कर रही है, वारा संरक्षण रे वास्ते, इलाज और वारा कल्याण रे वास्ते कई योजनावां और कई नीतियां है जकी शुरू कर रखी है। तो वारी बात करा जी चिकित्सा और आपातकालीन रेस्क्यू योजना री बात करा, तो कोई भी चल पशु चिकित्सा इकाई जिया की आवारा जानवर है बिने दुर्घटना सु या फिर कोई गंभीर बीमारी सु बचावन रे वास्ते शुरू करेड़ी योजना है, जिमे टोल फ्री नंबर 1962 यानी 1962 पर आप कॉल करर सूचना दे सको, जिमे डॉक्टर री टीम रे साथ में एम्बुलेंस सीधी मौका माथे पहुंची और घायल पशुवारो मुफ्त में इलाज करियो जाए।
1: बिल्कुल कोमल, और गौशाला विकास एवं दैनिक सब्सिडी योजना है जिनमें ने शहरा और गांव रे भीतर आवारा गाय ने सुरक्षित राखण वास्ते पंजीकृत गौशाला माने सरकार द्वारा 50 रुपया प्रति बड़ा पशु और 25 रुपया प्रति छोटा पशु प्रतिदिन रे हिसाब से वित्तीय अनुदान दियो जावे है ताकि उनारे चारे पानी रो जिको संकट है वो दूर हो सके है।
0: बिल्कुल, और अगली योजना है नंदीशाला जन सहभागिता योजना, जिरे मायने सड़का पर लावारिस घूमन वाला जितना भी सांड है बैल है वाने आश्रय देवन रे वास्ते सरकार हर पंचायत स्तर माते बड़ी नंदी सायलर और निर्माण करवा रही है, जिरे मायने सरकार है बे 90% यानी 90% तक री वित्तीय सहायता दे।
1: और पशु चिकित्सा देखभाल और बचाया गया जानवर के लिए वित्तीय सहायता योजना भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित इन राष्ट्रीय योजना के तहत देश भर में मायने पशु आश्रय और अस्पताल में घायल या बचाए गए आवास जानवर ने ऑपरेशन दवाइयां और भोजन के वास्ते वित्तीय मदद दी जावे।
0: बिल्कुल, और पशु जन्म नियंत्रण और टीकाकरण योजना रे मायने जितना भी आवार पशु है वारी आबादी मानवीय तरीका से नियंत्रित करण रे वास्ते निःशुल्क नसबंदी करी जावे, एंटी रेबीज टीका भी जितना भी कुत्ता हुआ करे वाने लगाया जावे, और विशेष आवारा डॉग फीडिंग साइट भी नीति भी एक शुरू करी है जिरे मायने सेरारा हर वार्ड रे मायने कुत्ता रे वास्ते या कोई भी दाना पानी की जकी भी जगह है बा बनाई जाए ताकि वाने नियमित भोजन है जको मिल सके।
1: बिल्कुल, मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना, इन योजना रे तहत राज्य रे सगला सरकारी वेटरनरी अस्पताल में आवारा और पालतू जानवर रे वास्ते लगभग 200 से ज्यादा तरह री जरूरी दवाइयां, ऑपरेशन रो सामान और जीवन रक्षक टीका री पूरी तरह से मुफ्त सेवा उपलब्ध कराई जावेला।
0: बिल्कुल, और राजस्थान रा 12 जिला रे मायने पूनम जी देश रो पहलो हाईटेक सरकारी सहायता प्राप्त पशु पक्षी अस्पताल और ट्रामा सेंटर भी बनायो गयो है, जठे देश भर री आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं और बड़ो ऑपरेशन थिएटर और दुर्घटनाग्रस्त पशु पक्षियों के वास्ते विशेष आईसीयू और वेंटिलेटर भी उपलब्ध है जो कराया गया है।
1: मल्टी स्पेशलिटी वेटरनरी क्लिनिकल सेंटर राज्य सरकार द्वारा अलवर, उदयपुर, बांसवाड़ा, भरतपुर और सवाई माधोपुर जिला रे मायने नया मल्टी स्पेशलिटी पशु चिकित्सा केंद्र स्थापित किया जा रहा है, अटे पशुवारा जटिल रोगा रे निदान रे वास्ते आधुनिक लैब भी बनाई जा रही है,
0: और साथ ही साथ है पतंगबाजी रे दौरान मांझा सु कटेड़ा जितना भी पक्षी है और बीमारी सु जूझ रही है जितना भी परिंदा है वारो इलाज रे वास्ते अठे पक्षी रोग विशेषज्ञ जमाई बर्ड रेस्क्यू सेंटर और बर्ड पार्क में मिल जावे और जठे आरो इलाज भी करायो जावे।
1: और राज्य पशु चिकित्सा पॉली क्लिनिक ए जिला स्तर पर स्थापित बड़ा सरकारी अस्पताल होवे है, अठे गंभीर रूप से घायल आवारा पशुआ रे वास्ते 24 घंटा आपातकालीन सेवा, बड़ा ऑपरेशन, एक्सरे, सोनोग्राफी और इंडोर वार्ड री सुविधा होया करे।
0: बिल्कुल, और राज्य की बात करना तो राज्य रे मायने जयपुर नाहरगढ़ है, जोधपुर माचिया है, कोटा है, बीकानेर और उदयपुर में भी विशेष रेस्क्यू सेंटर राजस्थान सरकार शुरू कर में लिया और अठे इलाज रे वास्ते विशेष रेस्क्यू वार्ड री सुविधाएं है जीरो लाभ भी है जीव जंतुआ रे वास्ते आपा उठा सका।

0: नहीं सुबह काम माते निकलती थे मगर कीड़िया रो झुंडा अपना मुंह में अंडा लेर दबाया आवे या फिर अपने जाती दिखे तो काम पूरा होन रो जो को सगुन है वो उत्तम मानी जाए।
1: बिल्कुल, और नेवड़ो अगर सफर में जाता वक्त बाई सुदाई का नहीं निकल जावे तो अपार धन और शुभ वेला रहे जी को सूचक होया करे है। और रस्ते में मेंढक रो कोदनो या कछुए रो दिखनो रास्ता रा संकट टलने रो संकेत मानियो जाया करे है।
0: और रात कुके कागलो दिन में कुके सियाल के बरसेला मेव लोग के टूटेला काल, यानी अगर कागलो रात ने बोली और गीदड़ जो को है वो दिन में रोवे तो प्रकृति ने भारी फेर बदल मान्यो जावे क्योंकि या तो अकाल पड़सी या फिर भारी बारिश वैसी। बिल्कुल, तो एडी जत्ती भी कहावत है के बताए वे भी बहुत सी पशु पक्षियों से जुड़ी है, बहुत सा सगुन है जका पशु पक्षियों से जुड़ी है, एडी बहुत सी बात और भी है जकी आप सु करा ला सुना आपने एक प्यारा संगीत।

0: तो कोमल, पशु पक्षी राज्य का मेला है, बेबी बहुत ही जगचावा है अपन आटे, और वन श्रृंगार है, विन माते तो बहुत सा गीत भी बने उड़ा है अपन आटे, और लोक जीवन में पशुआ ने सिर्फ धन को नहीं बल्कि परिवार और सदस्य माने जाएगा, और अठारह लोग आपरे ऊंट घोड़ा बछड़ा और बलदा ने घने लाड कोट से सजावा और मेला रमाइने लेट जाया करे, इना श्रृंगार है जिको वो देखने लायक हो करे, और कई तरह का गहना वे बनावे इनारे वास्ते जान गोर बंद हो गयो, तो ऊंट रो सबसे मुख्य गहनो जो कांच मणिया और कोडिया सु है जिको बढ़िया करे है,
1: बिल्कुल
0: मोरा और मोरखा है जिको ऊंट और घोड़ा रे मुखरे माते बांधी जन वाली सुंदर रस्सी और कलाकृति होया करे है,
1: बिल्कुल, और पिलाण है जिको ऊंट री पीठ माते बांधर रखने वाली एक नकशदार काठी होया करे, और घूघरा और नेवरी हुए जिको पशुआ रे पगा रे मायने बांधी जन जावण वालो एक घुंगरू होया करे जिका सु चालती बखत सुंदर आवाज आवे,
0: और कतरिया होया करे ऊंट री चमड़ी माते कैची सु सुंदर डिजाइन बनावण वाली चीज जिन्हें जट कतराई भी कहया करे है,
1: बिल्कुल, और कई मेला भी अपने आटे पशु वाला भरीजे,
0: तो पुष्कर मेलो अजमेर रमाइने, ई मेला रमाइने ऊंटारो सबसे मोटो ले बेच होया करे, विदेशी सैलानी अटे ऊंटारो श्रृंगार प्रतियोगिता देखण वास्ते बहुत ही भारी संख्या रमाइने आया करे है, और बात करे तेजाजी पशु मेला परवसर नागौरी, तो नागौरी बलद री बिक्री सारू और जग में घणो चावो है,
1: बिल्कुल, और मल्लीनाथ पशु मेलो है जो तिलवाड़ा बाड़मेर में भरीजे जेकी थार पार कर गाय और मालानी जेकी नस्ल हुए घोड़ारी वीर सारू वो मोटो ऐतिहासिक मेलो है, और भी यही है चंद्रभागा पशु मेलो झालावाड़ रो जो को हाड़ोती क्षेत्र रो मेलो जो को है वो मालवी नस्ल रा जका पशु है वीणा सारू जानी जे जा।

0: तो पूनम जी सगला ने ओई कहणो है कि सांचो मीनक बोई है जो को बेसारा जी नावरा रो दर्द आपरा हिबड़ा में महसूस करे।
1: जी करो कोई कोनी उनारो आश्रो बनो बेसारा पशुआ पे दया राखनी ही ईश्वरी साची भक्ति है।
0: बिल्कुल।
1: तो अब घड़ी री सुइया इशारो कर रही है कि अब मैं आज रही सफर ने अटे विराम देवा, पर चालता चालता मैं ओई कहनी चाहवा कि आज रो विशेष कार्यक्रम करुणा री पुकार बेजुवान जीवा रो संसार
0: इंद्र वास्ते ही ले रहे हैं क्योंकि
1: सृष्टि पर जितो हक आपनो है बितो ही आ बेजुवान पशु पक्षी रो भी है। आरी तकलीफ समझर अपा आजीवा ने नयो जीवन दान दे सका हाँ। ये अनमोल सीख और जीव दया ने आपरे दिला में संजोता हुआ आज ये कार्यक्रम में ही आपी दो सखिया
0: कोमल राठौर
1: और पूनम देवड़ा।
0: आज रा कार्यक्रम री प्रस्तुति और संयोजन हो
1: राम निवास चोयल।
0: अब इंद्र साथ ही आपरी दोनों सखिया ने दिलाओ सीख चाला
1: राम राम, राम।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम गणगौर। ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। दिन के 2:15 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता।

0: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे। आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने पर अपने समकक्ष से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जनकल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इनमें शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए 50,000 पद और पुलिस विभाग में 20,000 नियुक्तियां शामिल हैं। अग्निवीरों के लिए आवश्यकता अनुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। सिविक वॉलंटियर्स, होमगार्ड, ग्रीन पुलिस कर्मियों और एनवीएम कर्मचारियों का मासिक मानदेय ₹2,000 बढ़ाया गया है। कोलकाता क्षेत्र के लिए कल्याणी के पास एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का प्रस्ताव है। बजट में 2 प्रमुख रक्षा केंद्रों के विस्तार और विकास में मदद के लिए हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन को 25 एकड़ और कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन को 37 एकड़ जमीन सौंपने का प्रस्ताव भी है। एक रिपोर्ट।
1: राज्य सरकार ने सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और शिक्षा कर्मियों के लिए 20% महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है। महंगाई भत्ता बढ़ के 38% हो जाएगा। यही सुविधा पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि ये दर 1 अक्टूबर से लागू होगी। वित्त मंत्री ने बताया कि वर्तमान में राज्य पर कुल ऋण 8,15,891 करोड़ रुपए की है। इस कारण सामाजिक परियोजनाओं और वित्तीय शासन की बीच संतुलन बनाए रखना सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा है। बजट में अन्नपूर्णा योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए की प्रावधान किया गया है। पार्श्व शिक्षक का वेतन 5,000 रुपए बढ़ाया गया है। आंगनवाड़ी कर्मी और आशा कर्मियों के लिए मासिक मानदेय में 5,000 रुपए की वृद्धि की गई है। चंदीपन दासगुप्ता के साथ काश्मीर नाहर, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
0: तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। AIADMK, PMK और CPM सहित विपक्षी दलों ने आशंका जताई कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने परियोजना के विरोध में अपना रुख दोहराते हुए कहा कि वो तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने मेकेदातु जल न्यायाधिकरण के गठन की मांग से जुड़े विधानसभा के सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव का भी उल्लेख किया। ओडिशा में विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने मार्च में राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजू जनता दल, बीजेडी और कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग के आरोपी विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अध्यक्ष ने कहा कि दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत याचिकाओं में गंभीर प्रक्रियात्मक कमियां और सबूतों का मानक अभाव था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कुनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति ने कूनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने राष्ट्रपति को बताया कि भारत में अभी 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो नेशनल पार्क में हैं, जबकि 3 को गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की थी। उन्होंने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से और चीते लाए गए। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: नई दिल्ली में ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की बैठक चल रही है। दो दिन के इस बैठक

0: की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल कर रहे हैं। बैठक में समूह के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भागीदारी कर रहे हैं। इन देशों में भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। बैठक का मुख्य विषय वर्तमान समय में गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां हैं। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के तेजी से बदलते स्वरूप और उभरते सुरक्षा जोखिमों में नई तकनीकों की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने देश के विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की अहम भूमिका पर जोर दिया है। नई दिल्ली में आज सीआईएसएफ के मुख्यालय के इमारत के भूमि पूजन और ई उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि सीआईएसएफ के जवान देश की तरक्की को सुरक्षित रखने वाले आर्थिक सैनिक के तौर पर काम करते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के विदेश मंत्री बी बत्सिसक के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर वहां के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। वे बृहस्पतिवार को जेजू में शांति और समृद्धि के लिए जेजू फोरम पर मुख्य भाषण भी देंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की चार दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जलदाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में दो और घायलों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में दो महिला और एक बच्चा भी शामिल है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और दो मंत्रियों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रुपए का इनाम था। झारखंड में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह, खूंटी, देवघर, धनबाद और साहिबगंज जिलों में हुई हैं। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्म भूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत के दौरान कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
1: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
0: केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन आज शाम दो दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर भोपाल पहुंच रहे हैं। डॉ मुरुगन कल देवास जिले की कन्नौज तहसील के डोकाकोई जाएंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर एक बयान में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि पद पर रहते हुए उन्होंने जो भी फैसले किए उनमें देश को सबसे पहले रखने की बात ही मुख्य रही है।

0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर में आधा प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 375 अंक बढ़कर 77,178 पर जबकि निफ्टी 108 अंक बढ़कर 24,121 पर कारोबार कर रहा था। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता समाप्त होने के बाद आज कच्चे तेल की वैश्विक कीमत में 3% तक की गिरावट दर्ज की गई। इससे आपूर्ति बाधा को लेकर चिंताएं समाप्त होने और ईरान के तेल निर्यातों में वृद्धि की आशा बढ़ गई है। पश्चिम एशिया में नाजुक संघर्ष विराम को बढ़ाने तथा तनाव को कम करने पर केंद्रित पहले दौर की वार्ता के समापन की खबर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए जाने के बाद ये गिरावट आई है। ताइवान की सेना ने 5 दिवसीय तत्काल युद्ध तत्परता अभ्यास शुरू किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी आपात स्थिति में सैन्य बल तुरंत और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सके। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस अभ्यास के जरिए सैन्य इकाइयों की शांतिकाल से युद्धकालीन संचालन में तेजी से बदलाव करने की क्षमता को मजबूत किया जाएगा। ये अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब हाल के वर्षों में चीन ने ताइवान के आसपास अपना सैन्य अभ्यास और गतिविधियां बढ़ा दी हैं। फीफा विश्व कप 2026 में मिस्र ने आज सुबह वैंकूवर में न्यूजीलैंड पर इस विश्व कप में 3-1 से अपनी पहली जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और कार्यकाल में भी दिन के दौरान ऐसी स्थिति रहेगी। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा तथा बादल गरजने के साथ वर्षा का भी अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना में कल तक लू चलने की संभावना है। हरियाणा के राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल से खुदाई में मिले मानव कंकाल अवशेषों को उन्नत वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को सौंप दिया गया है। ये प्रक्रिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के बीच हाल ही में हुए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत की गई है। करीब 550 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला राखीगढ़ी सिंधु सरस्वती सभ्यता की सबसे बड़ी ज्ञात बस्ती माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन कंकालों के अध्ययन से सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और सामाजिक संरचना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का एक लेख साझा किया। इस लेख में कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने, न्याय की प्रक्रिया को आसान बनाने और नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने की सरकार की कोशिशों का उल्लेख किया गया है। अपने लेख में श्री मेघवाल ने कहा कि न्यायिक संस्थान एक पुल की तरह काम करते हैं जो हर हितधारक को न्याय की व्यापक खोज और सामूहिक भलाई के साथ विश्वास, अपनापन और जुड़ाव की भावना विकसित करने में मदद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्वभर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है बल्कि उन्हें सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

0: अपने खेत बगीचे घर टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
1: आज ही पधारें लालजी नर्सरी, रानोजी का बाग, खोखरिया बिरामंडो।
0: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
2: लालजी नर्सरिया, कुछ समय हरियाली में बिताओ।
3: ये देख कैसे।
4: हैप्पी बर्थडे भाई।
3: हाँ, मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग।
5: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
6: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
7: आई नो बा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
5: आई नो ना।
7: आरबीआई कहता है,
8: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
9: शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी, ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
8: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
10: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
11: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
10: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।

0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सदाबहार नगमे कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे कार्यक्रम में ये सुंदर सा गीत जिसे हमने चुना है ससुराल फिल्म से। मोहम्मद रफी की आवाज है, हसरत जयपुरी के हैं बोल और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: हम सुन रहे थे स्त्री फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में भरत व्यास की बोल और सी रामचंद्र के संगीत के साथ में। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: एक बेटी की यादों में उसके पिता
4: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
3: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
4: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
3: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
4: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
3: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में ससुराल फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे इस कार्यक्रम में, जब प्यार किसी से होता है फिल्म से, यह गीत जो गाया है लता मंगेशकर ने और मोहम्मद रफी ने। हसरत जयपुरी के बोल हैं और संगीतकार शंकर जयकिशन।

हम सुन रहे थे गीत जब प्यार किसी से होता है फिल्म से, लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में, हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए चलिए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अगला नगमा। संजोग फिल्म से लता मंगेशकर मुकेश की आवाजें हैं, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, मदन मोहन का संगीत।

कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अंतिम गीत आइए सुनते हैं, जंगली फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। और आज्ञा दीजिए मुझे यानी विधि जैन को आज के इस कार्यक्रम से। नमस्कार, आप सबका मंगल हो।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली सुनने वाले सभी सखियों को और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ है दीपा महेश्वरी। तो दीपा, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे
2: मंजरी? बिल्कुल अच्छे हैं। और तुम्हारे साथ हमारे सभी सखियों को, श्रोता भाइयों को मेरा दीपा महेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
1: क्या बात है।
2: हेल्दी इसलिए हमेशा ये बताते हैं कि कोई एक दिन, जैसे कि कल गया हमारा इंटरनेशनल योगा डे, एक दिन स्वास्थ्य को ध्यान रखने के लिए नहीं है, वो इसलिए है ताकि हम साल भर हर दिन अपना ध्यान खूब अच्छे से रख सकें और अपने परिवार को भी उसी वजह से खुशहाल भी रख सकें।
1: बिल्कुल दीपा, और ये बहुत अच्छी चीज है कि हमारे पास देखो मोबाइल की सुविधा भी उपलब्ध है, तो हम हर दिन अपने दोस्तों को ग्रुप में डाल सकते हैं कि आज योग किया कि नहीं किया, तो इस तरह की हम उन्हें याद भी दिला सकते हैं। तो एक दूसरे को जब हम प्रेरणा देंगे ना रोज रोज, गुड मॉर्निंग की जगह साथ में ये भी उसमें लगा दें कि आज योगा किया कि नहीं किया।
2: सही बात,
1: तो सबकी सेहत अच्छी रहेगी।
2: भले ही 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए, जितना भी आपके पास वक्त है और जो भी अच्छा लगता है, जो तरीका आपको अच्छा लगता है, जिस तरीके से आप एक कुछ वक्त अपने दिन का अपने स्वास्थ्य पर जरूर समर्पित कीजिए।
1: बिल्कुल। और दीपा, आज हमारी जो सखी सहेली के विषय हैं, तो वो हम बता देते हैं कि आज प्रादेशिक व्यंजन में हम कानपुर उत्तर प्रदेश की रंग बिरंगी चाट और हरी धनिया के आलू की तो बात करेंगे और हमारे साथी जो कुछ लेकर भेजेंगे तो उनको भी इसमें शामिल करेंगे।
2: बिल्कुल। और देखो, वर्षा ऋतु आने को है, इंतजार तो हो ही रहा है, सब लोग चाह रहे हैं कि अब जल्द से जल्द बारिश शुरू हो। तो उसके साथ साथ बहुत सारी सावधानियां शुरू हो जाती हैं, जैसे कि मच्छरों से बचाव, तो इस पे भी हम बात करेंगे। और संदेश आए हैं, हम चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा संदेश हमारे सभी श्रोता लिखकर भेजें।
1: बिल्कुल। और कथा सुधा में आज हम सुनवाने वाले हैं आभूषण कहानी का भाग 4। तो अभी तक लगातार सबने सुनी है आभूषण कहानी, तो आज उसका चौथा भाग, अंतिम भाग सुना जाएगा। और नवीन शिक्षा सत्र की शुरुआत जैसे कि हो गई है और हम देखते हैं दीपा की आज बच्चे जो है, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे सब तैयार होकर स्कूल जा रहे हैं, तो उनका कैसा अनुभव होता है, या आपने बच्चों को स्कूल भेजने के पहले क्या क्या तैयारी करी, वो सब भी हमें छोटी छोटी बातें छोटे छोटे संदेशों में लिख सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा।
2: बिल्कुल। और एक ये गुंछा बना लिया है हमने कार्यक्रम का, तो ये सब तो हम कर ही रहे हैं बातें और आप सारे संदेश तो आएंगे, तब तक सुनते हैं ये सुंदर सा गीत।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

0: मंजरी, अब तो बिना कुछ कहे हम चलेंगे सीधे कदासुदा की तरफ,
1: बिल्कुल,
0: जहां पे हम सुनने वाले हैं आभूषण का भाग 4।
1: जी।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। कथा सुधा में सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण।
3: पिछले भाग में आपने सुना विमल सिंह को घर छोड़े 2 साल हो गए थे। शीतला को अब उनके बारे में भांति भांति की शंकाएं होने लगी थीं। आठों पहर उसके चित्त में ग्लानि और क्षोभ की आग सुलगा करती थी। विमल की खेती बेगार में होती थी। उसके जाने के बाद सारे खेत परती रह गए। कोई जोतने वाला न मिला, असामियों ने लगान न दिया। शीतला ने महाजन से रुपए उधार लेकर काम चलाया। दूसरे वर्ष भी यही कैफियत रही। अब की महाजन ने रुपए नहीं दिए। शीतला के गहनों के सिर गई। दूसरा साल समाप्त होते होते घर की सब लेई पूंजी निकल गई, फाके होने लगे। 4 प्राणियों का खर्च था। उस पर ये और मुसीबत हुई, मायके में एक फौजदारी हो गई। 2 छोटे भाई, 1 बहन और माता, 4 प्राणी और सर पर आ डटे। गाड़ी पहले ही मुश्किल से चलती थी, अब जमीन में धस गई। सारी अमंगल

0: शंकाएं इस विरोधाग्नि में शांत हो गईं। बस अब यही चिंता थी कि इस दशा से छुटकारा कैसे हो। उसकी सोचने की शक्ति निश्चल हो गई थी। चारों तरफ निगाहें दौड़ाती कि कहीं कोई शरण का स्थान है, पर कहीं निगाह न जमती। कुंवर साहब को गांव वालों से विमल सिंह के परिवारों के कष्ट की खबर मिली थी। वो गुप्त रूप से उनकी कुछ सहायता करना चाहते थे। मंगला के गृह त्याग के 3 महीने पीछे आज वो पहली बार घर से निकले थे। इसमें संदेह नहीं कि कुंवर साहब मन में शीतला के रूप रस का आस्वादन करते थे। मंगला के जाने के बाद उनके हृदय में एक विचित्र दुष्कामना जाग उठी। मनुष्य में बुद्धि के अंतर्गत एक अज्ञात बुद्धि होती है, जैसे रणक्षेत्र में हिम्मत हारकर भागने वाले सैनिकों को किसी गुप्त स्थान से आने वाली कुमक संभाल लेती है, वैसे ही इस अज्ञात बुद्धि ने सुरेश को सचेत कर दिया। वो संभल गए, ग्लानी से उनकी आंखें भर आईं। उसी क्षण उन्होंने शीतला को पत्र लिखा।
1: बहन, तुमने इतने कष्ट झेले पर मुझे खबर तक न दी। मैं कोई गैर न था, मुझे इसका दुख है। खैर, अब ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें कष्ट न होगा। इस पत्र के साथ अनाज और रुपये भेज रहा हूँ।
2: भैया क्षमा करो, जब तक जीऊंगी तुम्हारा यश गाऊंगी। तुमने मेरी डूबती नाव पार लगा दी है।
3: कहानी आगे क्या मोड़ लेती है, इसके लिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का चौथा और अंतिम भाग।
0: कोयल आम की डालियों पर बैठकर मछली शीतल निर्मल जल में क्रीड़ा करके और मृग शावक विस्तृत हरियालियों में छलांगे भरकर भी इतने प्रसन्न नहीं होते जितना मंगला के आभूषणों को पहनकर शीतला प्रसन्न हो रही है। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते। वो दिन भर आईने के सामने खड़ी रहती है, कभी केशों को संवारती है, कभी सुरमा लगाती है। कोहरा फट गया है और निर्मल स्वच्छ चांदनी निकल आई है। वो घर का एक तिनका भी नहीं उठाती। उसके स्वभाव में एक विचित्र गर्व का संचार हो गया है। लेकिन श्रृंगार क्या है? सोई हुई काम वासना को जगाने का घोर नाद उद्दीपन का मंत्र। शीतला जब नखशिख से सज कर बैठती है तो उसे प्रबल इच्छा होती है कि मुझे कोई देखे। वो द्वार पर आकर खड़ी हो जाती है। गांव की स्त्रियों की प्रशंसा से उसे संतोष नहीं होता। गांव के पुरुषों को वो श्रृंगार रस विहीन समझती है, इसलिए सुरेश सिंह को बुलाती है। पहले वो दिन में एक बार आते थे, अब शीतला के बहुत अनुनय विनय करने पर भी नहीं आते। पहर रात गई थी, घरों के दीपक बुझ चुके थे। शीतला के घर में दीपक जल रहा था। उसने कुंवर साहब के बगीचे से बेले के फूल मंगवाए थे और बैठी हार गूंथ रही थी, अपने लिए नहीं, सुरेश के लिए। प्रेम के सिवा एहसान का बदला देने के लिए उसके पास और था ही क्या। एकाएक कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी और दम भर में विमल सिंह ने मकान के अंदर कदम रखा। उनके एक हाथ में संदूक था, दूसरे हाथ में एक गठरी थी। शरीर दुर्बल, कपड़े मैले, दाढ़ी के बाल बढ़े हुए, मुख पीला, जैसे कोई कैदी जेल से निकल कर आया हो। दीपक का प्रकाश देखकर वो शीतला के कमरे की तरफ चले। मैना पिंजरे में तड़फड़ाने लगी। शीतला ने चौंक कर सिर उठाया, घबरा कर बोली, कौन? फिर पहचान गई। तुरंत फूलों को एक कपड़े में छिपा दिया। उठ खड़ी हुई और सिर झुकाकर पूछा,
2: इतनी जल्दी सुध ली?
0: विमल ने कुछ जवाब न दिया। विस्मित हो कर कभी शीतला को देखता, कभी घर को, मानो किसी नए संसार में पहुंच गया है। ये वो अधखिला फूल न था जिसकी पंखुड़ियां अनुकूल जलवायु न पाकर सिमट गई थीं। ये पूर्ण विकसित कुसुम था, ओस के जल कणों से जगमगाता और वायु के झोंकों से लहराता हुआ। विमल उसकी सुंदरता पर पहले भी मुग्ध था, पर यह ज्योति वो अग्निज्वाला थी जिससे हृदय में ताप और आंखों में जलन होती थी। ये आभूषण, ये वस्त्र, ये सजावट। उसके सिर में एक चक्कर सा आ गया, जमीन पर बैठ गया। इस सूर्यमुखी के साथ

0: हमने बैठते हुए उसे लज्जा आती थी। शीतला अभी तक स्तंभित खड़ी थी। वो पानी लाने नहीं दौड़ी, उसने पति के चरण नहीं धोए, उसको पंखा तक नहीं झला। हत बुद्धि सी हो गई थी। उसने कल्पनाओं की कैसी सुरम्य वाटिका लगाई थी, उस पर तुषार पड़ गया। वास्तव में इस मलिन वदन अर्धनग्न पुरुष से उसे घृणा हो रही थी। ये घर का जमींदार विमल न था, वो मजदूर हो गया था। मोटा काम मुखाग्नि पर असर डाले बिना नहीं रहता। मजदूर सुंदर वस्त्रों में भी मजदूर ही रहता है। सहसा विमल की मां चौंकी, शीतला के कमरे में आई तो विमल को देखते ही मातृ स्नेह से विह्वल होकर उसे छाती से लगा लिया। विमल ने उसके चरणों पर सिर रखा। उसकी आंखों से आंसुओं की गरम गरम बूंदें निकल रही थीं। मां पुलकित हो रही थी, मुख से बात न निकलती थी। एक क्षण में विमल ने कहा,
1: अम्मा ये देखता क्या हूं?
2: अरे तुम तो जानते ही हो, स्वभाव ही ऐसा है तो कोई क्या करे।
1: सुरेश ने मेरा हुलिया क्यों लिखाया था?
2: वो तो तुम्हारी खोज लेने के लिए। अरे उन्होंने दया ना की होती ना तो आज घर में किसी को जीता ना पाते तुम।
1: बहुत अच्छा होता।
3: अपनी ओर से तो तुमने सबको मार ही डाला था। फूलों की सेज नहीं बिछा गए थे?
1: अब तो फूलों की सेज ही बिछी देखता हूँ।
3: तुम किसी के भाग्य के विधाता हो?
0: विमल सिंह उठकर क्रोध से कांपता हुआ बोला,
1: अम्मा अम्मा मुझे यहाँ से ले चलो, मैं इस पिशाचिनी का मुंह तक नहीं देखना चाहता। मेरी आंखों में खून उतरता चला आता है। मैंने इस कुल कलंकनी के लिए 3 साल तक जो कठिन तपस्या की है उससे तो ईश्वर मिल जाता, पर इसे ना पा सका।
0: ये कहकर वो कमरे से निकल आया और मां के कमरे में लेट रहा। मां ने तुरंत उसका मुंह और हाथ पैर धुलाए। वो चूल्हा जलाकर पूरियां पकाने लगी, साथ साथ घर की विपत्ति कथा भी कहती जाती थी। विमल के हृदय में सुरेश के प्रति जो विरोधाग्नि प्रज्वलित हो रही थी वो शांत हो गई, लेकिन हृदय दाह ने रक्त दाह का रूप धारण कर लिया। जोर का बुखार चढ़ाया, लंबी यात्रा की थकान और कष्ट तो था ही, बरसों के कठिन श्रम और तप के बाद ये मानसिक संताप और भी दुसह हो गया। सारी रात वो अचेत पड़ा रहा। मां बैठी पंखा झलती और रोती रही। दूसरे दिन भी वो बेहोश पड़ा रहा। शीतला उसके पास एक क्षण के लिए भी ना आई।
3: इन्होंने मुझे कौन से सोने के कौर खिला दिए हैं जो इनकी धौंस सहूं? यहां तो जैसे कंता घर रहे वैसे रहे विदेश, किसी की फूटी कौड़ी नहीं जानती। बहुत ताव दिखाकर तो गए थे, क्या लाद लाए।

0: संध्या का समय था, सुरेश को खबर मिली, तुरंत दौड़ते हुए आए। आज 2 महीने के बाद उन्होंने उस घर में कदम रखा। विमल ने आंखें खोली, पहचान लिया, आंखों से आंसू बहने लगे। सुरेश के मुखारविंद पर दया की ज्योति झलक रही थी। विमल ने उसके बारे में जो अनुचित संदेह किया था उसके लिए वो अपने को धिक्कार रहा था। शीतला ने ज्यों ही सुना कि सुरेश सिंह आए हैं, तुरंत शीशे के सामने गई, केश छिटका लिए और विपत की मूर्ति बनी हुई विमल के कमरे में आई। कहां तो विमल की आंखें बंद थी, मूर्छित सा पड़ा था, कहां शीतला के आते ही आंखें खुल गईं। अग्निमय नेत्रों से उसकी ओर देखकर बोला,
1: अभी आई है? आज के 3रे दिन आना, कुंवर साहब से उस दिन फिर भेंट हो जाएगी।
0: ये सुनकर शीतला उल्टे पांव चली गई। सुरेश पर घड़ों पानी पड़ गया। मन में सोचा, कितना रूप लावण्य है पर कितना विषाक्त, हृदय की जगह केवल श्रृंगार लालसा। आतंक बढ़ता गया। सुरेश ने डॉक्टर बुलवाए पर मृत्युदेव ने किसी की न मानी। उनका हृदय पाषाण है, किसी भांति नहीं पसीजता। कोई अपना हृदय निकाल कर रख दे, आंसुओं की नदी बहा दे, पर उन्हें दया नहीं आती। बसे हुए घर को उजाड़ना, लहराती हुई खेती को सुखाना

0: उनका काम है और उनकी निर्दयता कितनी विनोदमय है। ये नित्य नए रूप बदलते रहते हैं, कभी दामिनी बन जाते हैं तो कभी पुण्यमाला, कभी सिंह बन जाते हैं तो कभी सियार, कभी अग्नि के रूप में दिखाई देते हैं तो कभी जल के रूप में। तीसरे दिन पिछली रात को विमल की मानसिक पीड़ा और हृदय ताप का अंत हो गया। यम के दूत प्रायः रात ही को सबकी नजर बचाकर आते हैं और प्राण रत्न को चुरा ले जाते हैं। रात शोक का बाह्य रूप है। उसी समय विमल के घर से आर्तनाद सुनाई दिया, वो नाद जिसे सुनने के लिए मृत्यु देव विकल रहते हैं। शीतला चौंक पड़ी और घबराई हुई मरण शैया की ओर चली। उसने मृत देह पर निगाह डाली और भयभीत होकर एक पग पीछे हट गई। उसे जान पड़ा विमल सिंह उसकी ओर अत्यंत तीव्र दृष्टि से देख रहे हैं। बुझे हुए दीपक में उसे भयंकर ज्योति दिखाई पड़ी। वो मारे भय के वहां ठहर न सकी। द्वार से निकल ही रही थी कि सुरेश सिंह से भेंट हो गई। कातर स्वर में बोली,
1: मुझे यहां डर लगता है।
0: उसने चाहा कि रोती हुई इनके पैरों पर गिर पड़ूं, पर वो अलग हट गए। जब किसी पथिक को चलते चलते ज्ञात होता है कि मैं रास्ता भूल गया हूं, तो वो सीधे रास्ते पर आने के लिए बड़े वेग से चलता है, झुंझलाता है कि मैं इतना असावधान क्यों हो गया। सुरेश भी अब शांति मार्ग पर आने के लिए विकल हो गए। मंगला की स्नेहमयी सेवाएं याद आने लगी। हृदय में वास्तविक सौंदर्य उपासना का भाव उदय हुआ। उसमें कितना प्रेम, कितना त्याग, कितनी क्षमा थी। उसकी अतुल पति भक्ति को याद करके कभी कभी वो तड़प जाते।
2: मैंने घोर अत्याचार किया है, ऐसे उज्जवल रत्न का आदर न किया। मैं यूं ही जड़वत पड़ा रहा और मेरे सामने ही लक्ष्मी घर से निकल गई।
0: मंगला ने चलते चलते शीतला से जो बातें कही थीं, वे उन्हें मालूम थीं, पर उन बातों पर विश्वास न होता था। मंगला शांत प्रकृति की थी, वो इतनी उद्दंडता नहीं कर सकती। उसमें क्षमा थी, वो इतना विद्वेष नहीं कर सकती। उनका मन कहता था कि वो जीती है और कुशल से है। उसके मैके वालों को कई पत्र लिखे, पर वहां व्यंग और कटु वाक्यों के सिवा और क्या रखा था। अंत में उन्होंने लिखा,
2: उस रत्न की खोज में मैं स्वयं जाता हूं, या तो लेकर ही आऊंगा या कहीं मुंह में कालिख लगाकर डूब मरूंगा।
0: इस पत्र का उत्तर आया,
3: अच्छी बात है, जाइए, पर यहां से होते हुए जाइएगा। यहां से भी कोई आपके साथ चला जाएगा।
0: सुरेश सिंह को इन शब्दों में आशा की झलक दिखाई दी। उसे दिन प्रस्थान कर दिया और किसी को साथ नहीं लिया। ससुराल में किसी ने उनका प्रेममय स्वागत नहीं किया। सभी के मुंह फूले हुए थे। ससुर जी ने तो उन्हें पति धर्म पर एक लंबा उपदेश दिया। रात को जब वो भोजन करके लेटे तो दोनों सालियां आकर बैठ गईं और मुस्कुराकर बातें करने लगी। ये बातें कोई सामान्य बातें न थीं, उनमें व्यंग था। वो शब्द थे जो उसे मुंह चिढ़ा रहे थे और हकीकत बयां कर रहे थे और उसे आईना दिखा रहे थे। तभी एक क्षण में मंगला की माता आकर बैठ गई और बोली,
4: बेटा तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो, देश विदेश घूम आए हो, कहीं सुंदर बनने की कोई दवा नहीं देखी?
2: माताजी, अब ईश्वर के लिए और लज्जित न कीजिए।
4: तुमने तो मेरी प्यारी बेटी के प्राण ले लिए, मैं क्या तुम्हें लज्जित करने से भी गई? जी में तो था कि ऐसी ऐसी सुनाऊंगी कि तुम भी याद करोगे, पर मेहमान हो, क्या जलाऊं? आराम करो।
0: सुरेश आशा और भय की दशा में पड़े करवटें बदल रहे थे। तभी अचानक द्वार पर किसी ने धीरे से कहा, कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। सुरेश ने आवाज पहचानी, मानो प्यासे को पानी मिल गया। एक क्षण में मंगला उसके सम्मुख आई और सिर झुकाकर खड़ी हो गई।

0: सुरेश को उसके मुख पर एक अनूठी छवि दिखाई दी, जैसे कोई रोगी स्वास्थ्य लाभ कर चुका हो। रूप वही था, रंग वही था, पर आंखें और थीं।
1: अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का चौथा और अंतिम भाग। पात्र परिचय इस प्रकार से है: सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, विमल सिंह, जी श्याम, शीतला, पूनम त्रिपाठी, सुरेश सिंह, जयंत पात्रीकर, मंगला, ममता सिंह, शीतला की सास दीपा माहेश्वरी, मंगला की माँ राजश्री त्रिवेदी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
2: आशा है आपको ये कहानी आभूषण बहुत पसंद आई होगी और अब सुनते हैं ये गीत।

0: अपने खेत बगीचे घर टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
1: आज ही पधारे लालजी नर्सरी, रानोजी का बाग, खोखरिया बिरामंडो।
0: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
2: लालजी नर्सरी, आप कुछ समय हरियाली में बिताओ।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो दीपा, हम लोग ने बहुत सारी जानकारी और कहानी भी प्रस्तुत करी है।
3: बिल्कुल, और कहानी तो सुनकर वाकई में सभी को आनंद आया, हमें भी आनंद आया। और अब देखो
2: क्या देखो नवीन शिक्षा सत्र की जो शुरुआत हुई है तो उसमें देखते हैं कि शुरुआत, या यूं कह लें कि बच्चे अगली क्लास में जाने लगते हैं तो उनके अंदर बहुत उत्साह, खुशी होती है क्योंकि उनको स्कूल यूनिफॉर्म से लेकर किताबें, कॉपी, बैग, बॉटल, टिफिन, जूते, सब कुछ नए मिलते हैं दीपा। और कौन से दोस्त पुराने नए मिलेंगे, टीचर कौन सी होंगी, हर छोटी छोटी बातें उनके दिमाग में चलती हैं और तभी खुशी से स्कूल जाने के लिए बच्चे तैयार हो जाते हैं।
3: कुछ तो बच्चे तैयार हो जाते हैं लेकिन ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चों को डर भी लगता है, फिर से पढ़ना पड़ेगा, मिस पता नहीं कैसी होंगी, गुस्सा तो नहीं करेंगी, दोस्त नए कैसे होंगे, फिर वही भारी बस्ते, किताबें, कितना सब कुछ कठिन होगा, है ना। लेकिन मिस, उन्हें ये भी लगता है मिस डांटेंगी तो नहीं, मम्मी पापा से दूर जाना होगा, कुछ ऐसे ही मानसिक शैक्षिक तनाव और स्कूल जाने का डर मन में कई बच्चों की ये भी कुछ इस तरह से भी बैठ जाता है।
2: बिल्कुल दीपा, बैठ जाती है। और बच्चों के सामने कुछ आने वाली समस्याएं भी होती, जैसे वहां पर कैसे अपना एडजस्टमेंट बैठाएंगे, नया माहौल होता है चूंकि बच्चों के लिए, और सख्त नियमों और अलग पढ़ाने के जो तरीके होते हैं, नए शिक्षक वहां पर आएंगे और वो अब किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं, वो भी उनके ऊपर एक मानसिक दबाव होता है। तो उनको कैसे तालमेल बिठाना है, बच्चों को ये सब सोच के ही थोड़ी सी दिक्कत सी लगने लगती है। और स्कूल जाने का डर और घबराहट से वे कई तरह के बहाने बनाने लग जाते हैं। और अक्सर देखा होगा तुमने, बच्चे सुबह उठते ही रोना शुरू कर देते हैं कि मम्मी आज नहीं जाऊंगा, पेट दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, इस तरह के बहाने बनाने लग जाते हैं। और कई बच्चे तो बड़े चिड़चिड़े से हो जाते हैं, कुछ कहेंगे भी नहीं, बस रोए जा रहे हैं।
3: हाँ, तो ऐसा भी होता है, भाई देखो ना क्या हो गया है, अब गर्मियों की छुट्टियां तो खत्म हो गई हैं, वो जो खेल कूद और मस्ती भरे दिन थे वो भी कहीं उड़नछू होते चले जा रहे हैं। एक लंबे समय के बाद अचानक पढ़ाई के रूटीन में जब बच्चे लौटते हैं ना तो ऐसा व्यवहार हम देखते ही हैं अक्सर, और वहीं पढ़ाई का कहीं ना कहीं एक बोझ सा भी उनको लगने लगता है, नई शिक्षा के कठिन जो ये सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, और फिर जो होमवर्क आ जाता है, उनको गृह कार्य आ जाता है, इसमें समय उनका पूरा निकल जाता है और उनको एक दबाव सा शुरुआत में लगता है। फिर वो धीरे धीरे उसकी आदत में आते हैं, लेकिन पहले उनको ऐसा लगता है अभी तो हम दिन दिन भर खेल रहे थे, अब अचानक से एक नियम उनके ऊपर बन गया, एक रूटीन उनका बनना शुरू हो गया है।
2: बिल्कुल, और जो उनकी दोस्त मित्र मंडली है, सहकर्मियों का दबाव भी उनके ऊपर पड़ता है दीपा। और दोस्तों का साथ छूटना या नए साथियों के बीच खुद को स्थापित करना, साबित करना और सामाजिक स्वीकृति पाने का तनाव भी बच्चों में देखा जाता है। और इसके साथ ही सुबह जल्दी उठने, स्क्रीन टाइम कम करने और खेलने पढ़ने के बीच संतुलन बनाने में बच्चे अक्सर असमर्थ रहते हैं। उनको लगता है अरे हम खेल नहीं पाएंगे, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। तो जल्दी उठना और खेल नहीं पाना, इसके बीच में बच्चे बड़े फंसे रहते, उलझे रहते हैं कि अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, उनको पढ़ाई से पीछे भागते, क्योंकि होता यही कि इतने दिन छुट्टियां होती लंबी, तो बच्चों की वो छुट्टियों में आराम से उठने की आदत होती है और घंटों घंटों खेलना रहता है, पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं रहता है, तो नए सत्र में ये चीजें रहती। तो वही माता पिता और शिक्षक देखो बच्चों की मदद करें।
3: बिल्कुल, इनका सपोर्ट और इनका मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है बच्चों को, छोटे बच्चे जहाँ अगर उनकी अगर हम बात करें तो प्यार से उनसे बात करना बहुत जरूरी है, उनके मन की बात जानना, उनसे उनके मन में क्या चल रहा है, क्या उथल पुथल चल रहा है ये पूछना, फिर बच्चों को डराने के बजाय

0: हम लोग क्या डरा डरा करके कई बार ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं करोगे तो देखो ऐसा हो जाएगा, वैसा नहीं करोगे तो देखो वैसा हो जाएगा, ये नहीं करके दोस्ताना व्यवहार रखना बहुत जरूरी है ताकि वो अपनी जितनी भी समस्याएं हैं वो खुलकर बता सकें। फिर बच्चों के लिए एक नियमित दिनचर्या बनाना होता है,
1: बिल्कुल
0: वो उसमें ऐसा नहीं कि आज बनाया तो वो कल ढल जाएंगे, धीरे धीरे थोड़ा सा समय जाएगा
1: बिल्कुल
0: लेकिन वो उसमें ढल जाएंगे। फिर इस दिनचर्या में पढ़ाई, खेल और फिर अच्छे से सोना, इन सब का एक सही संतुलन होना बहुत जरूरी है। अब होमवर्क है, फिर बैग पैक करना, ये सारी तैयारियां करनी एक दिन पहले करना बहुत
1: बिल्कुल
0: जरूरी हो गया है। जूते पे पॉलिश है या नहीं, यूनिफॉर्म पे बराबर इस्त्री है या नहीं, धुले हैं या नहीं, ये सब बहुत छोटे बच्चे हैं तो पेरेंट्स देखेंगे लेकिन जहां बड़े बच्चे हैं वहां उनको ये सब चीज देखना होती है।
1: बिल्कुल
0: तो थोड़े से एक रूटीन, जो बिल्कुल स्वच्छंद भी रूटीन था, कुछ
1: जी
0: रूटीन ही नहीं था
1: रूटीन ही
0: असल
1: नहीं
0: में,
1: था कहना
0: और
1: चाहिए।
0: अब एक एक सिस्टम बनता चला जा रहा है, एक दिनचर्या उनके ऊपर आ रही है कि नियमित तरीके से ये करना होगा आपको, तो थोड़े से परेशान होते हैं लेकिन हमें उनकी भी उलझन को समझना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल उनको छोटी छोटी चीज़ें उनकी उनसे करवाएं और उनकी तारीफ भी करें कि देखो भाई तुमने अच्छे से अपनी यूनिफॉर्म रखी है और साथ में बैग भी तुमने अच्छे से लगा लिया है और शूज़ भी सही जगह से तुमने रखे हैं पॉलिश करके, तो और देखो तुम्हारे पास कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, इनको लेके जाओगे स्कूल में तो बच्चे कितने खुश होंगे और साथी तुम्हारे कितने खुश होंगे, नई टीचर बहुत प्यार करेगी। इस तरह से बच्चों को थोड़ा सा कहना चाहिए कि हम बहला फुसला कर बच्चों को स्कूल भेजें तो बच्चों का मन भी लगेगा, है
0: बिल्कुल।
1: ना। तो
0: और
1: हमारे
0: वहीं
1: साथी
0: देखिए जी, संदेश भी आए हैं हमारे श्रोताओं के। एक संदेश कहता है कि नवीन शिक्षा सत्र की शुरुआत को नई ऊर्जा और योजना के साथ करना ही सफलता की कुंजी है। नवीन सत्र की शुरुआत केवल नई कक्षाओं में प्रवेश भर नहीं है बल्कि नए सपनों, नए संकल्पों और नई संभावना की ओर बढ़ाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। यह समय है पुराने अनुभव से सीख लेकर नई ऊर्जा और उत्साह के साथ ज्ञान के पथ पर आगे बढ़ने का।
1: बिल्कुल। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि नई शिक्षा सत्र की शुरुआत, भाई हम लोग के समय में शिक्षा सत्र की शुरुआत जुलाई माह से शुरू हुआ करती थी और फरवरी मार्च तक परीक्षाएं शुरू हो जाया करती थी, लेकिन अब गतिशील समाज में शिक्षा को दान का विषय न मानते हुए स्वयं के लिए वित्तीय वर्ष के अनुसार मार्च से अप्रैल तक कर दिया गया है। फलस्वरूप दान का विषय पूरी तरह से व्यापार विषय का दृष्टिकोण हो चुका है। इस तरह से इन्होंने बातें लिखी है। लेकिन देखा जाए दीपा, तो हम लोग के समय में भी जब हम लोग बच्चे थे तो बहुत सारी तैयारियां करते थे जाने के लिए, मम्मी लोग कितनी तैयारियां करती थी, फिर हम लोग भी पहले दिन तो बड़े खुशी खुशी जाते थे, फिर अगली बार जब एक हफ्ते बाद लगता था अरे फिर से जाना है फिर से पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं मन पीछे की ओर भागता था, लेकिन भाई माता पिता इतने प्यार से करते थे तो पढ़ना तो पड़ता ही था और पढ़ना तो सब बच्चे के लिए बहुत अच्छी बात है ना।
0: बिल्कुल, क्योंकि ये
1: तो
0: आपके जीवन के जो नींव है वो बनाती है।
1: बिल्कुल, तो भाई अपने बच्चों को बहुत प्यार से भेजें स्कूल, उन्हें डराया नहीं, और बल्कि अब चलिए उनको एक गीत सुना देते हैं सबको।
0: चलिए

0: मंजरी, जैसे शिक्षा सत्र की शुरुआत हो रही है वैसे ही बस अब कुछ ही दिनों में
1: मच्छरों की आतंक की शुरुआत होने
0: हम
1: वाली
0: इतना मतलब
1: जी।
0: ये तो बात है ही, लेकिन साथ में एक सुखद अनुभव ये भी होगा कि बरसात की, वर्षा ऋतु की भी शुरुआत हो जाएगी
1: बिल्कुल गर्मी
0: और हर
1: से
0: एक अच्छी चीज के
1: जी
0: साथ एक चीज है जो कि कहीं वो उसमें एक खामियां भी लेकर आती है ना, साथ साथ
1: बिल्कुल,
0: में
1: क्योंकि
0: होती है।
1: देखो गर्मी का जो मौसम चल रहा है इसमें जब बारिश की फुहारें आएंगी और जो कहीं कहीं हल्की हल्की बारिश हुई भी है तो कहीं नहीं हुई है तो वो लोग बारिश के लिए बेताब भी हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो इन सब कीट जो पतंगे होते हैं इन सब का घर में आना जाना, मच्छरों का आना जाना बहुत शुरू हो जाता है।
0: बिल्कुल
1: तो मच्छरों से बचाव के लिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है हमको, तो उसके लिए कि पहले तो मच्छरों से बचाव के लिए घर में और आसपास पानी जमा मत होने दीजिए, हमारे साथी लिख रहे हैं। और साथ में आपके अंदर, घर के अंदर भी बहुत सारे हम ऐसे इंडोर प्लांट्स रखते हैं जिनमें पानी, हम भर के पानी में पौधे उगाते हैं, तो उन पानी को आप बदलते रहें हर दो दो दिन पे तो बहुत अच्छा रहेगा, जिससे उसमें लार्वा ना पनपने पाए। तो इन चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और
0: बिल्कुल, और ये हमारा एक और संदेश है जो कहता है कि हमारे यहाँ यानी सूरत से हैं ये, और कह रही हैं कि सुबह सुबह हल्की सी बारिश हो गई थी, वो भी अब लगता है कि कहीं झपकी के मूड में आ गई है, यानी कि थोड़ी सी बारिश हुई होगी फिर रुक गई होगी, और बारिश हो और मच्छरों का उपद्रव ना हो ये तो संभव नहीं हो सकता। ये तभी कर सकते हैं कि आप अपने घर के आसपास या गमलों में पानी ना जमा होने दें, अगर हो तो उसको निकाल लें क्योंकि ये करना बहुत जरूरी है, और सोते समय मच्छरदानी का उपयोग अवश्य करें, घर की खिड़कियां या दरवाजे पर भी जाली अवश्य लगवा लें, घर में कपूर जलाएं या नीम के तेल का दिया जलाएं, ये मच्छरों को भगाने में मदद करता है।
1: और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि मच्छरों से बचाव गर्मी की एक सबसे बड़ी समस्या है, होती है गर्मी और बरसात की जारी जारी है। मच्छरों से बचाव के लिए अपने आसपास जहां पानी जमा रहता है वहां पानी जमा ना होने दें, और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि आपने जो आसपास जो कलर वगैरह कराया है वो हल्के रंगों का हो और सफाई करें। और ये बहुत जरूरी है कि क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा मच्छरों के जो लार्वा है वो पनपते हैं, और जब भी सोएं मच्छरदानी के को लगा करके आप सोएं, और मच्छर से बचाव करने वाले जो कुछ आप उपाय कर सकते हैं वो करें, तो इससे क्या होगा कि आप मच्छरों के काटने से बचे रहेंगे।
0: बिल्कुल, और साफ
1: और
0: सफाई का तो देखो विशेष ध्यान रखना होता ही
1: जी
0: है। कई हमारे सखियां होंगी जिनके घर में ऊपर छत है, तो वहां पर हम ऐसा होता है ना अक्सर कि जो काम की चीजें नहीं है वो हम रख देते हैं, जैसे कोई डब्बा रख दिया है, कोई ट्यूब टायर वगैरह रख दिया है, या कोई ऐसी ऐसा सामान लकड़ी का कि साल भर उसका इस्तेमाल ही नहीं होता,
1: हाँ
0: कभी
1: तो
0: कभी होता है,
1: मच्छर उसी में
0: तो हम
1: पनपते
0: उसमें,
1: हैं।
0: हाँ, और ऐसी जगह पर जहां पे धूल मिट्टी और फिर उसके बाद पानी अगर इकट्ठा होने लग जाता है तो बेशक वहां पे मच्छरों के लार्वा पनपने लग जाते हैं और वो बढ़ने लग जाते हैं। तो
1: बिल्कुल
0: ये सब चीजें ठीक है, हम मानते हैं कि गर्मी के दिन है, बहुत मुश्किल होती है एकदम गर्मी में छत पे जाना और सब साफ सफाई करना, लेकिन ये एक बार अगर आपने पहले से ही कर दिया तो बारिश आने के पहले ही अगर सफाई हो जाएगी तो वहां पे गंदा पानी होगा ही नहीं, और उसके बाद कुछ कुछ दिनों में वो सफाई हमें करते रहने पड़ेगी,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि हर मौसम का एक अपना अगर सुकून है तो ध्यान रखने की बात भी जरूरी है।
1: बिल्कुल है। और जैसे ही शाम होने लगे तो उस समय घर के दरवाजे खिड़कियां आप बंद कर
0: बिल्कुल
1: दीजिए, खिड़कियों में दरवाजों में जाली लगी हो तो आपके हर घर में, हर उसमें लगी हो कमरों में, तो आपको बहुत आराम रहेगा, मच्छर आने नहीं पाएंगे। और मच्छरों से
0: और ये
1: बचना है।
0: इसमें ये भी जोड़ना चाहती हूँ कि 5 से 7 बजे के बीच में मच्छर आ जाते हैं, तब क्या उजाला रहता है, हमें लगता है नहीं अभी बंद कर देंगे तो थोड़ी गर्मी लगने लगेगी और हम खिड़कियां खुली रखते हैं, लेकिन ऐसा ना करते हुए 5 बजे 6 बजे के बीच में ही आप सारी खिड़कियां बंद कर लें, बाद में थोड़ी देर के बाद अगर आप खोलते हैं तो चलता है, लेकिन मच्छर वाली अगर जो बारीक छेद वाली अगर

0: खिड़कियां हैं, तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी
1: बिल्कुल.
0: बात है. क्योंकि विशेष तौर पे मच्छर से बचने के लिए दरवाजे भी बनाए गए हैं आजकल, तो छोटी छोटी खिड़कियां भी होती हैं, स्लाइडिंग विंडोज भी होते हैं. इस तरह की चीजों का आप इस्तेमाल करें.
1: बिल्कुल
0: छोटे बच्चे घर में हैं तो उनको कपड़े पूरे
1: पूरे
0: बहा के
1: पहनाएं.
0: और पूरे पैरों को ढके, उनके शरीर उनका ढका हुआ रहे, भले ही वो पतला कॉटन का कपड़ा हो,
1: और दीपा,
0: लेकिन
1: इसके साथ ही जो घर में हम चादर वगैरह बिछाते हैं वो भी हल्के कलर के होने चाहिए. अगर
0: जी
1: हम गहरे रंगों के, भूरे हैं, काले नीले बिछाएंगे तो उसमें मच्छर बैठेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा. जितना हल्का कलर होगा उतनी जल्दी आप उनको देख सकते हैं और उनसे बच सकते हैं. फिलहाल तो हम एक गीत सुन सकते हैं.
0: इससे हम बचना बिल्कुल नहीं
1: जी
0: चाहते.

0: अब तो भाई
1: सुरीले सा संगीत हो और फिर कुछ ही दिनों में झमाझम बारिश होगी, ऐसे में अगर चाट मिल जाए रंग बिरंगी उत्तर प्रदेश की तो फिर क्या ही बात है। तो फिर चलिए उसके लिए क्या क्या चाहिए ये भी हम देख लेते हैं। टिक्की बनानी होगी, उसके लिए उबले हुए मैश किए हुए आलू लेना है 4-5, अरारोट या फिर कॉर्नफ्लोर आप ले लीजिए 3-4 चम्मच, और छोले यानी कि सूखी सफेद मटर होती है वो लेना है 1 कप, रात भर भीगी हुई, रात को ही भिगा लीजिएगा अगर आपको अगले दिन बनाना है। हल्दी छोटा चम्मच, नमक, गरम मसाला

0: ऐसे में अगर चाट मिल जाए रंग बिरंगी उत्तर प्रदेश की, तो फिर क्या ही बात है। तो फिर चलिए उसके लिए क्या क्या चाहिए ये भी हम देख लेते हैं। टिक्की बनानी होगी, उसके लिए उबले हुए मैश किए हुए आलू लेना है 4-5, अरारोट या फिर कॉर्नफ्लोर आप ले लीजिए 3-4 चम्मच, और छोले यानी कि सूखी सफ़ेद, जो सूखी सफ़ेद मटर होती है वो लेना है 1 कप, रात भर भीगी हुई, रात को ही भिगा लीजिएगा अगर आपको अगले दिन बनाना है। हल्दी 1/2 चम्मच, नमक, गरम मसाला, ये सब आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, और चटनी है स्वाद अनुसार, और गार्निश के लिए हरी चटनी आपको लेना है, उसमें पिसी हुई धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची, अदरक और नींबू होते हैं। ये तो बन गई आपकी हरे धनी की चटनी। मीठी चटनी भी बनानी होगी, उसके लिए आपको इमली या अमचूर और चीनी मिलाकर या गुड़ मिलाकर गाढ़ा सा एक आपको चटनी बनानी है, मीठी चटनी, ये भी ऊपर से डाला जाएगा। और फिर फेंटा हुआ मीठा दही चाहिए, भुना हुआ जीरा पाउडर चाहिए, काला नमक, चाट मसाला चाहिए, लाल मिर्च पाउडर और कटे हुए प्याज, और ऊपर से सर्व सजाने के लिए हरा धनिया। भाई हमारे सखियां कहेंगी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन भाई मजा भी तो तभी है ना, उसका स्वाद भी उसी तरह से बढ़ेगा। अब मटर आप उबाल लीजिए भीगी हुई जो आपने रात भर रखी थी, इसमें हल्दी नमक डालकर पानी डालकर कुकर में 4-5 सीटी ले लीजिएगा। मटर गाढ़ी और थोड़ी लिपटी लिपटी सी हुई होनी चाहिए। टिक्की कैसे तैयार करना है, मैश किए हुए आलुओं में अरारोट और नमक मिला लेना है, इसे आटे की तरह गूंद लेना है। अब छोटी छोटी लोइयां बनाकर गोल और चपटी टिक्कियां तैयार कर लीजिए। फिर तवे पर आपको जैसे आपको पसंद हो घी से या तेल से आप इसको सेक लीजिए दोनों तरफ से, सुनहरा और कुरकुरा होने तक। प्लेटिंग कैसे करनी है, एक प्लेट में 2 टिक्की या जैसे आपको घर में पसंद है उस तरह से रखिए, उसके ऊपर गरम जो माफ कीजिएगा उसके ऊपर जो तैयार की है आपने गरम मटर वो डालिए, मसाले और चटनी डालना है, और अब इसमें जो ऊपर से इसके ऊपर फेंटा हुआ दही, फिर हरी चटनी और बहुत सारी मीठी चटनी डालिएगा, या घर में अगर आपके किसी घर में तीखा पसंद है तो हरी चटनी ज़्यादा डालिए। इसके बाद चाट मसाला, काला नमक, भुना जीरा, लाल मिर्च पाउडर, ये सब हल्का हल्का भो रखना है, और फिर आखिर में कटे हुए प्याज डाल के हरा धनिए से आप इसे सजाकर सर्व कीजिए।
1: और इसी तरह हरी धनिया के आलू भी बनते हैं। हरी धनिया के पुदीने की बढ़िया चटनी बनाइए, उबले आलू लीजिए और उसके सबको मिक्स कर दीजिए, तो आपके हरी धनिया के आलू जो चाट है वो तैयार हो जाए।

0: तो दीपा देखो बातें करते करते एकदम समय का पता ही नहीं चला, तो हमारे सभी साथियों ने बहुत सारे संदेश भेजे और बहुत अच्छी सी रेसिपी भी लिखकर भेजी।
1: बिल्कुल, तो और रेसिपी जो भेजी है उसको आप, लंबी है लेकिन बनाइएगा जरूर, क्योंकि बारिश के मौसम में ये बहुत स्वादिष्ट और मजेदार लगेगी। और अपना ध्यान रखिएगा मच्छरों से भी, और बच्चे नहीं अभी जब स्कूल जाने के लिए थोड़ा सा जिद करेंगे या मन उनका नहीं होगा तो उनका मन को बहलाइए खूब अच्छी ये इस तरह की रेसिपी बना के।
0: तो अब विदा लेते हैं प्रोग्राम से, सभी को मंजरी वर्मा और
1: दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
0: सखी सहेली।

0: नमस्कार श्रोताओं, सेहतनामा कार्यक्रम में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध गैस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो

0: स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है एक ऐसे डॉक्टर को जो हेपेटोलॉजी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के सीनियर कंसल्टेंट हैं कोकिलाबेन हॉस्पिटल में। आप हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता। डॉक्टर साहब, आपका विविध भारती के स्टूडियो में हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार, धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए और ये अवसर देने के लिए आपसे बात करने के लिए।
0: डॉक्टर साहब, यहाँ विविध भारती के स्टूडियो में आकर आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है?
1: नहीं, बहुत बढ़िया लग रहा है। काफी दूर है हमारा हॉस्पिटल से। इतना बड़ा स्टूडियो, इतनी बड़ी जगह, इतनी खुली जगह देख के बहुत अच्छा लग रहा है। काफी बड़े स्टूडियोज हैं, फिर सब लोगों को मिलके बहुत अच्छा लगा
0: जी। आज सेहतनामा कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं फैटी लिवर और पेट की अन्य तमाम बीमारियों के बारे में। तो डॉक्टर साहब, फैटी लिवर आजकल बहुत कॉमन हो गया है, हर चौथा पांचवा मरीज ऐसा सुनने में आता है और सोशल मीडिया के माध्यम से तो हर कुछ पॉपुलर हो जाता है, मशहूर हो जाता है। तो बताइए कि फैटी लिवर है क्या और इससे कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती हैं?
1: आपने बिल्कुल सही किया, फैटी लिवर अभी बहुत बहुत कॉमन हो चुका है। आपने कहा हर चौथे पांचवे आदमी को फैटी लिवर है, पर मैं कहूंगा हर दूसरे तीसरे आदमी को फैटी लिवर
0: अच्छा।
1: है। अगर आप देखें ओवरऑल फैटी लिवर को, तो कहने में आया है कि बड़े शहरों में जो हम अर्बन पॉपुलेशन कहते हैं उनमें अब 30-40% लोगों को ये बीमारी है फैटी लिवर। अगर आप गांवों में चले जाएं, छोटे शहरों में चले जाएं, तो ये बीमारी थोड़ी कम है और इसके कारण भी मैं आपको बताऊंगा। फैटी लिवर का मतलब होता है लिवर के अंदर ज्यादा फैट जमा हो जाना। हमारे लिवर के अंदर फैट होना जरूरी है फॉर बॉडी के कई फंक्शंस के लिए, बट जब ये फैट ज्यादा हो जाता है तब ये लिवर को नुकसान देता है, और अगर लिवर खराब हो जाए तो बॉडी के कई और ऑर्गन्स पे ये इफेक्ट करता है। अगर हमारे लिवर के अंदर फैट 5% मतलब 5% से ज्यादा हो जाए तो ये आगे जाके प्रॉब्लम दे सकता है। सबको नहीं, किसी किसी लोगों को ये प्रॉब्लम देता है
0: जी। तो इसके कारण क्या है डॉक्टर साहब, क्यों फैटी लिवर होता है?
1: तो सबसे बड़ा कारण आई थिंक हमारे यहाँ है कि हमारी डाइट, अभी हमारी डाइट काफी सैचुरेटेड डाइट हो गई है। हम वेस्टर्नाइज डाइट हमने अडॉप्ट कर ली है, हम फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, तो हमारी कार्बोहाइड्रेट की जब जो मात्रा होती है अगर वो ज्यादा हो तो ये एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं वो लिवर में फैट करके स्टोर हो जाता है और लिवर को खराब करता है। डायबिटीज होना, प्री डायबिटीज होना, एक्सरसाइज नहीं करना, आजकल सब ऑटो में जाते हैं, टैक्सी में जाते हैं, वॉक करना तो ऑलमोस्ट सबने छोड़ ही दिया है, सबके वजन बढ़ रहे हैं, तो ये कई कारण है जिससे लिवर में फैट ज्यादा होता है और उससे लिवर को नुकसान पहुंच सकता है।
0: तो फैटी लिवर से और कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, और एक बात और दूसरी बात ये बताइए कि इसके लक्षण क्या है, कैसे मरीज को पता चले कि फैटी लिवर हो गया है उसको?
1: तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि हमको पता ही नहीं चलता कि ये प्रॉब्लम हो रही है। जब पेशेंट हमारे पास आता है ये प्रॉब्लम के साथ तब काफी लेट हो चुका होता है, ऑलरेडी लिवर पूरी हद तक खराब हो चुका होता है, जिसको हम सिरोसिस कहते हैं। अगर हम इसको जल्दी पकड़े तो इसकी ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। आपका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का था कि ये क्यों होता है और इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, लक्षण क्या होते हैं। तो नॉर्मली इसके लक्षण बहुत कम होते हैं, कभी कभी हमको हमारे पेट के ऊपर के हिस्से में थोड़ा दर्द हो सकता है, थकान आ सकती है। अगर हम अपने ब्लड टेस्ट चेक करें उसमें हमको डायबिटीज हो सकती है या प्री डायबिटीज हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है ब्लड के अंदर, तो ये 2-3 लक्षण है जिससे हमको सोचना चाहिए कि हमको शायद फैटी लिवर हो। क्लियरली अगर आपका वजन बढ़े जा रहा है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, खाना ठीक से नहीं खा रहे हो, तो आपको फैटी लिवर होने की संभावना है। बट अगेन मैं यही कहूंगा कि चेकअप करना जरूरी है क्योंकि इसके कोई सिम्टम्स होते नहीं है, सिम्टम्स बहुत आगे जाके आते हैं जब हम कुछ नहीं कर सकते।
0: जी, तो क्या है चेकअप का तरीका, क्या होता है डॉक्टर साहब फैटी लिवर का, किस तरह की जांच पद्धति है?
1: तो इस बेसिक चेकअप जो होता है, हमें सादे जो ब्लड टेस्ट होते हैं, जो हम रेगुलर ब्लड टेस्ट करते हैं, उसमें हम देख लेते हैं कि हमको डायबिटीज है कि नहीं, हमारा HbA1c कितना है, हमारा ट्राइग्लिसराइड्स कितना है, LDL कोलेस्ट्रॉल कितना है, हमारा वजन कितना है। अगर वजन हमारा बढ़ रहा है या ज्यादा है, हम ओबीस कैटेगरी में आते हैं जिसमें एक हम नंबर कैलकुलेट करते हैं BMI जो हाइट और वेट पे डिपेंड करता है, और अगर वो 23 से ज्यादा हो तो देयर इज अ रिस्क कि आपको शायद फैटी लिवर हो। फिर एक्चुअल डायग्नोसिस के लिए सोनोग्राफी लगती है, अगर आप पेट की सोनोग्राफी कराओ, कोई और कारण भी कराओ, उसमें अगर लिवर दिखे और उसमें आए कि लिवर फैटी है तो वो आपकी डायग्नोसिस हो गई फैटी लिवर है। पर ये खाली कह रहा है कि आपको फैटी लिवर है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको तकलीफ है। फैटी लिवर कई लोगों को होता है, पूरी

0: जिंदगी लिवर में थोड़ा फैट ज्यादा होता है, पूरी जिंदगी कट जाती है, लिवर को कुछ नहीं होता है।
1: ओके
0: बट ऐसे थोड़े पेशेंट्स हैं जिनको हमको ढूंढना पड़ता है, जिनको आगे जाके ये फैटी लिवर नुकसानदेह दे सकता है। टेस्ट करने के लिए कि कितना लिवर डैमेज है, दो तीन तरह के टेस्ट होते हैं। एक मशीन आती है हमारे ओपीडी में, जिसमें मशीन से लिवर को हाथ लगाते हैं, वो 2 मिनट के अंदर बता देता है कि फैट कितना है पर नुकसान है कि नहीं। क्योंकि अगेन, अगर नुकसान है तो उसकी ट्रीटमेंट करने की जरूरत है।
1: जी
0: कई नई अल्ट्रासाउंड आए हैं जो अगेन लिवर को स्कैन करके बता देते हैं फैट है और डैमेज है कि नहीं। थोड़े एडवांस टेक्नोलॉजीज भी है हमारे हॉस्पिटल में, क्योंकि हम काफी ट्रांसप्लांट्स करते हैं हमारे डिपार्टमेंट में, तो एक एमआरआई करके स्कैन आता है जिससे हम पता करते हैं कि लिवर में डैमेज है कि नहीं, और एक स्पेशल सीटी स्कैन भी अवेलेबल है। अब ये सारे जो टेस्ट है सिंपल टेस्ट है, हमको आराम से मिल जाते हैं सब जगह से। अगर आपको चाहिए कि कोई फाइनल टेस्ट हो जो बताए कि कितना लिवर खराब है, तो लिवर बायोप्सी करते हैं, लिवर का एक टुकड़ा लेते हैं। पर मुझे याद नहीं है लास्ट मैंने लिवर बायोप्सी फैटी लिवर के लिए कब की थी, क्योंकि हमारे जो न्यू टेक्नोलॉजीज है वो इतने सोफिस्टिकेटेड, इतने एडवांस हो चुके हैं कि 2 मिनट के अंदर मैं पेशेंट को बता देता हूं कि आपको लिवर में खाली फैट है कि फैट के साथ नुकसान है। बट इसके लिए पेशेंट हैज टू बी एजुकेटेड, पेशेंट को पता होना चाहिए कि मुझे ये टेस्ट करने हैं। अगर हमारे पास वो टेस्ट लेके आओगे तो हम आगे आपको टेस्ट करके आंसर दे पाएंगे।
1: जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि जरा भी तकलीफ होती है या यूं ही फैट बढ़ रहा है तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अमूमन लोग डॉक्टर के पास जाने में ही परहेज करते हैं, अपने आप ही गूगल के जरिए कुछ कुछ दवाइयां ले लेते हैं, ये भी ठीक नहीं है। खासतौर से उन श्रोताओं के लिए ये बात हम कह रहे हैं जो ग्रामीण इलाकों में, कस्बों में बसते हैं, तो उनकी जानकारी के लिए बड़ी कारगर बातें आपने बताई। डॉक्टर साहब, आगे बढ़ने से पहले एक गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवा दें, आपकी पसंद का गाना बताइए।
0: मेरा एक गाना जो बहुत मुझे पसंद है, जब मैं अमेरिका में था काफी साल, 14-15 साल मैंने वहां बिताया है।
1: अच्छा।
0: तो यहाँ बॉम्बे का ही हूँ, यहाँ ही पढ़ा लिखा हूँ MBBS की, मगर बाहर जाके ट्रेनिंग की, एडवांस ट्रेनिंग की, प्रैक्टिस की काफी साल। फिर 14-15 साल छोड़ के मैं वापस आ गया, क्योंकि मेरे पेरेंट्स यहाँ थे। तो वहां मैंने एक सॉन्ग बहुत सुनता था, वो स्वदेश पिक्चर का एक सॉन्ग था शाहरुख खान का,
1: ये जो देश है मेरा।
0: ये सॉन्ग मुझे बहुत बहुत पसंद।
1: क्या बात है, सुनते हैं यही गाना स्वदेश फिल्म का।

0: डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया कि आप अमेरिका में रहे बहुत साल, तो किस तरह की पढ़ाई वहां पर थी आपकी?
1: तो बेसिक MBBS मैंने यहाँ से की, बॉम्बे से की। फिर वहां पे मेरे फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली वहां रहती थी, तो मैं वहां जाके पहले अपना बेसिक MD मेडिसिन की हमने वहां पे। तीन साल का कोर्स होता है वहां पे, जो MD मेडिसिन MBBS के बाद करते हैं। फिर उस टाइम पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि वहां पे लिवर के लिए पढ़ाई करूं एक्स्ट्रा, जो स्पेशल फेलोशिप होती है हेपेटोलॉजी की, जब हम लिवर और लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में सीखते हैं हाउ टू डू, तो मैंने एक साल का कोर्स किया। इसके पीछे भी एक रीजन है कि क्यों मैंने ये फील्ड चूज की थी, मैं बताऊंगा आपको आगे। और सब्सिक्वेंटली पूरी ट्रेनिंग खत्म करने के लिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजी करते हैं हम, एंडोस्कोपी वो की, एंड फाइनली मैंने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में जाके एडवांस एंडोस्कोपी सीखे, जो स्पेशलाइज एंडोस्कोपीज होती है, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड ERCP करके टेस्ट होते हैं, जो हम हमारे ट्रांसप्लांट पेशेंट पे भी करते हैं, वो सीखी। तो ओवरऑल 8 से 9 साल लगे वहां पे पढ़ने को, फिर 4-5 साल उधर काम किया, फिर 14 साल बाद आई डिसाइडेड कि वापस आना चाहिए अपने देश। तो जैसे मेरी माँ कहती है ना, वनवास करके आ गया।
0: अरे क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात आपने बताई, और हमारे बहुत सारे युवा श्रोता सुनते हैं प्रोग्राम, तो कितनी अच्छी बात है कि अपने देश की प्रतिभा को वापस अपने देश में आपने दिया। और अपने श्रोताओं को ये बताते हुए हमें अच्छा लग रहा है कि हम निजी तौर पर भी डॉक्टर साहब को जानते हैं, और बड़े अनुभव का खजाना है हमें पता था, लेकिन इतनी सारी नॉलेज का भी खजाना है ये हमें आज पता चला। डॉक्टर साहब, आज फैटी लिवर पे हम पहले बात कर रहे हैं, उसके बाद हम बहुत सारी पेट की बीमारियों पर भी चर्चा करेंगे। हमें बताइए कि दवाइयों से क्या फैटी लिवर का इलाज संभव हो सकता है, या कोई ऑपरेशन या परहेज कुछ करना पड़ता है?
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जब भी पेशेंट हमारे पास आता है, पेशेंट की एक्सपेक्टेशन देती है कि हम एक दवाई लिख के दें
0: जी।
1: तो फैटी लिवर ऐसी बीमारी है जो अगर जल्दी पकड़े जाए तो इसके लिए दवाई की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने बॉडी का 5-10% भी वजन कम कर पाए, किस तरह भी, चाहे आप डाइट करो, एक्सरसाइज करो, अगर 5-10% आपने वेट कम कर लिया तो बीमारी पूरी तरह से मिट जाती है मोस्ट पेशेंट्स में। पर ये करना बहुत मुश्किल है, कहना आसान है। तो मोस्ट पेशेंट्स को कोई ना कोई दवाई की जरूरत पड़ती है। पहले हम विटामिन ई देते थे, एक गोली आती थी वो देते थे उसके लिए। उसके बाद और नई दवाई है, एक इंडियन दवाई आई है जो हम देते हैं, जिससे फैटी लिवर भी कम होता है और लिवर का डैमेज भी थोड़ा थोड़ा कम होता है। अमेरिका में 2 और दवाइयां अभी अप्रूव हुई है, एक साल पहले हुई थी, कभी 6 महीने पहले हुई है। आजकल जो सबसे ज्यादा दवाई हम यूज करते हैं इसके लिए, वो है सेमाग्लूटाइड, एक तरह का इंजेक्शन होता है जिससे वेट लॉस होता है, जो आजकल काफी फेमस हो चुका है फॉर गुड एंड बैड रीजंस। तो देर आर मेडिसिन अवेलेबल है दवाइयां, मगर ये डॉक्टर के देख के डॉक्टर है डिसाइड कि कौन सी दवाई आपके लिए सही है। मेरा मानना होता है कि पेशेंट्स खुद, जैसे आपने कहा, गूगल करके दवाई ले लेते हैं। स्पेशली ये जो हर्बल मेडिसिन होते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन होते हैं, उस पर थोड़ा ध्यान से लेना चाहिए, क्योंकि उनमें कभी कभी भस्म होता है, उसमें लिवर को डैमेज करने का और चांस होता है। तो ये दवाइयां थोड़ा ध्यान से लेनी चाहिए। अगेन, बिना दवाई के हो सकता है। मेरे हर एक पेशेंट को पहले मैं 3 से 6 हफ्ते का चांस देता हूं कि वेट लॉस करो। अगर वजन नहीं कम कर पा रहे और नहीं हो रहा है आपका फैटी लिवर रिवर्स, फिर हम दवाई शुरू करते हैं
0: जी। तो डॉक्टर साहब, आजकल ये समस्या युवाओं में भी बढ़ रही है, उसका कारण स्ट्रेस है, पढ़ाई का बोझ है, और अगर वो कंपनीज में काम कर रहे हैं तो उसका बोझ है, तो क्या तनाव भी एक कारण है? एक बात ये बताइए, और साथ में हमें ये भी बताइए कि लिवर के, इस फैटी लिवर के कारण और कौन कौन सी बीमारियां पैदा हो जाती हैं?
1: हाँ, बहुत सही कहा आपने, फैटी लिवर स्ट्रेस गो हैंड इन हैंड। आजकल मैं देखता हूँ मेरे जो पेशेंट्स आते हैं और फैमिली मेंबर्स भी, उन्होंने 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, 14 घंटे काम कर रहे हैं, स्पेशली पढ़ाई कर रहे हैं, बैठे रहते हैं। मैं अपने लड़के के बारे में बोलूं, बैठे रहेंगे, वजन बढ़ेगा, एंड फिर उस टाइम पे कुछ सूझता नहीं है, जो हाथ में आया खा लिया, एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, जंक फूड खा लिया, डाइट इज बेसिकली नॉन एग्जिस्टेंट है अभी। तो आई थिंक स्ट्रेस ऑफ

0: वर्क, स्ट्रेस ऑफ स्टडीज, स्ट्रेस ऑफ जॉब, ट्रैवल, वो सब से भी अपने बॉडी के हार्मोन्स फ्लक्चुएट होते हैं, जिसमें वेट गेन होना बहुत रैपिडली होता है। फिर वो स्ट्रेस को कम करने के लिए हम खाना खाते हैं, जो बोलते हैं स्ट्रेस ईटिंग। हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे, प्रोटीन कम खाएंगे, यू नो, प्रोसेस्ड फूड्स खाएंगे, स्विगी ऑर्डर कर लिया, इंस्टा ऑर्डर कर लिया, पांच मिनट में घर पे आ गया, खा लिया और काम खत्म। तो ऑल दीज कैन देन लीड टू फैटी लिवर, एंड देन वंस फैटी लिवर हो गया, देन फैटी लिवर अगेन इज नॉट द प्रॉब्लम। फैटी लिवर अगर आपको है तो कह रहा है कि आपको बॉडी में और प्रॉब्लम होने की चांसेस है, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, ये सब वेट से रिलेटेड है, सब फैट से रिलेटेड है। तो लिवर तो बेचारा एक ऑर्गन है जो सब स्टोर कर रहा है, बट उसकी इफेक्ट सारे ऑर्गन्स पे हो सकती है।
1: जी जी, तो ये फैटी लिवर के बारे में अवेयरनेस बहुत कम है। तो हमारे बहुत सारे श्रोता जो विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े हैं, उन्होंने कुछ सवाल भी भेजे हैं, तो फैटी लिवर के बारे में बताया है लेकिन सवाल उन्हें नहीं सूझा, तो मैं ही सब पूछ रही हूँ अपनी तरफ से, उन श्रोताओं की ओर से भी, कि फैटी लिवर पर अगर ध्यान नहीं दिया गया, थोड़ी बहुत लापरवाही या असावधानी की वजह से, तो क्या लिवर सोरायसिस या लिवर कैंसर जैसी बीमारियां भी पनप सकती हैं क्या?
0: बिल्कुल, अगर 100 पेशेंट्स को ले, अब 100 लोगों को ले जिनको फैटी लिवर है और उनको और कोई और बीमारी नहीं है, तो इनमें से 2-3% लोगों को आगे जाके लिवर सिरोसिस होगा। ये बहुत बड़ा नंबर है, ये मैं डायबिटीज वालों को नहीं बोल रहा, मैं रेगुलर पेशेंट्स को बोल रहा हूँ। अगर आप देखें हमारी इंडियन पॉपुलेशन इज क्लोज टू 250 करोड़, उसमें अगर आप 3% लोगों को भी लिवर सिरोसिस दे दे, दैट्स अ वेरी बिग नंबर। बहुत लोगों को लिवर सिरोसिस होता है, एक बार लिवर सिरोसिस हो जाए वो परमानेंट है, तो लिवर सिरोसिस पेशेंट को फिर लिवर कैंसर होने की संभावना 20-30 गुना ज्यादा होती है। तो लिवर फैटी लिवर से सिरोसिस होता है, सिरोसिस के साथ आगे कैंसर होने के चांसेस कई ज्यादा।
1: जी जी, डॉक्टर साहब यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाएं अपने श्रोताओं को।
0: दूसरा गाना जो मुझे बहुत पसंद है वो मैं एक्सरसाइज के टाइम कभी कभी सुनता हूँ,
1: लाइक
0: थोड़ी बीट होनी चाहिए, भाग मिल्खा भाग वाला गाना,
1: क्या बात है,
0: मुझे पसंद है।
1: सुनते हैं, फरहान अख्तर पर्दे पर हैं और अच्छी एक्टिंग करते हैं और भाग रहे हैं सचमुच, तो बेहतरीन गाना चुना है, सुनते हैं यही गाना। और ये भाग मिल्खा भाग फिल्म का गाना सुनते हुए अपने श्रोताओं से ये भी कहना जरूरी है कि बस भागना जरूरी है जिंदगी में, क्योंकि अगर डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि बैठे बैठे आप बीमारियों के शिकार हो सकते हैं, तो कसरत कीजिए और भागिए।

0: और अब हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपने जो लीवर सोरायसिस के बारे में जानकारी दी, तो इसके क्या लक्षण हैं और किस तरह इसका ट्रीटमेंट हो सकता है?
1: जब लीवर सिरोसिस होता है तो अनफॉर्चुनेटली पेशेंट डॉक्टर के पास आता है, उनको तकलीफें शुरू हो जाती हैं। सबसे बड़ा सिम्टम होता है फटीग, थकान रहना, पूरे दिन थका हुआ रहता है आदमी। कभी कभी फैमिली मेंबर नोटिस करता है कि आंखें पीली हो रही है, येलो हो रही है। कभी कभी पेट फूलना शुरू हो जाता है, वजन कम होता है मगर पेट फूल रहा है, पेट में पानी जमना शुरू हो जाता है। रेयरली कभी कभी पेशेंट को वॉमिटिंग होती है, उसमें कभी कभी खून की उल्टी भी हो सकती है क्योंकि सिरोसिस के कारण खाने के पाइप में कोई नसें फट जाती हैं। तो ये सारे लक्षण जब आते हैं तो वो कह रहा है आपको कि लीवर काफी हद तक खराब हो गया है, और तभी नॉर्मली पेशेंट डॉक्टर को मिलने आता है।
0: जी, तो इसका इलाज संभव है पूरी तरह या ये एक लाइलाज बीमारी है, हमेशा दवा खानी पड़ती है?
1: नहीं, दवाई तो हमेशा खानी पड़ती है, इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है अगर हमको कोई और कारण पकड़ में आ जाए। कभी कभी सिरोसिस के साथ हेपेटाइटिस होता है जो इंडिया में कॉमन है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, उसको हम अगर ट्रीट कर दें तो खराब लीवर को भी बचा सकते हैं और जिंदगी कट सकती है। फैटी लीवर मगर ऐसी बीमारी जिसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अगर आपको सिरोसिस हो जाए तो आगे जाके धीरे धीरे बढ़ती है। हम बेसिकली उनके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे खून की उल्टी होना, पेट में पानी बनना, थकान होना, हीमोग्लोबिन कम होना, उसको ठीक कर सकते हैं, पर एक बार सिरोसिस सेट हो गया है तो वो इरिवर्सिबल बीमारी, और फिर आगे जाके हमको मोस्ट पेशेंट्स का लीवर बदलना पड़ता है, लीवर ट्रांसप्लांट बोलते हैं।
0: डॉक्टर, हम जानना चाहते हैं कि फैटी लीवर से डायबिटीज का क्या संबंध है? क्या ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं कि मतलब फैटी लीवर हो गया तो डायबिटीज होना जरूरी है?
1: हाँ, ये अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर आप इंडिया में देखा जाए तो अगर आप देखें जिनको फैटी लीवर है उनका हम अगर डायबिटीज का चेकअप करें तो काफी लोगों को प्री डायबिटीज होता है, मतलब डायबिटीज शुरुआत होने की चांसेस है। HbA1c जो बोलते हैं वो 5.7-5.8 होता है। मोस्ट प्लेसेस में आप देखें अब्रॉड, अगर आपका HbA1c 5.6-5.7 है, आपको प्री डायबिटीज है, आपको 10 या 12 साल बाद डायबिटीज शुरू होनी होनी है। इंडिया में फॉर सम रीजन, ये हमारा जेनेटिक्स है या कुछ है, कि अगर हमको फैटी लिवर है और हमारा HbA1c प्री डायबिटिक रेंज में है, 3 से 4 साल में या 5 साल में आपको डायबिटीज हो सकती है। तो अगर आपको फैटी लिवर है, ये कह रहा है कि आपको आगे जाके डायबिटीज हो सकती है। नाउ उल्टा सवाल, अगर आपको डायबिटीज है तो रिस्क ऑफ फैटी लिवर इज वेरी हाई। नॉट ओनली रिस्क ऑफ फैटी लिवर इज हाई, रिस्क ऑफ फैटी लिवर विद कॉम्प्लिकेशन, मतलब जो डैमेज फाइब्रोसिस बोलते हैं, वो काफी हाई होती है। तो अगर आप देखें आजकल के जो डायबिटीज की दवाई शुरू हुई है, जो न्यू दे रहे हैं, जो वेट लॉस ड्रग जो डायबिटीज के लिए एक्चुअली अप्रूव्ड है, वो फैटी लिवर को भी हेल्प करती है।
0: ओके,
1: सो इट वर्क्स बोथ वेज।
0: अच्छा, तो इसके लिए क्या अवेयरनेस क्या होनी चाहिए कि

0: इन बीमारियों से मरीज मतलब उसके चपेट में ना आए, उसके लिए क्या करना चाहिए
1: ना,
0: पहले?
1: अवेयरनेस यही है कि जैसे हमने कहा है खाने पे ध्यान दो। हमारा जो इंडियन डाइट है वो काफी पुअर है इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन इनटेक। कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है, प्रोटीन बहुत कम है। तो अगर हम प्रोटीन बढ़ाएं डाइट में, कार्बोहाइड्रेट कम करें, तो अपने आप थोड़ा वेट लॉस होगा, मसल मास बढ़ेगा, रिस्क ऑफ डायबिटीज कम हो जाएगा। एक्सरसाइज करो, जो मैंने गाना थोड़ी देर पहले बजाया था भाग मिल्खा भाग, उसका यही है कि भागो, एक्सरसाइज करो। बहुत से पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम सबको पूछता हूँ, मेरा पहला सवाल यही होता है कि एक्सरसाइज कर रहे हो? और सबका सवाल, आधे लोग बोलते हैं हम वॉक करते हैं। तो वॉक इज नॉट गुड। अगर आप जो भी डेटा देखें तो 150 से 200 मिनट की एक्सरसाइज हफ्ते की जरूरी है अगर आपको अपनी बॉडी को फिट रखना है, जिसमें इट इंक्लूड्स कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज, जिसमें आप वॉकिंग करते हैं, और आपकी सांस फूलनी चाहिए, पसीना आना चाहिए। आप खाली वॉक करो, काम पे जाओ, स्टेशन तक जाओ, वापस आ जाओ, दैट इज नॉट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में सांस फूलनी चाहिए, हार्ट रेट बढ़ना चाहिए एज अप्रोप्रिएट, और
0: जी
1: थोड़ी मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। हफ्ते में 2 दिन थोड़े वेट्स करने चाहिए जिससे आपका मसल बढ़े। अगर आपका मसल का साइज बढ़ेगा, आपका वेट लॉस जल्दी होगा, डायबिटीज नहीं होगी या कंट्रोल में आएगी, बॉडी का फैट निकलेगा क्योंकि मसल ज्यादा बर्न करेगा एनर्जी को। तो अगेन चेकअप कराते रहिए, बेसिक ब्लड टेस्टिंग का, एक्सरसाइज कर कीजिए 150 मिनट्स मिनिमम अ वीक, खाने में ध्यान दीजिए, प्रोटीन बढ़ाए अपने खाने में, और रेगुलर अपना हेल्थ चेकअप कराते रहिए।
0: जी, कई बार लोग ये भी भ्रांति है, मतलब गलतफहमी है लोगों में कि प्रोटीन खाने से पाचन की समस्या बढ़ती है, एक उम्र के बाद प्रोटीन लोगों को कम कर देना चाहिए, तो दाल कम कर देते हैं लोग, चने खाना, तो इसके बारे में थोड़ा
1: हाँ,
0: बताइए।
1: ये अच्छा सवाल है बहुत, क्योंकि जब भी मैं पेशेंट को बोलता हूँ कि आपको फैटी लिवर है, तो उनके दो जवाब होते हैं सबके, कि हम तो अल्कोहल पीते नहीं है, क्योंकि सबके मन में भ्रम है कि अल्कोहल से फैटी लिवर होता है। और दूसरा होता है कि हम तो शाकाहारी है, हम तो कांदा लहसुन भी नहीं खाते। मेरा मानना है कि इन इंडिया बींग अ वेजिटेरियन इज अ रिस्क फैक्टर फॉर लिवर डिजीज, बिकॉज वेजिटेरियंस में हम ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं। अगर हमारी डाइट देखे 70-80% कार्ब्स है, 10% फैट होगा, 10-15% प्रोटीन है। और ये वेस्टर्नाइज डाइट देखो तो 30% तक प्रोटीन होता है डाइट में। तो प्रोटीन डाइजेस्ट करना इजी है, इनफैक्ट हमारे जो दालें हैं वो ज्यादा इजी है डाइजेस्ट करना देन अदर फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन, जैसे अपने एग्स हो गए, मीट्स हो गए। हम शाकाहारी तो हम नहीं खा सकते, तो ये भ्रम है कि आगे जाके नहीं खाते हम। इनफैक्ट बढ़ाना चाहिए थोड़ा, उससे
0: बिल्कुल
1: आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी, आपकी मसल स्ट्रांग रहेगी, बोन स्ट्रांग रहेंगे, फ्रैक्चर होने के चांस कम हो जाते हैं।
0: जी, तो अभी जो भी श्रोता सुन रहे हैं तो अपने डायटिशियन से संपर्क करें या ये खोजें कि कहाँ कहाँ प्रोटीन ज्यादा मात्रा में है, और आज से प्रोटीन की डाइट शुरू करें। इसमें हम भी शामिल हैं, हम अपने को भी शामिल करते हैं इसमें। और अब एक गाना सुने डॉक्टर साहब।
1: बिल्कुल, तो एक और गाना जो मुझे बहुत पसंद है, स्कूल डेज में हमने सुना था जब मेरे 10th खत्म हुई थी, जो जीता वो सिकंदर का गाना, यहाँ के हम सिकंदर।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया गाना चुना है, और सभी हमारी बातचीत से मेल खा रहे हैं। अगर अपनी सेहत अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो जाहिर सी बात है हम अपने क्षेत्र में सिकंदर बने रहेंगे। सुनते हैं यही गाना।

0: डॉक्टर साहब, ये जो जीता वही सिकंदर फिल्म का गाना था, और इस गाने के साथ खुद को सिकंदर बनाए रखने के लिए अपनी सेहत को ठीक रखना बहुत जरूरी है। अपने श्रोताओं को बताते हैं, विविध भारती से यह कार्यक्रम सेहतनामा, और आज हम बात कर रहे हैं फैटी लिवर और पेट से संबंधित अन्य बीमारियों के बारे में। हमारे साथ विविध भारती के स्टूडियो में हैं मुंबई के मशहूर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता। डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं की ओर से कुछ सवाल आए हैं। ये कार्यक्रम विविध भारती के फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध है, तो वहां से कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि इरिटेबल बॉल सिंड्रोम क्या होता है। मतलब कई श्रोताओं ने लिखा है, किसी ने लिखा है कि हमारी माँ को है, किसी ने लिखा है मुझे, किसी ने लिखा मेरी बहन को है। तो इरिटेबल बॉल सिंड्रोम क्या है, IBS, और कैसा होना चाहिए खान पान इसके लिए?
1: तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम प्रोबेबली फैटी लीवर के बाद सबसे कॉमन, अगर पेट की बीमारी देखें तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, जिसमें पेशेंट को लगता है कि पेट फूल जाता है, कभी कभी पेट दर्द करता है, कभी लूज मोशन हो जाते हैं, कभी कब्जियत हो जाती है, कभी आगे पीछे होते रहता है। और इन पेशेंट्स को हम सारी जान

0: हड़ताल कर ले, हमको कुछ नहीं मिलता, सारा कुछ नॉर्मल मिलता है. तो लॉट ऑफ टाइम ये स्ट्रेस रिलेटेड रहता है या सिचुएशन रिलेटेड रहता है.
1: जी
0: जैसे
1: जी
0: बच्चे हो, उनको अगर एग्जाम देने जा रहा हो तो बोलते पेट दर्द कर रहा है,
1: जी
0: या
1: जी
0: वॉमिटिंग जैसी फीलिंग हो रही है, उल्टी जैसा लग रहा है, या लूज मोशन शुरू हो जाते हैं स्ट्रेस में, तो इसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है. इसमें इधर आपको डायरिया होता है या कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट फूलता है, और अगर पेट साफ हो जाए तो अच्छा लगता है. तो इसकी ट्रीटमेंट बेसिकली होती है, यू नीड टू फाइंड आउट द स्ट्रेस, ट्रीट द स्ट्रेसर, और डाइट के थोड़ा ध्यान दो. अगर अगर कॉन्स्टिपेशन है तो डाइट में फाइबर ज्यादा लो, फल फ्रूट ज्यादा लो. अगर लूज मोशन हो रहे हैं तो कच्चा खाना मत खाओ, पका हुआ खाना खाओ, थोड़ा ब्रेड्स खाओ, राइस खाओ, जिससे पेट थोड़ा बन जाए.
1: ये है. और बाकी नॉर्मल किस तरह की तकलीफ होती है, वोमिटिंग और जो एसिडिटी की समस्या भी होती है इससे?
0: इरिटेबल बाउल सिंड्रोम अलग बीमारी है, एसिडिटी अलग बीमारी है. एसिडिटी होता है जब हमको खाने के पाइप में या पेट में या छाती में जलन होनी थी है, वो खाने के बाद हो सकती है, खाली पेट हो सकती है, सोने के बाद होती है, खाना हम लेट खाएं और लेट जाएं और छाती में जलन होती, तो उसको एसिडिटी या गर्ड बोलते हैं. एक बात आपने सही की कि ये आईबीएस गर्ड पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो सबकी एक हमको एसिडिटी हो गई है. तो एसिडिटी इज अ वेरी स्पेसिफिक टर्म. एसिडिटी मतलब जलना, पेट के ऊपर के हिस्से में जलना, छाती में जलना, कभी कभी उसे खांसी भी हो सकती है, कभी कभी खाना अटकता है गले में, ऐसे लग रहा है, तो उसको एसिडिटी बोलते हैं. आईबीएस होता है पेट फूलना, छाती के नीचे का प्रॉब्लम है वो, पेट फूलना, लूज मोशन होना, कॉन्स्टिपेशन होना. तो ये जानना बहुत जरूरी है. इसके लिए जब पेशेंट हमारे पास आते हैं हमको काफी सवाल पूछने पड़ते हैं कि एक्चुअली बीमारी क्या है, क्योंकि इंडिया में सॉर्ट ऑफ हो गया कि सब बीमारी इज एसिडिटी. हर एक बीमारी को अगर लूज मोशन को एसिडिटी बोल देते हैं, कॉन्स्टिपेशन को एसिडिटी बोल देते हैं, पर एसिडिटी इज अ सेपरेट प्रॉब्लम.
1: जी.

0: डॉक्टर साहब, गाने के बाद हम जानना चाहते हैं कि दरअसल डॉक्टर साहब, कुछ मरीज को ये समस्या भी होती है कि उन्हें जलन नहीं महसूस होती है, एसिडिटी फील नहीं होता है, लेकिन फिर उनको ऐसे लगता है ऊपर ऊपर कुछ आ रहा है और वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, कई कई वोमिटिंग, तो ये क्या?
1: हाँ, तो ये भी इट्स अ पार्ट ऑफ एसिडिटी ओनली। इसमें बेसिकली खाना ऊपर चढ़

0: के आ रहा है,
1: जी
0: तो जो हमारे खाने का पाइप होती है, इसोफेगस जिसको बोलते हैं, और पेट होता है, उसके बीच में एक वाल्व होता है। किसी किसी का ये वाल्व लूज हो जाता है विद टाइम, उसके कई कारण होते हैं। उसके बाद अगर हम हैवी खाना खा लें तो वो खाना ऊपर चढ़ चढ़ के आएगा, वो शायद ना जले मगर ऊपर चढ़ चढ़ के आएगा, मुंह में आएगा, कभी कभी मुंह में खट्टा पानी आ जाता है, कभी लेट खाना खाओ लेट जाओ तो रात को उठना पड़ता है क्योंकि खट्टा पानी ऊपर आ गया है और खांसी शुरू हो गई है। तो इसको रिगर्जिटेशन बोलते हैं, मतलब जो पेट का खाना है, जो पेट के नीचे जाना चाहिए, वो अभी वापस खाने के पाइप में आ गया है।
1: जी, तो इसका किस तरह से ट्रीटमेंट किया जा सकता है?
0: तो इसका बेसिक ट्रीटमेंट तो हम वही करते हैं कि खाना टाइम पे खाओ, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लो, सबसे इम्पोर्टेंट है खाने में और सोने में 3 घंटे का गैप रखिए, खाने के बाद टहलिए थोड़ा 10-15 मिनट तक खाना नीचे चले जाए। दूसरी चीज कहूंगा, जो चीज आपको लग रहा है आपको तकलीफ दे रही हो, तो किसी किसी को स्पाइसी फूड तकलीफ देता है, तला हुआ तकलीफ देता है, या ज्यादा पानी नहीं पीना खाने के साथ, जैसे बहुत लोग आजकल कोका कोला पीते हैं या एरिएटेड ड्रिंक्स पीते हैं खाने के साथ, तो वो फिर गैस ऊपर चढ़ के आती है और खाना भी उसके साथ चढ़ के आता है। तो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, लेट नाइट मील्स मत खाओ, जो चीज आपको तकलीफ देती है वो मत लो, दैट शुड हेल्प योर सिम्टम्स। अगर इसके बावजूद नहीं ठीक हुआ फिर हम दवाई शुरू करते हैं।
1: जी जी, तो ये जो प्रॉब्लम्स है ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, मैंने तो हर किसी को सुना है कि एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो इसकी जांच की कोई व्यवस्था है कि कैसे पता चले कि एसिडिटी है, क्या वजह, कारण क्या है, असली कारण क्या है?
0: हाँ, तो ये भी बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि मोस्ट टाइम्स हम देखते हैं पेशेंट फार्मेसी के पास जाते हैं, केमिस्ट के पास जाते हैं, एक दवाई ले ली, वो लेते रहते हैं, बट ये दवाई भी लंबे देर तक लेना नहीं चाहिए। दूसरा, थोड़े सवाल हम पूछते हैं पेशेंट्स को, जैसे अगर खाना अटके, जब खाओ खाना अटके तो वो सही नहीं है, मतलब आपको एसिडिटी इतनी होगी कि खाने की पाइप छोटी होगी, तब हमको एंडोस्कोपी से देखना पड़ता है।
1: जी जी,
0: खाना अटकना लगे, वॉमिटिंग होनी शुरू हो जाए, वजन कम हो, या आफ्टर द एज ऑफ 40-50 थोड़ा एज हो गई हो और फिर सडनली न्यू सिम्टम शुरू हो जाए, या खांसी हो रही हो रात भर, तब उस टाइम पे दीज आर व्हाट वी कॉल अलार्म सिम्टम्स। अलार्म सिम्टम्स मतलब ये जब पेशेंट हमको बोलना शुरू करता है तब हमारे सॉर्ट ऑफ एंटीना ऊपर चढ़ जाते हैं कि ये भी देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है, तब हम एक एंडोस्कोपी करके देखते हैं खाने के पाइप में और पेट में कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है।
1: और डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए कुछ मरीज को हमने ये भी सुना है कहते हुए कि एसिडिटी की प्रॉब्लम है, मैंने सारे टेस्ट करवा लिए और सारे ट्रीटमेंट कर लिए, सारी दवाएं खा ली लेकिन कुछ नहीं हुआ, और मैं तो अभी योगा एक्सरसाइज भी कर रहा हूं, मतलब ये अमूमन लोग कहते हैं, तो फिर क्या होता है? और कई लोगों ने तो ये भी कुछ एक वायरस, एच पायलोरी नाम का वायरस होता, उसकी भी जांच नॉर्मल है, फिर क्या?
0: हाँ, तो एक्चुअली एच पायलोरी एक कॉमन इन्फेक्शन जो पेट के लाइनिंग में रहता है, पर एक्चुअली जिसको एच पायलोरी होता है उसको छाती की एसिडिटी कम होती है, क्योंकि ये जो ऐसा बैक्टीरिया है जो एसिड बनने नहीं देता है। इनफैक्ट अगर हम एंडोस्कोपी एसिडिटी के लिए कर रहे हैं, गर्ड के लिए जिसको बोलते हैं रिफ्लक्स डिजीज, तब हम एच पायलोरी को ढूंढने की कोशिश नहीं करते। अगर पेट में जलन हो रही है, मतलब छाती में नहीं बोल रहा, खाली पेट में दुख रहा है या पेट में जलन हो रही है, तब हम एंडोस्कोपी करके या कोई स्टूल टेस्ट करके या ब्रेड टेस्ट करके एच पायलोरी को ढूंढते हैं। अगर एच पायलोरी मिले उसको ट्रीट करें तो काफी लोगों के पेट के सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं। बट जस्ट बिकॉज हमको एच पायलोरी मिला डज नॉट मीन के दैट इज द फाइनल प्रॉब्लम। बहुत बार पेशेंट को अगेन सिम्टम्स होते हैं, पेट में जलना, अच्छा नहीं लगना, दर्द करना, पर हमने एंडोस्कोपी कर ली, ब्लड टेस्ट कर लिए, सारा कुछ नॉर्मल है, तो ये बीमारी को हम डिस्पेप्सिया बोलते हैं, जैसे IBS बोला मैंने पहले,
1: जी जी जी।
0: सब टेस्ट कर लिए कुछ नहीं मिला, ये ऊपर के पेट की बीमारी डिस्पेप्सिया, मतलब आपको दर्द हो रहा है, सिम्टम्स हो रहे हैं मगर सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, तो उसको हम सिम्टोमेटिकली मैनेज करते हैं, जो तकलीफ है उसकी दवाई दे दो।
1: जी, तो इसका कुछ मतलब इसका फिर इलाज संभव होता है, इसकी दवा दी?
0: ऑफ कोर्स इसकी दवा होती है, तो मोस्ट टाइम्स हम एसिडिटी की दवाइयों से शुरू करते हैं। अगर एसिडिटी की दवाई ना हो तो हम सॉर्ट ऑफ पेशेंट को पूछ के ढूंढने की कोशिश करते हैं, कभी कभी कोई फूड ट्रिगर होता है, कभी कभी फूड एलर्जीज होती है, जैसे एक तरह की गेहूं की एलर्जी इंडिया में अभी ज्यादा आ रही है, सीलैक डिजीज बोलते हैं, जो ग्लूटेन फ्री डाइट लेते हैं वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। कभी कभी ये स्ट्रेस रिलेटेड भी रहती है, तो वन ऑफ द मेडिसिन वी गिव पेशेंट इज स्ट्रेस कम करने की, एंग्जाइटी कम करने की मेडिसिन देते हो, वो लॉन्ग टर्म ले सकते हो, उससे माइंड काम होता है तो पेट काम होता है, माइंड एंड स्टमक का कनेक्टेड, उसको गट ब्रेन एक्सेस बोलते हैं। अगर पेट ठीक नहीं होगा तो मन ठीक नहीं होता, इसी तरह अगर मन ठीक नहीं हुआ तो पेट ठीक नहीं होगा,
1: दोनों एक दूसरे के

0: पूरक है
1: Correct.
0: और वो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. तो बहुत सारे मन को ठीक करने के लिए कई बार हम संगीत का दामन थाम लेते हैं. तो एक गाना सुनते हैं और यहाँ पर अपने सारे श्रोताओं के मन को ठीक किया जाए.
1: तो एक गाना मुझे बहुत पसंद है, अगेन शाहरुख खान का ही गाना है, छैया छैया.
0: चल छैया छैया सुनते हैं यही गाना.

0: डॉक्टर साहब, ये बात जो चल रही थी एसिडिटी की, ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। मैंने देखा है कि महानगरों में ये समस्या ज्यादा होती है, छोटे शहरों में जब जाते हैं तो लोगों को हम कम सुनते हैं ऐसा कहते हुए। तो एक तो ये बात बताइए कि जो समस्या है एसिडिटी की, सारे टेस्ट नॉर्मल आए हैं, तो क्या इन बीमारियों के लिए जो दवाएं खाई जाती हैं एसिडिटी की, लोग गोली खा लिए, कुछ लोग तो ये भी ट्राई करते हैं कि 2 दिन के गैप के बाद खा लो ठीक रहेगा, तो ये कहाँ तक तर्कसंगत है, ठीक है या नहीं करना चाहिए?
1: हाँ, तो बेसिकली कभी भी हम ये दवाई दें ना, तो हमेशा एंड पॉइंट होना चाहिए कि कब ये दवाई बंद करें। तो मोस्ट टाइम्स हम पेशेंट्स को ये दवाई बंद करने की कोशिश करते हैं। एक प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये समस्या है कि हमारे जो फार्मास्यूटिकल जो केमिस्ट है वो रेगुलेटेड नहीं है। आप जाके दवाई मांगो, आपको दे देंगे दवाई। तो ये बाहर के मुल्कों में संभव नहीं है, बिकॉज ये दवाइयों के साइड इफेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, एसिडिटी की दवाई अगर ज्यादा देर तक लेते रहो तो बोन लॉस होता है, किसी किसी को विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। पेट में थोड़ा एसिड तो चाहिए डाइजेशन के लिए, तो कभी कभी पेट के इन्फेक्शन होने के रिस्क भी ज्यादा रहते हैं। विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स जो पेट से अब्सॉर्ब होते हैं पेट के आगे से, वो नहीं होंगे, जैसे B12 डेफिशिएंसी हो जाए। कभी कभी आयरन भी कम हो जाता है दवाई लंबे देर तक लेने के लिए। तो रेयरली ये किडनी को भी इफेक्ट करता है। तो ये दवाइयां जरूरी है हमारे काफी ऐसे पेशेंट जो सालों साल लेते हैं, मगर वी हैव टू फाइंड अ वैलिड रीजन कि इनको क्यों चाहिए ये दवाई। जितना हो सके हमको दवाई बंद करनी चाहिए। काफी लोग ऐसे भी करते हैं, जैसे आपने कहा दवाई दूसरे दिन तीसरे दिन ले लेते हैं, उसको ऑन डिमांड मेडिसिन बोलते हैं, विच इज प्रॉब्ली अ गुड वे टू डू, कि अगर आपको हमेशा जरूरत नहीं तो क्यों लोगे। मैं कई पेशेंट्स को कहता हूं कि एक बार आपका कोर्स खत्म हो जाए, सपोज आपने रात को खाना खाने जाना है, शादी पे जाना है, खाना लेट होने वाला, आपको पता है आपको रात को तकलीफ होगी, तो शादी के जाने के पहले एक गोली लेते हो जाओ।
0: जी जी।
1: सो दैट इज कॉल्ड ऑन डिमांड मेडिसिन, विच इज प्रॉब्ली बेटर देन टेकिंग अ मेडिसिन रोज।
0: जी, लेकिन वो आदत न डाल ले, ये गलत है। और ये एक जो समस्या उल्टी के बारे में, उल्टियां होती हैं कुछ मरीज को, फिर रुकती नहीं है उल्टियां, तो क्या वो भी इसी वजह से होती हैं? ये किस तरह की बीमारी का द्योतक है?
1: अगर कंटिन्यूसली पेशेंट्स को उल्टी होता रहे तो दैट इज अ इंडिकेशन कि हमको एक बार एंडोस्कोपी करके देखना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। इसके कई कारण हो सकते हैं, अगेन माइंड से लेके पेट से लेके। आजकल हम ज्यादा देखते हैं डायबिटीज पेशेंट्स को, जैसे डायबिटीज पेशेंट्स को अगर डायबिटीज बहुत देर तक हो जाए तो जो मेन नसें होती हैं जो पेट को स्टिमुलेट करती है, जब हम खाना खाते हैं तो पेट हिलना शुरू करता है, तो डायबिटीज पेशेंट को पेट हिलता नहीं है इतना, तो उसको गैस्ट्रोपरीसिस बोलते हैं कि पेट जो खाना खाया है वो पेट में ही रहता है और थोड़ी देर के बाद वॉमिट हो जाती है। अगेन स्ट्रेस से भी हो सकती है, एंग्जाइटी से वॉमिटिंग, किसी किसी को पेट में अल्सर हो सकता है जिसके कारण पेट की जो एंड पॉइंट है जहां से खाना इंटेस्टाइन में जाता है वो छोटा हो जाता है, तो खाना उधर अटक के वॉमिट हो जाता है। एंड रेयरली अगर वॉमिटिंग जारी रहे तो वी हैव टू थिंक अबाउट अदर प्रॉब्लम लाइक कैंसर ऑफ द इंटेस्टाइन ऑल्सो।
0: तो मतलब किसी भी बीमारी को, मतलब पेट से संबंधित ये जो एसिडिटी की समस्या है, छोटी समस्या लगती है लेकिन इग्नोर न करें, डॉक्टर से संपर्क करें, डॉक्टर क्या कहते हैं वैसा करें।
2: आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध गैस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग। इस बातचीत का दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी समय। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: की शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू हुई। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

FM बैंड 102.1 MHz पर आकाशवाणी जोधपुर के FM सन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने वाले हैं। युववाणी ये कार्यक्रम हम हमारे प्राथमिक केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका मन पसंदा कार्यक्रम युववाणी और आज का वक्त है आपका मन पसंदा सेगमेंट यानी कि फरमाइश शो का। इस शो में बजेंगे वही गाने जो हम आपके लिए फरमाइश के जरिए भेजे गए हैं। तो तैयार हो जाइए यादों के साथ, अपने फेवरेट गानों के साथ, मेरे साथ माधवी और
1: मैं अदिति मौर्या। तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों, क्योंकि अगले एक घंटे तक रहेगा सुरों, संगीतों और आपकी फरमाइशों का खूबसूरत संगम। तो चलिए सुनते हैं ये पहला म्यूजिकल ट्रैक।

0: माधवी, ये जो आज का हमारा कार्यक्रम है, आज का जो प्रोग्राम है, वो काफी स्पेशल है युवानी, क्योंकि आज हम फरमाइश, हमारे जो लिसनर्स की फरमाइश है वो पूरी करते हैं। तो कितना अच्छा लगता है ना, जैसे हम किसी की लव्ड वंस जो हमारे लिसनर्स है उनके लिए डेडिकेटेड प्रोग्राम है, तो वो लिसनर्स जो है अपना फेवरेट सॉन्ग किसी को डेडिकेट कर सकते हैं।
1: कितना अच्छा लगता है ना अदिति, जब आपकी कोई मनपसंद फरमाइश को पूरी करे, वो भी ऑन एयर जाके आपका पसंदीदा गाना बजाए। हाँ। तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने हमारी कोई एक प्यारी सी विश थी जो बस पूरी कर दी है।
0: हाँ।
1: तो अगर आप ही श्रोताओं अपने लव वंस को या अपने दोस्तों को या परिवार में किसी को कोई गाना फरमाइश करना चाहते हैं, तो आप भेज सकते हैं मेल इस मेल एड्रेस पर,
0: जो है yuvapasandjodhpur@gmail.com पर,
1: और आप व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर के नंबर है 9413329359। मैं नंबर वापस रिपीट करती हूँ, 9413329359।
0: तो जल्दी से अपनी फरमाइश भेज दीजिए, क्या पता आपके लव मंथ्स आपके परफेक्ट सॉन्ग का इंतजार कर रहे हों।

0: दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम जो है युवा पसंद का, और इसमें हम पढ़ते हैं आपकी फरमाइशें। तो देखते हैं सबसे पहले जो हमारे पास फरमाइश आई है वो आई है भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा की ओर से।
1: और आई है छत्तीसगढ़ से देवशंकर, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा टामुरिया की ओर से।
0: तो चलिए इनकी पसंद का ये पहला गीत सुनते हैं।

0: सब लोग सुनते जरूर हैं, पर हर किसी को समझने वाला कोई नहीं मिलता।
1: माधवी, पर जो हमारे आज के लिसनर्स हैं ना, वो सही जगह पर आए हैं, क्योंकि हम उन्हें जरूर समझते हैं और उनकी प्लेलिस्ट जो है वो यहाँ प्ले करते हैं। तो अगर आपके पास भी कोई फरमाइश है तो आप हमें भेज सकते हैं। आपको पता है हमारी मेल आईडी है yuvapasandjodhpur@gmail.com पर, और फरमाइश की अगली कड़ी में देखते हैं अगली फरमाइश किसकी ओर से आई है। वो आई है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित अहूजा की ओर से।
0: चंद्रनगर सहारनपुर से आई है कौशल्या जोशी, सुरेश जोशी और प्रभा जोशी की ओर से।

दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से कार्यक्रम युवाणी में। और जो अगली फरमाइश आ रही है हमारी, वो है मूवी हीरोपंती से एक गाना। और उसकी फरमाइश आई है छोटी बलिया मुंबई करजत से, अहमद भाई फूल वाले दुखना सदफ जूही।

0: इकबाल, इकबाल अहमद फूल वाले, इमरान अहमद फूल वाले, कापस हेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से आमना नसरीन बागवान, आसमा परी, राबिया, आशु अहमद फूल वाले और समस्त फूल वाले परिवार की ओर से।
1: और हमारी अगली फरमाइश है सबलपुर ककी से फागुराम ज्योति ओसवनी यादव की ओर से। और दोस्तों, अगर आप भी अपना फेवरेट गाना हमारे फरमाइशों में सुनना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पर अपनी फरमाइश भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9413329359। मैं नंबर रिपीट करती हूँ 9413329359 पर।

0: कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
1: आगे सैलरी? नए झुमके?
2: ना, पहले बचत।
1: पहले झुमके?
2: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
1: लेकिन झुमकों का क्या?
2: जाती हो कि लगाओ इंजेक्शन।
3: आरबीआई कहता है,
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार सुबह 11 बजे। आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
5: शाम की हवाओं में एक अजीब सी बात होती है, ये आवाज कम और एहसास ज्यादा लाती है।
6: दोस्तों, इसी एहसास और यादों को ताजा करने आ रहा है ये अगला गीत, जो है मूवी तुम मिले से, और इसकी फरमाइश करता है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा।
5: छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश पाटिल।
6: तो चलिए इनकी फरमाइश का ये गीत सुनते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: और अब फरमाइश का सिलसिला जारी रखते हुए देखते हैं हमारी अगली फरमाइश आई है सुरदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह और सुरभि शाह की ओर से।
1: और मुकबारमेर से प्रहलाद सारन और जोधपुर से जमाल, इनकी फरमाइश आई है ये इस गाने के लिए।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं युवाणी और आज हम बात करने वाले हैं एक छोटे से शब्द पर जो हमारी जिंदगी पर बहुत बड़ा असर डालता है और वो शब्द है इंटेंट यानी नीयत।
1: बिल्कुल माधवी, हम जो भी काम करते हैं उसके पीछे एक वजह होती है, कभी पढ़ाई करने की, कभी किसी की मदद करने की और कभी अपने सपने पूरे करने की। लेकिन सवाल ये है कि हमारी नीयत क्या है।
0: सही कहा, कई बार रिजल्ट हमारे कंट्रोल में नहीं होता लेकिन हमारी नीयत और कोशिश हमेशा हमारे हाथ में होती है। जब इंटेंट साफ होता है तो काम करने में एक अलग ही एनर्जी नजर आती है।
1: और दोस्तों, इंटेंट सिर्फ बड़े फासलों में ही नहीं, छोटी छोटी बातों में भी दिखाई देता है। जैसे किसी दोस्त की बात ध्यान से सुनना, घर में मदद करना या किसी को एक मुस्कान देना दे देना।
0: बिल्कुल, कभी कभी एक अच्छी नीयत से किया गया छोटा सा काम भी किसी का पूरा दिन बेहतर बना सकता है।
1: तो दोस्तों, आज का सवाल आपके लिए यही है कि आप जिस काम में आज अपना समय दे रहे हैं उसके पीछे आपका इंटेंट क्या है।
0: इसी सोच के साथ बढ़ते हैं एक अगले गीत की तरफ, लेकिन
1: उससे पहले आपको बता दें कि आज का जो फरमाइशी कार्यक्रम है हमारा, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है और अपनी फरमाइश भेजनी है तो आप हमें भेज सकते हैं हमारी मेल आईडी पर जो है युवा पसंद जोधपुर @gmail.com पर और हमें

0: दोस्तों, इतने बेहतरीन गानों की फरमाइश आती है ना, तो फरमाइश करने वालों के साथ साथ सभी श्रोताओं का भी दिन खास बन जाता है। तो आइए अब सुनते हैं अगली फरमाइश का ये गाना, जो आया है फरमाइशकर्ता की ओर से, गांव फ्रासी हिसार से, राजकुमार ड्यूडी, प्रमोद कुमार ड्यूडी, पुष्पेंद्र कुमार ड्यूडी।
1: बिहार डुमराव से असम टुक टुक लड्डू वली अंसारी और आमना प्रवीण की ओर से।
0: तो चलिए इनकी पसंदीदा गीत सुनते हैं।

0: फोन की बैटरी लो हो तो चार्जर ढूंढते हैं, पर जब दिल लो हो तो खुद को ही इग्नोर कर देते हैं।
1: पर जो लिसनर्स आज हमारे साथ जुड़े हैं ना, उनकी बैटरी अब हाई होने वाली है, क्योंकि जो अगला गाना आया ना वो थोड़ा एनर्जेटिक है, और उसकी जो फरमाइश आई है वो आई है हनुमानगढ़ टाउन रजाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान और इरफान खान की ओर से,
0: और आई है गाजियाबाद से मनोहर लाल गांधी, और डोडी छत्तीसगढ़ से मास्टर कबीर डोम और राधिका पूजा और डोमी,
1: रघुनाथ बुरा जिला श्रीनगर श्री गंगानगर से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी की ओर से ये गीत।

0: और इसी के साथ आज हमारा फरमाइश का शो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको आपकी पसंद के गाने और हमारी बातें पसंद आई होगी। अपनी फरमाइश हमें ऐसे ही व्हाट्सएप पर भेजते रहिए, क्योंकि आज मैं थी आपके साथ माधवी और मेरे साथी
1: दोस्तों मैं हूँ अदिति मौर्या। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और आकाशवाणी के साथ जुड़े रहिएगा। आज के प्रोग्राम की प्रस्तुति थी राजेश लामरोड़ द्वारा और संयोजन दामनी सोलंकी का। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण अग्निकांड में 14 छात्रों की मौत हो गई। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे कोचिंग सेंटर में आग लग गई, जिससे छात्रों में दहशत फैल गई। कुछ लोग घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मीडिया से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि इमारत में स्थित एनिमेशन सेंटर में मौजूद 16 से 18 वर्ष की आयु के 14 छात्रों की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि दमकल कर्मी इमारत के कोनों, शौचालयों और अन्य क्षेत्रों में छात्रों की तलाश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुई भीषण अग्निकांड पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव अभियान जारी है और अधिकारी हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रूपये और घायलों को 50-50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज उलान बतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सतेग पटनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी, मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई है। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1 लाख खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अग्निवीरों के लिए आवश्यकतानुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97,706 करोड़ रुपए से अधिक की अनुपूरक मांगे पेश की। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने नवनिर्वाचित सदस्यों सुनीत्रा पवार और अक्षय कर्डिले को पद की शपथ दिलाई। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने राज्य के कई हिस्सों में जल संकट का मुद्दा उठाया। तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित

0: मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। एआईएडीएमके पीएमके और सीपीएम सहित विपक्षी दलों ने आशंका व्यक्त की है कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि वो तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में विख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्म भूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत में कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
1: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
0: ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक से इतर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गदीर निजामी पुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया के राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने भारत इथियोपिया रणनीतिक भागीदारी बढ़ाने और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले आज खेले गए मुकाबले में मिस ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम एफएम सन सिटी से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए हाजिर है कार्यक्रम गुड इवनिंग जोधपुर।

नमस्कार खम्मा घनी और आदा। एक बेहद हसीन शाम शहरे आफताब की, और इस हसीन शाम से हम आपको जोड़ रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर की इन सुरीली तरंगों के मार्फत FM सन सिटी पर। नाचीज को नेमीचंद कहते हैं और घड़ी की सुइयों ने शाम के 6:06 बजाए हैं। जून की इस लंबी और तपती दोपहर के बाद शहर आफ्ताब जोधपुर का ये जो आफ्ताब है यानी सूरज है, वो मेहरानगढ़ की पहाड़ियों के पीछे छुपने की तैयारी कर रहा है और आसमान में एक अजीब सी खूबसूरत सी सुनहरी सी लाली है और नीले शहर के घरों पर घिरती ये सुनहरी धूप जैसे कोई खूबसूरत गजल गुनगुना रही है। सोमवार के दिन की ये सारी थकान और भागदौड़ के पीछे छोड़कर हम बढ़ते हैं आगे सुरीले तरंगों के साथ, और पहली पेशकश हम लेकर आए हैं आपके लिए फिल्म आयशा से इस नगमे के रूप में। और बस इस गीत को सुनते हुए याद रखिएगा कि आज की शाम कोई उलझन नहीं होगी, बस सुकून होगा। अगर आप अपने किचन के आसपास हैं तो चाय की प्याली हाथ में थामिए और इस रूमानी नगमे में खो जाइए।

बिल्कुल, और शहर आफ्ताब की ये हवाएं वही गीत गुनगुना रही है जो लाजवाब है। और ऐसे सुरीले जो गीत हैं वो सुनते ही दिन भर की जो सारी थकान है वो किसी ठंडे हवा के झोंके की तरह उड़ा कर ले जाती है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग जोधपुर। और जब संडे के बाद मंडे आता है, इतवार के बाद सोमवार आता है, तो सारा दिन काम के बोझ से भरा रहता है ये हम समझते हैं। लेकिन जैसे ही शाम ढलती है तो लगता है जैसे जिंदगी ने एक गहरी और सुकून भरी सांस ली है। शहर आफ्ताब की इन तंग और पुरानी गलियों से जब शाम की हवा गुजरती है तो अपने साथ कितनी ही पुरानी यादें, कितनी ही अनकही कहानियां लेकर आती हैं। ऐसा लगता है जैसे ये हवाएं किसी प्रेम का इजहार कर रही हों। इसी मीठे एहसास को बयां करता हमारा ये अगला

बिल्कुल, हवाएं हक में वही है आते आते जो तेरा नाम ले, देती है जो सदाएं हवाएं हवाएं। आप हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग जोधपुर के साथ, नाचीज नेमी है आपकी खातिरदारी में। और कार्यक्रम का ये हसीन सफर

ये कारवां अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है हौले हौले, ठीक वैसे ही जैसे मोहब्बत का दस्तूर है, उतना ही अजीब उतना ही खूबसूरत है। इसमें इंसान खुद को खोकर ही किसी और को मुकम्मल तौर पर पाता है, और जब खास तौर पर शाम ढलती है और तसव्वुर में किसी अजीज का चेहरा उभरता है, तो हम उन यादों के समंदर में इस कदर डूब जाते हैं कि अपनी ही सुध-बुध खो बैठते हैं। ऐसे में उस एक शख्स की पुकार, उनकी आवाज का एक कतरा भी जैसे हमारी रूह को खिलखिला देता है, आबाद कर देता है। प्रेम की ये जो मीठी सी गुमशुदगी है और उसकी जो पुकार का जिक्र है, वही है हमारे अगले नगमे का मौजू। आइए आपकी नजर करते हैं दुश्मन फिल्म से ये गीत।

बिल्कुल साहिबान, और शाम का जो वक्त है वो कितना जादुई होता है ना? और ये वो वक्त होता है जब दहलीज है ये उस दौर की, उस पल की, उस क्षण की, जहाँ दिन और रात जो हैं वो आपस में गले मिलते हैं, और बालकनी में बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ ढलते हुए सूरज को देखना, और ख्यालों में किसी का खूबसूरत सा चेहरा उभर कर आना, ये वो पल हैं जो किसी कागज पर मुकम्मल गजल की तरह नजर आते हैं। और इसी तरह का एक नगमा हमने चुना है आपके लिए अगली पेशकश के रूप में।

0: बिल्कुल, और क्या नजाकत है इस गीत में। है तुझे भी इजाजत, कर ले तू भी मोहब्बत। फिलहाल हम एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, आगे के गीत ब्रेक के उस पार।
1: पथरी प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायक हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
2: RGHS व चिरंजीवी योजना के अंतर्गत निशुल्क ऑपरेशन। पथरी मतलब विनायक हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
3: दुनिया का सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न सुख एक तरफ,
4: निसंतान दंपतियारे जीवन में खुशियारी उम्मीद। विनायक हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान

0: आरोग्य मंदिर जाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: अपने खेत बगीचे घर टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
2: आज ही पधारे लालजी नर्सरी, राणो जी का बाग, खोखरिया विराम मंडो।
1: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
3: लालजी नर्सरिया, कुछ समय हरियाली में बिताओ।
4: स्वागत है एक बार फिर आप सभी का कार्यक्रम गुड इवनिंग जोधपुर में, और आप हैं नाजीज नेमी के साथ। साथियों, कहते हैं कि इश्क जो है वो ऐसा ख्वाब है जो खुली आंखों से देखा जाता है, और जब जून की इन शामों में आसमान के रंग बदलते हैं तो इन ख्वाबों की जो ताबीर है वो और भी हसीन लगने लगती है। कभी कभी बस किसी से छोटी सी बातचीत, छोटी सी गुफ्तगू भी एक रोशनी की तरह काम करती है। किसी के लबों का तबस्सुम फूलों के खिलने जैसा लगता है, तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में रोशनी ही रोशनी है, खुशियां ही खुशियां है। और जब शहरे आफ्ताब की ये शाम ऐसी यादों में घुल जाती है, इस शाम में ऐसी यादों की मिठास फैल जाती है, तो ये अगला गीत सीधा आपके लिए आपके रेडियो सेट्स पर उसी मौजू पर। आवाज अलका याग्निक की, फिल्म स्वदेश से।

बिल्कुल दोस्तों, और शाम अब आहिस्ता आहिस्ता रात की चादर ओढ़ने वाली है, और घंटाघर के आसपास अगर हम देखें तो जो ट्रैफिक है वो भी थोड़ा बढ़ने लगा होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो ट्रैफिक नियम्स जो नियम जो बने हुए हैं उनका हम नियमों का पालन करें, और शहर की जो यातायात व्यवस्था है उसको बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। और दिन भर की तपिश के बाद जब फिजाओं में एक हल्की सी नमी और गहरा सा एहसास होता है तो ऐसे में बस एक जोधपुर वाले को चाहिए मिर्ची बड़ा, चाय और ढेर सारा सुकून। और साथ में FM सन सिटी पर ऐसे तराने।

راحت فتح علی خان صاحب کی آواز اور گلزار صاحب کے بول جیسے روح پر کسی نے مخمل رکھ دیا ہو۔ कार्यक्रम है गुड इवनिंग जोधपुर और आप बने हुए हैं नाजीज नेमी के साथ। साथियों, कभी गौर किया है आपने कि जो बात हम दिन के उजाले में नहीं कह पाते वो शाम की इस खामोशी में कितनी आसानी से होठों तक आ जाती है। मोहब्बत के इजहार के लिए ये ढलती हुई शामें सबसे बेहतरीन गवाह होती हैं और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो रूह की गहराइयों से जुड़े होते हैं, जहां लफ्जों की गहराई नहीं, लफ्जों की खूबसूरती नहीं, एहसासों की दरकार होती है। जैसे कि ऐसे ही एहसास लिए हुए हमारा ये अगला गीत।

और ये शाम अब पूरी तरह से रात की आगोश में कुछ ही पलों में ढलने वाली है और शहर का शोर भी थोड़ा सा कम हुआ है। एक रूमानी खामोशी जब आपको घेर ले तो दिन भर की चाहे कितनी भी थकान हो, कितनी भी मशरूफियत हो, लेकिन रात की ये दहलीज हमेशा हमें हमारे सबसे करीब ले आती है। वो कहते हैं ना, जो मन के करीब होते हैं वो फासलों से दूर नहीं होते।

0: और इसके साथ ही कार्यक्रम गुड इवनिंग जोधपुर को यहीं पर विराम देते हैं। नाटी इज नियमी आपसे चाहता है विदा, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड इवनिंग जोधपुर एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर, ये एफएम सन सिटी है, जयमाला। ये कार्यक्रम हम विविध भारती केंद्र से रिले करेंगे।
1: कार्यक्रम जयमाला आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

जय माला कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को सलमा का नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। पहला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है जिगरी दोस्त।

जीवन अपना सुंदर सपना, कौन पराया कौन है अपना, प्यार सभी का अपने दिल में हो। हर एक रंग के फूल है खिलते, हर मजहब के लोग हैं मिलते, इस बगिया में इस महफिल में हो। हे हम सारे हैं भारतवासी, सब है भाई।

0: लीजिए सुनिए भारतीय सेना गीत। गीतकार, संगीतकार और गायक कलाकार हैं कैलाश खेर।
1: अगम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: भारतीय सेना।
1: अभी आप सुन रहे थे भारतीय सेना गीत। गीतकार, संगीतकार और गायक कलाकार थे कैलाश खेर,
2: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
3: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
2: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
4: एक टुकड़ा धूप का।
2: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
2: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: अनुरोध, इस फिल्म का गीत सुनिए किशोर कुमार की आवाज में। नगमा निगार है आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

धर्मवीर इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: एक जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में सुनिए। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, तर्ज है कल्याण जी आनंद जी की और फिल्म का नाम है गीत।

साथियों, जयमाला कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल पर जाने का। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती।

अंतराल के बाद एक बार फिर से जयमाला कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। क्रांति इस फिल्म का नगमा आपको सुनवाते हैं नितिन मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीत रचना संतोष आनंद की, संगीत रचना है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: जय माला कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए अगला गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीतकार हैं शैलेंद्र, धुन बनाई है शंकर जय किशन ने और फिल्म का नाम है दिल तेरा दीवाना।

ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। इंद्रधनुष के अंतर्गत आज सुनिए एक ही फिल्म से, और आज की फिल्म है खिलौना। पहला गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर की आवाज में, नगमा निगार है आनंद बख्शी, धुन है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की।

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू हुई। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में। नगमा निगार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है खिलौना।

हवा महल में आज नाटिका आपके लिए लेकर आए हैं श्रोताओं, वो आए घर में हमारे, लेखक राजकुमार दाग, निर्देशक सत्येंद्र शरत।

0: सुबह से कभी सोफे पर कभी उस सोफे पर, कभी इस कुर्सी पर कभी उस पलंग पर, कभी अखबार कभी चाय कभी सिगरेट। ओफो, मैं कहती हूँ कोई और काम भी है आपको? ये सारा दिन यही सोफे तोड़ते रहेंगे? जरा हालत तो देखिए घर की, कहीं अखबार बिखरा हुआ है तो कहीं सिगरेट के टुकड़े, कहीं जूठे बर्तन है तो कहीं जूते, मैले कपड़े है तो सोफे पर, एस्ट्रे है तो पलंग पर, घर के कबाड़ी की दुकान बना हुआ है, आपे के कार्टून बने हुए हैं।
1: मगर तुम भी कोई अनारकली तो दिखाई नहीं दे रही रमेश की माँ। तुम्हारी सूरत देखकर तो ये भी पता नहीं चलता कि तुम इस घर की मालकिन हो या नौकरानी।
0: और इसकी वजह सिर्फ आप हैं। आप यहाँ से उठे मुझे सफाई करने दें, मैं नहाऊं तो किसी शुमार कतार में आऊं। सच तो ये है कि आपके आलस ने मुझे आलसी बना दिया है।
1: ओ जी छोड़ो सौभाग्यवती, क्या सुबह सुबह सफाई और सुस्ती की बातें ले बैठी हो। जरा इस सोफे पर सुस्ता कर देखो, क्या आनंद आता है। जरा इस आराम कुर्सी पर बैठकर ये नॉवेल तो पढ़ो, देखो क्या मजा आता है। जरा मेरी तरह बेफिक्री से टांगे पसार कर आराम करके देखो, फिर देखो घर की सफाई जरूरी मालूम होती है या देह का सुख। ये सफाई, ये बनावट, ये सजावट तो बाहर के लिए है रानी, दूसरों को दिखाने के लिए, यानी अपने आप से धोखा।
0: धोखा?
1: हाँ, भला आदमी हर वक्त घर की सफाई संभाल में लगा रहे तो आराम किस वक्त करे है? मैं पूछता हूँ घर आखिर होता किस लिए है? घर का सुख कहते किसे? बोलो बोलो बोलो। हाँ, अब जाओ और दो कप चाय बना कर लाओ, एक मैं पीऊंगा और एक तुम पीना है।
0: अच्छा अच्छा। मगर मैं कहने जा रही थी, और नहीं तो अपने नौजवान बेटे की तो फिक्र कीजिए, तालीम खत्म करके आवारा फिर रहा है, इसके लिए कोई नौकरी कोई लड़की आखिर कब तक उसे।
1: अरे भगवान, क्यों चिंता करती हो? नौकरी आजकल मिलती नहीं और लड़की वो खुद, मेरा मतलब ब्याह लाएगा।
0: क्या कह रही हो?
2: गुड मॉर्निंग डैडी।
1: ओ गुड मॉर्निंग प्रिंस ऑफ वेल्स।
2: डैडी आज बड़ा मजा आया शहर।
1: हाँ, मुझे भी।
2: मौसम बहुत अच्छा था।
1: हाँ, यहाँ भी।
2: हमने पार्क में खूब दौड़ लगाई डैडी।
1: हाँ, किसके साथ?
2: किसके साथ?
1: हाँ,
2: जी वो मेरा मतलब है।
1: हाँ, बोलो बोलो, डरो नहीं बेटे, बोलो
2: जी
1: ना।
2: वो
1: हाँ
2: डैडी।
1: कौन है वो?
2: डैडी बहुत अच्छी लड़की है, एक बड़े सरकारी अफसर की इकलौती बेटी है, अच्छा मकान है, नौकर है, चाकर है, और डैडी खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है और बहुत ही मिलनसार। आज की सोसाइटी की है इसलिए घूमने फिरने मिलने जुलने में कोई बुराई नहीं समझती। और माँ धार्मिक विचारों की है।
0: अच्छा।
2: हाँ, अभी कल ही की तो बात है, हमने एक दुकान से किताबें खरीदी, मैंने बहराम डाकू नावल खरीदा और उसने जानती है क्या खरीदा?
0: क्या?
2: स्त्री सुबोधनी।
0: स्त्री सुबोधनी?
1: शाबाश बेटा शाबाश, मेरे बेटे की पसंद कभी गलत नहीं हो सकती, देखा।
2: मगर डैडी हमारे घर और उनके घर में बड़ा फर्क है।
1: क्यों क्यों?
2: क्या बताऊं, हमारा घर तो बिल्कुल बेडअप है, मगर उनका घर सफाई और सजावट का एक नमूना है, कहीं धूल का जर्रा तक नहीं, रख रखाव ऐसा कि बस वाह देखते रह जाओ, हर चीज हर वक्त करीने से सजी हुई, हर

0: कोना टिप टॉप। लेकिन हमारा घर,
1: ये सब तुम्हारे डैडी का कसूर है। मुझे तो रसोई से ही फुर्सत नहीं मिलती इनकी वजह से।
0: मगर रसोई की हालत भी तो कहने देखने लायक नहीं है माँ, वहाँ भी रख रखाव नाम को नहीं है।
2: अरे हाँ, रसोई से याद आया, मैंने कहा रमेश की माँ वो एक कप चाय।
1: हे भगवान।
0: डैडी मैं कह रहा था कि अगर कहीं शोभा ने हमारा घर इस हालत में देख लिया तो गजब हो जाएगा डैडी, वो कभी इस घर में कदम भी ना रखेगी वो।
2: अरे देखना तो बेटा किसका फोन है।
0: देखता हूँ डैडी। हेलो, ओ शोभा, हेलो। हाँ मैं रमेश बोल रहा हूँ। हाँ क्या अभी 15 मिनट में? मगर शोभा सुनो तो, बंद कर दिया। मम्मी डैडी
2: क्या हुआ?
0: शोभा डैडी।
1: अरे शोभा क्या हुआ शोभा को?
0: शोभा आ रही है हमारे घर डैडी, अभी सिर्फ 15 मिनट में।
1: तो अच्छा है, मैं अपनी होने वाली बहू को आज ही देख लूं।
0: वो तो ठीक है माँ, सब ठीक है माँ, मगर जरा घर की हालत तो देखो, क्या यही नजारा दिखाओगे उसे?
1: अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी। अच्छी सुनते हो, अब उठिए भी।
0: सारा घर कबाड़ खाना बना हुआ है, अगर शोभा ने ऐसे देख लिया तो गजब हो जाएगा।
2: मगर वो चाल
0: डैडी, ये क्या कछुए की चाल दिखा रहे हैं? तेजी से उठिए ना प्लीज, भाग कर जाइए और शेव कीजिए। अच्छा, जी हाँ अच्छा, शेव हाँ। कीजिए और कपड़े पहनिए।
2: हाँ, हाँ।
0: क्या अपनी होने वाली बहू के सामने यूं ही बने रहेंगे?
2: अरे तो
0: मगर कुछ नहीं डैडी, ये हमारी इज्जत का सवाल है, हमारे खानदान की आन और शान दिखाने का मौका है, और आप है कि दाढ़ी बढ़ाए बनियान पहने जैसे बिल्कुल।
2: ओफो, मगर आज तो छुट्टी है, आराम का दिन है, भला अपने घर में भी देखो।
0: ओफो बस हो गया ना भाषण डैडी, जल्दी चलिए बनिए समरी और मेकअप कीजिए।
2: हाँ,
0: हाँ। और मम्मी मम्मी तुम हमारे डायलॉग क्या सुन रही हो? चलो फुर्ती से कमरा साफ करो। हाँ रसोई सवारो और फिर अपने आप को भी दुरुस्त करो।
1: अरे हाँ हाँ मैं तो अभी जाती हूँ।
0: ऐसे कैसे काम होगा, मुझे भी तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी। डैडी ये अपना शेविंग सेट तो लेते जाइए।
2: हाँ, हाँ।
0: और मम्मी तुम चलकर रसोई संभालो, इस कमरे को मैं दुरुस्त करता हूँ, लेकिन जरा जल्दी। हाँ ये अखबार है। हाँ ये बर्तन, ये फूलदान, अरे जूते भी यही है। वाह वाह वाह, मैले कपड़े और ये सिगरेट के डिब्बे। हमारा घर है या किताबें, वाह सब किताबें भी यही है। चुराबे हैं ये और ये छतरी, दिया सिलाई को भी यहाँ हो रहा है। वाह वाह डैडी, वही काला सूट पहनेगा जो मुझे पिछले साल सिलवाया था। और मम्मी तुम?
1: हाँ बेटी।
0: अरे तुम तो तैयार भी हो गई। हाँ हाँ वाह वाह मम्मी, कितनी सुंदर लग रही हो। हाँ हाँ ये हुई ना बात।
1: अरे अब तुम मेरी तारीफ छोड़ो और अपनी तैयारी करो। सुनो अरे देखो तो कैसी लग रही हो, चलो चलो चलो चलो चलो।
0: हाँ, मम्मी मैं भी तैयार हो लूँ।
1: चलो।
0: मेरी बुशर्ट का बुशर्ट, हाँ मिल गई लीजिए। अब कंघी गायब है, न जाने कहाँ चल। वो हो हाँ ये भी है, मिल गई ओफो, ये घर है या

0: ये हुई ना बात दादी, बिल्कुल हीरो लग रहे हैं।
1: हीरो के बेटे, मुझे गर्मी लग रही है।
2: बस थोड़ी देर की तो बात है डैडी। हाँ, बिल्कुल थोड़ी देर की। और मम्मी, मम्मी भी कैसे जंच रही हैं, बिल्कुल रानी जैसी। मम्मी यहाँ यहाँ बैठो। हाँ इधर इधर इधर, हाँ इस सोफे पर। हाँ डैडी आप इनके साथ, बाएं तरफ नहीं, बाएं तरफ नहीं, दाएं तरफ। हाँ यहाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। कितनी सुंदर जोड़ी है।
1: मगर बेटा,
2: बस डैडी, बस बस बस बस बस बस, हिलिए बोलिए नहीं। और ये लीजिए अखबार, ये पकड़िए, इसे यूं पकड़ के बैठिए। हाँ
1: ऐसे।
2: और मम्मी, मम्मी आप यूं कीजिए कि ये स्वेटर बनिए।
3: लाओ मुझे दो।
2: हाँ ये लीजिए, और बस इसी पोज में, बिल्कुल
3: ठीक है।
2: हाँ हाँ, बस अब थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा मुस्कुराइए।
3: बिल्कुल पगला है ये तो।
2: शाबाश, वाह क्या शानदार तैयारी हुई है। घर भी नुमाइश की तरह बन समर गया है। डैडी शायद वो आ गई। आया, अभी आया। हेलो शोभा, आओ आओ, अंदर आओ ना, बाहर क्यों खड़ी हो।
4: नहीं रमेश, मैं इस वक्त नहीं रुक सकती, एक सहेली के घर जा रही हूँ, बहुत जरूरी काम है। मैं दरअसल तुम्हारी ये किताब वापस करने आई थी।
2: नहीं नहीं नहीं शोभा, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें थोड़ी देर के लिए तो अंदर आना ही होगा।

0: रमेश, इस वक्त मैं बिल्कुल नहीं आ सकती, फिर कभी सही। ओके बाय।
1: मगर सुनो तो, शोभा शोभा गई। डैडी वो
2: क्या है,
1: वो किताब देकर चली गई
2: और इसने अंदर झांका तक नहीं।
1: मगर वो
2: डैडी, मैंने पाउडर सुर्खी तक लगाया, पसीना पसीना होते हुए भी सूट बूट पहना और उसने शक्ल तक नहीं दिखाई।
1: मगर डैडी उसे बहुत जरूरी काम।
3: रमेश के मुंह में बिल्कुल पागल हो जाऊंगा।
1: मगर डैडी इसमें बुरा मानने की क्या बात है, हमारा बिगड़ा क्या है आखिर, कुछ ना कुछ संवरा ही तो है।
2: मुझे सबक देते हो, मैंने कभी जिंदगी में इतनी स्पीड से काम नहीं किया और जिस पोज में तुमने मुझे बिठाए रखा ना, मेरा तो अंगांगा कट गया।
0: अब छोड़िए भी, जो होना था सो हो गया है, अब फिर से आराम कर लीजिए।
2: हाँ जरूर करूंगा आराम, और पहले की तरह ही खुले बदन खुले मिजाज, हाँ टांगे पसार कर और सोफा लताड़ कर, हाँ इस तरह।
1: माफ करना मम्मी, मैंने आपको नाहक परेशान किया, अब तुम भी जाकर पहले की तरह कपड़े बदल लो और डैडी के लिए चाय बना दो।
0: अच्छा बेटा।
2: ये रहा तुम्हारा सूट, यहीं पड़ा रहा है सोफे पर। वो कहाँ है मेरा अखबार, उसे भी पहले की तरह ही बखेर के रखूंगा, एश्रे में पड़े सिगरेट के टुकड़ों को भी उसी तरह फैलाऊंगा। हाँ मुझे बिल्कुल पहले जैसा माहौल चाहिए, और रसोई से वो झूठे बर्तन भी उठा लो। हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ जाओ, अब ठीक है, बिल्कुल पहली हालत घर की, और अब मैं इस सोफे पर टांगे पसार कर नाविल पढ़ूंगा। ये हुई ना बात अपने घर की, क्या बेफिक्री है, क्या सुख है, क्या आराम है, क्या मजा है। सच कहा है किसी ने, जो सुख चौबारे न बलख ना बुखारे।
0: ये लीजिए चाय।
2: अल्लाह वेला। ये हुई ना बात। मैंने कहा तुम भी बिल्कुल पहले जैसी लग रही हो।
0: पहले जैसी ही लग रही हूँ।
2: अरे जरा देखना तो बेटा कौन है दरवाजे पर।
1: अच्छा दादी। शोभा
0: है, इतना घबरा क्यों गए?
1: कुछ नहीं कुछ नहीं, मेरा मतलब है तुम।
0: हाँ मैं, क्यों कोई एतराज है?
1: एतराज नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, कोई एतराज नहीं है, मगर तुम तो।
0: भाई मैं अपनी सहेली के यहाँ गई तो मालूम हुआ कि वो कहीं और गई हुई है, सो वापिस आकर तुम्हारे घर आ गई। ओहो अब ये हाथ तो हटाओ ना, मुझे अंदर आने दोगे या नहीं?
1: सॉरी।
0: नमस्ते माता जी। नमस्ते पिताजी।
1: नमस्ते नमस्ते
0: नमस्ते। अरे ये बात क्या है, आप लोग इतने घबराए हुए क्यों हैं?
1: कुछ नहीं शोभा, कोई बात भी तो नहीं। शोभा तुम्हें देर हो जाएगी, तुम फिर कभी।
0: जी नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं, मैं थोड़ी देर बैठूंगी यहाँ पर, बहुत थक गई हूँ।
4: हाँ हाँ बेटी यहाँ बैठो सोफे पर।
0: धन्यवाद। हाँ कितना आराम है यहाँ, कितना सुख
2: जी।
0: हाउ स्वीट, कितना प्यारा है ये घर, सचमुच बिल्कुल असली रूप का। अरे आप लोग बैठिए ना, खड़े क्यों हैं?
4: बैठिए ना।
1: शोभा तुम्हें हमारा घर अच्छा लगा?
0: ओ रियली, घर हो तो ऐसा जहाँ बेफिक्री और आजादी ही आजादी हो। एक हमारा घर है रमेश, जहाँ हर वक्त हर चीज इस तरह बनी रखी रहती है जैसे वो घर न हो कोई अजायब घर हो। नौकर है कि सारा दिन सजावट में लगे रहते हैं, न मर्जी का बैठना न मर्जी का लेटना, कहीं बैठने लगो तो हाँ यहाँ न बैठना बेटा अभी ठीक किया है, कहीं लेटने लगो तो यहाँ नहीं शोभा जी अभी सिलवटें दुरुस्त की हैं, अंदर जाने लगो तो अरे रर रर इधर नहीं आना शोभा रानी अभी सफाई की है, कुछ उठाने लगो मैली हो जाएगी, उठते बैठते सोते जागते इंचों सेंटीमीटरों का हिसाब है हमारे घर।
1: लेकिन शोभा घर का रख रखाव सही पहनावा भी तो जरूरी है जिंदगी के लिए।
0: इस पोजीशन में नहीं बैठो साड़ी खराब हो जाएगी, टेढ़े ना लेटो कपड़ों की केरेस खराब हो जाएगी, ये करोगे तो मम्मी नाराज हो जाएंगी, वो करोगे तो डैडी बुरा मान जाएंगे, घर न हो गया मिलिट्री ऑफिस हो गया। मगर इस घर में एक अपनापन है, एक आजादी है, सुख चैन और आराम की आजादी।
1: ये भी खूब रही, बहुत खूब, देखो तो।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा हर दिल से जुड़ी, देश की सुरीली धड़कन, हर लम्हा हर पल आपके साथ। कार्यक्रम चित्रलोक आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

विविध भारती से प्रस्तुत है नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को सलमा का नमस्कार। लीजिए सुनिए आशा भोसले और साथियों को। आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत है, संगीत है उत्तम सिंह का और फिल्म का नाम है दिल तो पागल है।

0: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार
3: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
4: खून से है क्यों भीगा जिसम ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम, अंदर शायर पैदा हो रहा।

0: मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू हुई। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
0: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आइए सुने अगला गीत अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं समीर, संगीत है नदीम श्रावण का और फिल्म का नाम है धड़कन।

चित्रलोक कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। यह है राष्ट्रीय सेवा विविध भारती। आइए सुने अगला गीत अभिजीत सपना मुखर्जी और अलका याग्निक की आवाजों में। गीत लिखा है समीर ने, संगीत है नदीम श्रावण का और फिल्म का नाम है जुदाई।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम ग्रेट पावर इंडिया नेशन फर्स्ट को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: निभाया, देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं। साथियों, यहां हमारे साथी सिदर बैंबू जी बैठे हैं। जब हमारे उद्यमी नेशन फर्स्ट की भावना के साथ चलते हैं, जब वो देश की आवश्यकताओं को समझते हुए अपने लक्ष्य बनाते हैं, तो संस्थाएं भी बनती हैं और देश भी समृद्ध होता है। सिद्धार्थ बैंबू जी ने क्या काम किया है, शायद यहां बातों में कितना निकला होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी मैं फ्रांस में विवाटेक में गया था। करीब 1.5-2 लाख नौजवान वहां होंगे, चलने के लिए भी मैं और फ्रांस के राष्ट्रपति अलग अलग स्टॉल पे जा रहे थे देखने के लिए भाई नौजवानों ने क्या काम किया है। तो हम जोहो के स्टॉल पे गए, मैं हैरान था जी और गर्व होता था कि जोहो के स्टॉल पर यूरोप के नौजवानों की जो भीड़ लगी थी और वो समझना चाहते हैं कि ये क्या है दुनिया में नई चीज। भारत में शायद उतनी चर्चा नहीं होगी जितनी मैंने वहां फ्रांस में देखी।
0: शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
2: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा।
3: रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इनमें बागुआपाला बुद्धापंक, हरिदासपुर पारादीप, खुर्दा रोड बलंगीर, नौपाड़ा गुनपुर, लांजीगढ़ रोड जूनागढ़ और बोबिल्ली सालूर शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि इस परियोजना से पूर्वी तट रेलवे द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले ओडिशा और पड़ोसी क्षेत्रों के प्रमुख खंडों पर यात्री और मालगाड़ी दोनों के संचालन को लाभ होने की उम्मीद है। यह भीड़ भाड़ और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर कवच का विस्तार करने के उद्देश्य से जारी रेलवे के अभियान को मजबूती भी प्रदान करेगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है।
4: वित्त मंत्री डॉक्टर शपन दासगुप्ता ने आज 4,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का राज्य बजट प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसे विकसित भारत के साथ विकसित बंगाल के निर्माण का बजट बताया। बजट में राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 18% से बढ़ाकर 38% करने की घोषणा की गई। महिला सुरक्षा के लिए सभी थानों में नारी सहायता डेस्क और दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड बनाया जाएगा। दार्जिलिंग और गंगा सागर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। काश्मीर नहार, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के उलानबतार में मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुक उखना से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पिछले साल श्री उखना की भारत यात्रा ने भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी को मजबूती प्रदान की थी। उन्होंने मुलाकात के दौरान मंगोलिया के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से

0: सामने दी। इससे पहले दिन में विदेश मंत्री ने उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सिस्तेग बचनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इसराइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक सेवानिवृत्त मेजर जनरल अमीर बराम से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री बराम ने राजनाथ सिंह को दोनों देशों के विशेष रणनीतिक साझेदारी में भारत इसराइल रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए इसराइल की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक से इतर नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गादिर निजामीपुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया की राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसा से भी मुलाकात की। श्री डोभाल ने ब्राजील के बहुपक्षीय और राजनीतिक मामलों के सचिव कार्लोस कोजेंडे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने ब्रिक्स ढांचे के तहत भारत और ब्राजील के बीच सहयोग का स्वागत किया। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के आर्थिक विकास में CISF के जवानों का बड़ा योगदान होता है। नई दिल्ली में आज CISF के नए मुख्यालय भवन की आधारशिला रखते हुए उन्होंने ये बात कही। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल M पंचोली की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ NEFED के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। पोर्टल का शुभारंभ नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिजली गिरने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। मृतकों में CPI के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए विभिन्न जिलों के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे NewsonAIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। इस्तीफे का बयान देने से पहले स्टार्मर अपनी पत्नी के साथ 10 टाउनिंग स्ट्रीट के बाहर निकले, जहां लोगों ने उनका उत्साह के साथ स्वागत किया और तालियां बजाई। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे पद पर बने रहेंगे।
1: Every decision I've taken,
2: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है, जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: कतर के औद्योगिक क्षेत्र रसलाफान में आज हुए विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई। इनमें कुछ भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। कतर के ऊर्जा मंत्री साद बिन श्रीदा अलकाबी ने बताया कि कल शाम बरजान स्थानीय गैस आपूर्ति संयंत्र में विस्फोट के कारण लगी आग में 66 लोग घायल हो गए। जर्मनी के सुहल में आईएसएसएफ जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने

0: 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक हासिल किए। भारत 5 स्वर्ण 1 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप जे के मुकाबले में आज अर्जेंटीना ऑस्ट्रिया आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं ग्रुप आई में फ्रांस का सामना इराक से होगा। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबलों में मिस्र और स्पेन ने शानदार जीत दर्ज की। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 291 अंक बढ़कर 77,094 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 90 अंक बढ़त के साथ 24,103 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 35 पैसे कमजोर होकर ₹94.68 पर बंद हुआ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग की घटना में 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के साथ ही भरोसेमंद विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में प्रीतम केंद्रे के स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम आपके लिए मैं सभी सुनने वालों को सलमा का नमस्कार। साथियों कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं असद भोपाली, संगीतकार हैं उषा खन्ना और फिल्म का नाम है एक सपेरा एक लुटेरा।

आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में उस गीत को जिसे लिखा है साहिर लुधियानवी ने, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम है मन की आंखें।

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम का अगला गीत है किशोर कुमार की आवाज में। गीत लिखा है अमित खन्ना ने, संगीत है राजेश रोशन का और फिल्म का नाम है स्वामी।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहाँ पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार है आनंद बख्शी, संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है तकदीर।

कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं आशा भोसले की आवाज में, फिल्म दो बदन से। गीत है शकील बदायूनी का, संगीत है रवि का।

कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। नगमा निगार हैं असद भोपाली, संगीतकार हैं रवि और फिल्म का नाम है उस्तादों के उस्ताद।

कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। हमें दीजिए आज्ञा और आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: ये है विविध भारती।
1: थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर कर।

आज का कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता अमरीश पुरी पर।

अमरीश पुरी का जन्म 22 जून 1932 को हुआ था। वे अपने जमाने के जाने माने चरित्र अभिनेता मदन पुरी के छोटे भाई थे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अमरीश पुरी ने केंद्रीय श्रम मंत्रालय में नौकरी कर ली थी, लेकिन सन 1961 से उन्होंने शौकिया तौर पर रंगमंच शुरू किया था। यहाँ से शुरू हुआ अमरीश पुरी का अभिनय की दुनिया का सफर।

0: ना जोश है नहीं शोर है।
1: अमरीश पुरी बहुत देर से फिल्मों में आए। श्याम बेनेगल की फिल्म निशांत से उनका फिल्मी सफर शुरू हुआ सन 1973 में।

इसके बाद मंथन और भूमिका जैसी फिल्मों में उन्होंने प्रभावशाली अभिनय के जरिए खूब नाम कमाया। सुनील दत्त की फिल्म रेशमा और शेरा ने व्यावसायिक फिल्म जगत में अमरीश पुरी को पहचान दी।

बीच अभिनय के अच्छे ऑफर्स उन्हें मिलने लगे और उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। फिरोज खान की फिल्म कुर्बानी में बाकायदा एक बड़ी भूमिका के साथ वे फिल्म संसार में आए। छोटी बड़ी भूमिकाएं करने के बाद अमरीश पुरी को सबसे ज्यादा नाम अगर किसी फिल्म से मिला तो वो थी मिस्टर इंडिया।

सन 1987 में आई इस फिल्म में अमरीश पुरी ने मोगैम्बो की भूमिका की थी। यहाँ से हिंदी फिल्म संसार को मिला एक प्रभावशाली खलनायक। मोगैम्बो की भूमिका को आज भी सभी याद करते हैं।

0: बहुत बरस पहले अमरीश पुरी विविध भारती के स्टूडियोज में आए थे और उन्होंने फौजी भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। इस कार्यक्रम में उन्होंने अपने मन की बहुत सारी बातें हमें बताई थी।
1: मेरी आवाज तो कई बार आप रेडियो पर, टीवी पर और सिनेमा हॉल में सुनते ही होंगे। वो सब तो फिल्मी डायलॉग होते हैं, लेकिन आज मैं अपने दिल की बात आपसे कहना चाहता हूं। फिल्मों में मैं ज्यादातर एक खलनायक की, या यूं कहिए कि एक विलन की भूमिका निभाता हूं। किसी का मर्डर, कहीं डाका, किसी का रेप या ऐसी खराब हरकतें। लेकिन साहब, मैं भी एक इंसान हूं और आप सब की तरह सीने में दिल रखता हूं, जो कभी हंसता है, कभी रोता है। आप सब की तरह मेरा भी परिवार है, बच्चे हैं। मैं जानता हूं और महसूस करता हूं कि कितना मुश्किल होता है अपने प्यारों से दूर रहना।
2: मस्ताना अल्लेना।

मैं अगर आज फिल्मों में नहीं होता तो शर्तिया आपकी तरह एक फौजी होता। बहुत तमन्ना थी बचपन से ऐसा करने की। मैट्रिकुलेशन का इम्तिहान पास करने के बाद मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी में अप्लाई किया, लेकिन भाग्य में कुछ और ही था। इंटरव्यू की कॉल मुझे 3 रोज लेट मिली और उसके बाद फिर एज लिमिट होने के कारण मैं दोबारा अप्लाई नहीं कर सका, वरना आज मैं भी आपकी तरह अपने देश की रक्षा कर रहा होता। लेकिन आज मैं कर क्या रहा हूं ये तो आप बखूबी जानते हैं। जी चाहता है अपने देश की मोहब्बत और याद में दूर सरहदों पर बैठा हुआ मैं कुछ इस तरह से गुनगुना उठूं।

0: आप लोगों की तरह हम भी देश की सेवा कर रहे हैं। आप देश की रक्षा करते हैं, हम देश का मनोरंजन करते हैं। मनोरंजन जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। जब तक आप नाचेंगे नहीं, गाएंगे नहीं और जिंदगी की खुशियां जाहिर नहीं करेंगे, जिंदगी फीकी फीकी सी रह जाती है। मुझे इस बात का फख्र है कि हमारे परिवार में इस चीज की कुछ परंपरा ही रही है। कुंदन लाल सहगल मेरे भुआ के लड़के थे। उन्होंने बहुत सालों तक हमारा मनोरंजन किया। अपने परिवार की परंपराओं को जारी रखते हुए मैं अपने बड़े भाइयों का नाम लेना चाहता हूं। मेरे सबसे बड़े भाई श्री चमनपुरी जी, जो फिल्मों में पार्टीशन से पहले लाहौर में काम करते थे, उसके बाद बंबई आए, यहां भी वो कुछ फिल्मों में काम करते रहे। उनसे छोटे थे मेरे मरहूम भाई साहब मदनपुरी जी। मदनपुरी जी ने आपका कितने तरीकों से मनोरंजन किया है, कितने भेसों में, कितने रूपों में, कितने ही किस्म किस्म के रोल अदा करके।
1: सन 1997 में आई फिल्म परदेश, सुभाष घई की इस फिल्म में अमरीश पुरी पर ये नगमा फिल्माया गया था।

सन 1995 में आई यश चोपड़ा की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस फिल्म में अमरीश पुरी की भूमिका को आज भी लोग याद करते हैं।

कमल हासन की फिल्म चाची 420 सन 1998 में आई। इस फिल्म में भी अमरीश पुरी ने प्रभावशाली अभिनय किया था। गोविंद नेहलानी की फिल्म देव अमरीश पुरी की एक महत्वपूर्ण फिल्म है। सुभाष घई की कई फिल्मों में अमरीश पुरी नजर आए। सुभाष घई के साथ उन्होंने जो आखिरी फिल्म की वो थी किसना।

0: डेविड धवन की हास्य फिल्म मुझसे शादी करोगी में वे एक रिटायर्ड कर्नल बने थे। फिल्म शरारत में भी उन्होंने एक वरिष्ठ नागरिक की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के सितारे थे अभिषेक बच्चन, ऋषिता भट्ट, ओम पुरी और अमरीश पुरी।
1: आती जाती है मुश्किलें बड़ी, हार हम कभी मानते नहीं, जान जाओगे मान जाओगे, तुम अभी हमें जानते नहीं।

अमरीश पुरी हिंदी फिल्म संसार के एक निराले अभिनेता के तौर पर हमेशा याद किए जाएंगे। चाहे फिल्में हों या रंगमंच, उनकी स्मृतियां हमेशा हमारे मन में ताजा बनी रहेंगी।

0: फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता अमरीश पुरी पर।
1: शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति रमेश गोखले।
2: आज के फनकार।

0: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन छाया गीत ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों में।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती। वीको वज्रदंती मजेदार ही नहीं असरदार, इंडिया का गम एक्सपर्ट।
2: वीको वज्रदंती, शायद इसमें आपको टेस्ट का मजा नहीं मिलेगा, झाग का मजा नहीं मिलेगा। अब आप सोचेंगे तो मिलेगा क्या? असर कम प्रॉब्लम्स पर। इसकी 18 जड़ी बूटियां स्वोलन गम्स ब्लीडिंग गम्स जैसे प्रॉब्लम्स को रखे दूर और दांतों को रखे हेल्दी। मजा नहीं, असर। अब पेस्ट है, पिक्चर का टिकट थोड़ी।
3: वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट।
2: मजेदार नहीं, असरदार।

देखते हैं जिधर भी उधर तुम ही दिखाई देते हो ओ हमदम। ये दामन मोहब्बत का है, ये दुनिया हमारी, इसे छोड़कर कहां जाएं हम।

गुम हुए हैं नजारे, भला ये क्या है बात, तेरे काजल का असर देख, ये दिन अब हुआ है रात। नैनों का नैनों से मिलना, दिल का दिल को पुकारना, हाँ यही है वो मुलाकात।

0: जमाने के ताने जज्ब करते हैं रोज, रहते हैं कांटों के संग ये, इनकी हिमाकत को समझो, मासूम है और इसलिए बहक जाते हैं ये, इन फूलों की नजाकत को समझो।
1: कहा आपका ये वजह ही सही के हम

पायल की छन छन, बिजली की चमकन, लोच कमरिया का संभाले न संभलता है, चुनरी की ढलकन, नजरों की अटकन, जरा सोच ये दिल बहलाए न बहलता है।

छाया गीत का आज का सफर आपने तय किया जयंत के साथ, अब इजाजत दीजिए।

0: ये FM सन सिटी है, समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर आग दुर्घटना में 16 से 25 वर्ष की आयु के अधिकांश छात्रों सहित 15 लोगों की मौत हो गई और 6 छात्र घायल हो गए। उन्हें लखनऊ के KGMC में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
2: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
1: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शेखावत ने कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट के रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल M पंचोली की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे।
3: Every decision I've taken,
4: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है, जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबला